0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे करुणा, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतू शाह, सभी को नमस्कार। लगभग 30 विदेशी नागरिक जिनमें मुख्य रूप से मरागास्कर और नेपाल के लोग शामिल हैं, इस समय एनजीओ पास्कल के शेल्टर में रह रहे हैं। पुलिस की कॉम्बैटिंग और ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स यूनिट के अनुसार ये लोग मानव तस्करी के शिकार हो सकते हैं।

0: एक दुखद घटना ने फिर से एक छिपी हुई वास्तविकता को सामने ला दी है। हाल ही में एक गर्भवती युवती की मृत्यु, जिस पर अवैध गर्भपात कराने का संदेह है, मॉरिशस में इस गैरकानूनी प्रथा को लेकर चिंता को फिर से बढ़ा दी है। करीब 25 वर्षों से मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया के संबंध कर्टिन यूनिवर्सिटी के माध्यम से और मजबूत हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्थित विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर हॉलेन हेन ने प्रधानमंत्री से शिष्टाचार के नाते भेंट की और उन्हें कैंपस के विस्तार पट के अनावरण के लिए आमंत्रित किया। फुटबॉल विश्व कप 11 जून से 19 जुलाई तक कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में आयोजित वैंकूवर कनाडा में इस वैश्विक आयोजन के लिए चुने गए लगभग 2000 स्वयं सेवकों में एक मॉरिशन नागरिक नसीम जंगी भी शामिल हैं। और विदेश में पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी के 70% हिस्से पर सैन्य नियंत्रण हासिल करने की योजना की घोषणा की। और अब मौसम की रिपोर्ट। पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी, खासकर पूर्व उत्तर एवं सेंट्रल प्लाटू पर। दोपहर में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इस बीच पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में बादल घिराएंगे कुछ घड़ी के लिए घने बादल और जहां तहां बारिश होगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हल्की और अस्थिर हवा चलेगी पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज के लिए सूर्योदय 6:37 पर, सूर्यास्त होगा 5:37 पर। पूरा बुलेटिन 6:30 तब तक के लिए अनुमति दे। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM3 Radio.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे अजीज सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से पूरी MBCA टीम की जानिब से ईद बहुत बहुत मुबारक हो।

साल में एक बार आती है ईद, साल में एक बार आती है ईद, खुशियां हजार लाती है ईद, फजाएं तकबीरात से गूंज रही हैं, दिल शुक्र के जज्बों से मुनव्वर हो रहे हैं।

मोहब्बत और कुर्बानी का पैगाम हर सिम बिखरा हुआ है। सामईन, पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर। हम आप तमाम लोगों का पुरतपाक खैर मकदम करते हैं। आज की ये सुबह अपने दामन में सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इताअत और रब्बे क़दीर की बेपाया रहमतों का नूर लेकर आई है। आइए हमारे साथ जुड़कर अपनी ईद की खुशियों को दोबाला ज़रूर कीजिए। सामईन, महफिल का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। बागौर अदब समात फरमाइए।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, फ़िलहाल पूरी दुनिया में ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं, तो ज़रा तसव्वुर कीजिए उस सरज़मीन का, मदीने मुनव्वरा का, वो पाकीज़ा शहर जहां हर सांस में दुरूद की खुशबू है।

जहां हर गली मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर है, जहां ईद की खुशियों के साथ अनवार व तजल्लियात की बरसात होती है। कितना मुबारक है वो लम्हा जब रोज़ा रसूल के साए में ईद की तकबीरात गूंज रही हैं और आंखें अकीदत से नम हो रही हैं।

सामईन कराम, बिलयकी ईद कुर्बान के मुबारक मौके पर सुन्नत इब्राहिम की याद ताज़ा हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग हर साल अल्लाह तबारक व ताला के हुकुम की तामील करते हुए और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी के लिए कुर्बानी में नहायत एहतिशाम के साथ हिस्सा लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन।

इब्राहिम की इताअत का सिला है ईद, इब्राहिम की इताअत का सिला है ईद, ईसार वफा और दुआ है ईद। मोहतरम सामईन, इस वक्त आपकी समागतों की नज़र है उर्दू नशरियात सबाल खैर। आज ईद कुर्बान का ये ख़ास प्रोग्राम पेश खिदमत है। आइए गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। गोश्त अल्लाह तबारक व ताला की एक अजीमुलशान नेमत है। गोश्त खाना आकाए दो जहां दिल बरे जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा खानों में शामिल हैं।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, बेशक ये ईद कुर्बानी का मौका होता है, इबादत का मौका होता है, ख़ास तौर पर अपनों के साथ जुड़ने, मुस्कुराने और उनकी खुशियों में शरीक होने का मौका होता है। किसी के घर में बच्चों की हंसी गूंज रही है, कहीं बुज़ुर्गों की दुआएं बरस रही हैं, कहीं दोस्तों की महफिलें सजी हुई हैं। अगर देखा जाए तो यही ईद की असल खूबसूरती है, जब दिल दिल से जुड़ जाते हैं और फासले मोहब्बतों में बदल जाते हैं। आइए अपने वाले

सामेईन कराम, हर तरफ ईद के चराग जल रहे हैं, तो आइए एक वक्त के लिए उन लोगों को भी याद करें जिनके घरों में शायद वो रौनक न हो, वो बच्चे जिनकी आंखें ईद की खुशियों के लिए तरसते हैं, वो खानदान जिनके दस्तरखान सादा हैं मगर दिल दुआओं से भरे हुए हैं। सामईन, ईद सिर्फ लेने का नाम नहीं बल्कि खुशियां बांटने, खाना बांटने और मोहब्बत बांटने का मौका होता है।

मोहतरम सामईन, इसी आखिरी कलाम के साथ हमारी आज की सबाल खैर नशरियात अख्तताम पजीर होती है। उम्मीद है ये बज़्म आपकी समागतों के लिए बाइस मुसर्रत रही। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी कुर्बानियों और इबादतों को अपनी बारगाह अकदस में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, आमीन। सामईन, इन दुआया कलिमात के साथ अब निसार अख्तर इजाज़त का तलबगार हैं। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। एक बार फिर आप लोगों को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, फी अमानिल्लाह।

હેલારો મૂવીમાંથી ઐશ્વર્યા મજુમદારના અવાજમાં ઓન યોર વે.

भक्ति में शक्ति। प्रणाम श्रोताओं, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है भक्ति वह दीपक है जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर कर्मों के मार्ग को उजाला देता है, यानी प्रकाशित करता है, क्योंकि सच्ची भक्ति मनुष्य को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। आइए इसी विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं गणेश वंदना के साथ।

भक्ति में शक्ति कार्यक्रम जारी है। आरएम फ्री प्रेस श्रोताओं कहा जाता है, जब मनुष्य अपने हर कर्म को ईश्वर की पूजा

जा समझ कर करता है, तब उसका जीवन केवल सफल ही नहीं बल्कि पवित्र और अर्थपूर्ण भी बन जाता है। आइए इसी के साथ एक और सुंदर भजन को हम सुनते हैं।

श्रोताओ, आप श्रवण कर रहे हैं भक्ति में शक्ति कार्यक्रम। भक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि मन में विश्वास और श्रद्धा और कर्म में सच्चाई हो तो हर राह आसान हो जाती है।

श्रोताओं, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव रखती है और भक्ति उस नींव को मजबूती देने वाली शक्ति बनकर हमें सही दिशा या फिर मार्ग दिखाती है।

जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चढ़कर अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है, उसके जीवन में शांति, संतोष और आत्मबल स्वयं आ जाते हैं। इसी का नाम भक्ति है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति में इतनी शक्ति है।

श्रोताओं, भक्ति केवल मंदिरों में पूजा करने का नाम नहीं, अपितु हर इंसान के प्रति प्रेम, दया और सम्मान रखना भी सच्ची भक्ति का ही रूप है। आइए इसी विचार के साथ, इसी संदेश के साथ, आइए एक सुंदर भजन को हम सुनते हैं भक्ति में शक्ति का।

श्रोताओं, भक्ति और कर्म का संबंध आत्मा और शरीर जैसा है, क्योंकि बिना कर्म के भक्ति अधूरी है और बिना भक्ति के कर्मों में पवित्रता नहीं आती। श्रोताओं, इसी के साथ हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं। आशा है आप सभी के मन में भक्ति, श्रद्धा और आस्था रहे। पूजा को अनुमति दीजिए। मेरी ओर से सभी को प्रणाम।

眼还能体会我颤抖的双唇，怕就怕在我的心急如焚，怕就怕缘分尽了我还在奔爱回

0: घड़ी मिलाती चलिए दिन के 12 बजे हैं। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे करुणा जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। आज तरक्की सहपिया में एक त्रासदी का पता चला। कैप्रिस लेन में एक कार के अंदर दो लोगों को मरा हुआ पाया गया। 31 वर्षीय जॉन वालेरी नोविच सालेस कौचमिलिटिया के निवासी थे और 24 वर्षीय मनीषा बडू नोवेल फ्रांस की। दोनों इबेन में कार्यरत थे। सामियों ने मनीषा बडू को मौके पर मृत घोषित किया, जबकि जॉन वालेरी नोविच सालेस को क्लिनिक ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर ओकुले की पुलिस क्यूपिप में एक संदिग्ध मौत पर जांच कर रही है। मृतक की बेटी के अनुसार 51 वर्षीय बाबू राजपाल सिंह रजपाल, जो फ्लोरियाल पुलिस स्टेशन में कार्यरत थे, ने उनसे कहा था कि मंगलवार दोपहर को शिवानंदा एवेन्यू पर उन पर हमला किया गया था। अगले दिन करीब 1 बजे उनकी बेटी ने उन्हें क्यूपिप मेट्रो स्टेशन की बेंच पर अचेत अवस्था में पाया। अस्पताल ले जाने के बाद गुरुवार दोपहर बाबू राजपाल सिंह रजपाल की मृत्यु हो गई। मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस जांच जारी है। देश के पूर्वी प्रांत कॉन्स्टेंस में आज सुबह लगभग 5 बजे बेलवी हॉल के पास एक सड़क दुर्घटना हुई। पुलिस को सड़क पर एक स्कूटर गिरा हुआ मिला। चालक लालमाटी के निवासी 23 वर्षीय भवेश खुडी और 25 वर्षीय एक अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले। दोनों को साज अस्पताल ले जाया गया जहां दुर्भाग्यवश भवेश खुडी की मौत हो गई। आज दोपहर 3:30 बजे से राष्ट्रीय सभा की बैठक लगाई जाएगी। इसके दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन की स्थापना से जुड़े विधेयक पर बहस जारी रखी जाएगी। याद रहे कि मंगलवार को प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने बहस की शुरुआत की थी। और विदेशी स्तर पर होमोज जलमार्ग के आसपास जारी तनाव, हमलों और तीखी बयानबाजी के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित कूटनीतिक समझौते की खबर सामने आ रही है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार दोनों देशों के वार्ताकार एक ड्राफ्ट MOU पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत मौजूदा संघर्ष विराम को आगे बढ़ाते हुए 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है। इसी के साथ समाचार समाप्त है। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। एवेन्यू पिजों मोटाइन ब्लांच में 55 साल के 55-year-old श्री दर्शन होरीसरन जो संजीव से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 3 बजे इनके मकान एवेन्यू पिजों मोटाइन ब्लांच से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोटाइन ब्लांच की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 3 PM। बेंटा नंबर 2 वाकुआ में 63 साल के

0: 63-year-old Shri Ghanshyam Jia Ji, Shri Ghanshyam Jia Ji, जो सुदेश से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके मकान बेंता नंबर 2 बाकवा से उठाकर दाह संस्कार के लिए बालों सुल्फेगिनो नंबर 5 की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। और गालिया नंबर 2 कास्टेल फिनिक्स में 81 साल के 81-year-old श्री विद्यानंद राम सुंदर जो विनोद से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान गालिया नंबर 2 कास्टेल फिनिक्स से उठाकर दाह संस्कार के लिए ठुआमा मेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दिन के 12:05 हुए हैं। आज 29 मई शुक्रवार का ये दिन RM3 रेडियो मनोरंजन पर मैं विदिता स्टूडियो में बैठी हूँ यहाँ पर। लेकिन आपको बता दूँ कि आज का जो दिन है, आज का जो हमारा प्रोग्राम है सुहाना सफ़र, ये स्पेशल होने वाला है। और महीने के आखिर में ये हमेशा स्पेशल ही होता है क्योंकि हम आपको स्टूडियो से बाहर ले चलते हैं। तो आज की हमारी जो सुहाना सफ़र की टीम है वो गई है रियोबेल, यहाँ के जो सीनियर सिटीजन है उनके साथ हमारी जो MBC की टीम है मस्ती करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं इसका सीधा प्रसारण आप सुन पाएंगे अभी थोड़ी देर में, जो कि चलेगा 2 बजे तक। तो वहां क्या हो रहा है उसके बारे में जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी के लिए मस्ती थोड़ी जारी है। भाई फ्राइडे है, मूड बना ले।
2: RM3 रेडियो

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

रात बाकी बात बाकी, अभी थोड़ी सी मुलाकात बाकी है। हम आपको लेके चलेंगे रियोंबेल थोड़ी देर में, और वहाँ के जो सीनियर सिटीजन हैं उनके साथ पूरी मस्ती होने वाली है सुहाना सवर की टीम के साथ, जो कि वहाँ पे पहले ही पहुँच गए हैं। अभी मैं नीतुषा से बात करी थी, उन्होंने कहा कि अभी हम लोग सारी सेटिंग में लगे हुए हैं, एक बार शुरू कर दिया फिर देखना मेरी

जान क्या कमाल होने वाला है। तो चलो भाई, अगर कमाल होने वाला तो वही कमाल के लिए हम रेडी हैं यहाँ पर आपके साथ। और जब बात करते हैं अब हम गीतों की, तो ऐसे ऐसे गाने अभी हम चला रहे हैं ताकि हमारे जितने भी वहाँ पे अंकल आंटी चाचा चाची दादा दादी मौसा मौसी है उनको भी थोड़ा सा क्या कहते हैं जोश आ जाए। तो चलिए जोश मिलाने के लिए कुछ गाने ऐसे हो जाए।

0: मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार।
1: Happy

एन इवनिंग इन पेरिस. जी क्या बात है. वैसे पेरिस तो नहीं जाएंगे लेकिन हाँ यहाँ हम स्टूडियो में बैठे बैठे आपको बाहर ज़रूर लेकर जाएंगे. और गियोंबेल हमें जाना है थोड़ी देर में. समय 12:20 हुए हैं. चलिए इसी के साथ जो नेक्स्ट हमारा गाना होने वाला है ओ माँ पिया तू अब तो आ जा. नीतू शाह तुम भी आ जाओ पूरी टीम के साथ. नहीं लेकिन वो क्यों आएगी, वो तो हमारे सीनियर सिटीजन के साथ है ना, तो हमें उनके पास जाना पड़ेगा. तो ठीक है जाएंगे थोड़ी ही देर में.

0: गई 12:22। देखो नितुषा आ गई।
1: हेलो।
2: मैं तो आ गई लेकिन अकेले बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि हमारी पूरी टीम है यहाँ पर। आप कब से कह रहे हैं हमारी रेडियो मनोरंजन टीम आप पहुँचे हैं एट्रियन बेल रिक्रिएशनल सेंटर। क्या नज़ारे, वाह। सामने देख रही हूँ तो सी साइड है, जो वेव्स है यानी कि सी के, और यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे लोग हैं। सब कोई के नमस्ते। क्या बात है, आवाजें सुनाई दे रही है मेरी।
0: नितुषा सबसे पहले आपको सबसे पहले तो आपको नमस्ते।
2: नमस्ते बेटी,
0: बड़ी हंस रहे हो। हंसते हंसते पहुंच गई वहां पे।
2: आपने इसने प्यार से पुकारा नीतू, तू अब तो आ जा। नीतू के साथ गिनिशा भी है, उषा भी है, डीजे वकल है साथ में है, डोमिनिक और हमारी पूरी टीम है यहाँ पर 2 घंटों के सुरेले सफर में हमारे अपनों के साथ।
3: बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू वेदिता एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन।
0: हेलो।
3: आज हम मनाएंगे मदर्स डे।
0: यस, हैप्पी मदर्स डे।
3: और जोर से तो विदिता आप सुन रहे हो, यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं।
0: मैं भी
3: मदर्स नहीं, पापास भी है, बड़े सारे पापास बैठे हैं बीच में और पापास आगे आके बोल रहे हैं कि मुझे भी गाना है आज। तो चलिए, क्या उषा भी है। गुड आफ्टरनून उषा।
4: गुड आफ्टरनून, नमस्कार आप सबको, कैसे हैं आप? बस यहाँ पर आपको देखकर बहुत खुशी हुई। जैसे कि नीतुषा ने कहा, गिनिशा ने कहा, हम खूब मस्ती करेंगे और यहाँ पर हमने सुना है कि बहुत सारे कलाकार हैं।
2: बहुत सारे कलाकार, आज मैं और उषा गाने वाले शायद नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर इतनी लंबी लिस्ट जो मिली है, दो एसोसिएशन है, कॉन्डोमास्क के वेलनेस सीनियर सिटीजन एसोसिएशन एंड मेनिल आर्यन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन। आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि आज हम लोग आए हुए हैं हर महीने के आखिरी जो शुक्रवार है, और आज स्पेशली आए हैं गिनी और उषा क्योंकि हम लोग फिट मामा करने वाले हैं भाई, मदर्स डे मातृ दिवस सेलिब्रेट करने वाले हैं आप सब के साथ, और हम तो बिल्कुल तैयार हैं। आर यू गाइस रेडी?
3: मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ।
2: तो चलिए,
3: आप लोगों की आवाज़ सुना।

0: आप लोग रेडी हो?
1: क्या बात है, आज तो खूब जमकर मस्ती करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कहा बहुत सारे कलाकार हैं, तो मैं मिस्टर हरिदत्त से मांग करूँगी कि अगर आप आ सकते हैं यहाँ पर। शायद अभी भी वो इतने तैयार हो रहे हैं, मैंने कब से सुना कि नहीं वो तैयार हो ही रहे हैं, तैयार हो ही रहे हैं, लापू टाकम डाल रहे हैं,
0: मेकअप शेकअप करके सभी आ रहे हैं।
1: तो कोई बात नहीं, यहाँ पर उषा भी है, तो हमारे जो म्यूज़िक है आप एक प्यारा सा गाना गा दीजिएगा। और मुझे पता है आप कौन सा गाना गाने वाली हो, रहे ना रहे हम, बस सकल हो ना हो, लेकिन ये जो पल यादगार बनने वाले हैं।
0: तो चलिए जी, जोरदार तालियां हो जाए उषा के लिए।

0: थैंक यू सो मच.
1: क्या बात है और क्या गाना है गिनी. वैसे रहे ना रहे हम महका करेंगे.
2: लेकिन रहे ना रहे, लेकिन RM3 रेडियो में निरंजन हमेशा रहेंगे आप लोगों का साथ देने के लिए, हमेशा ये वादा रहा.
1: ये बिल्कुल पते की बात आपने कही है. और जब तक आप लोग हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है भाई.
2: बिल्कुल बिल्कुल. मैंने देखा सब इतने सज धज के आए. आंटी आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो, वेरी प्रिटी.
1: ये उम्र है क्या रंगीली, ये तो उम्र है सचने सवरने का. तो वेरी गुड. और यहाँ पर हम लोग स्पेशल मदर्स डे, तो अभी से ही आप लोगों को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.
2: थैंक यू.
1: और जैसे कि यस आपको भी, हम सबको भी. और जैसे कि हमने की कहा कि यहाँ पर उषा, तो आपकी आवाज हमने सुन ली है, लेकिन हम बेकरार है गिनी. यहाँ पर हमारे जितने भी मेहमान हैं, जो एसोसिएशन है, कॉडोमास का वेलनेस सीनियर सिटीजन एसोसिएशन एंड मेनिल आर्यन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, यहाँ पर बहुत सारे कलाकार फनकार यहाँ पर
2: बहुत बैठे हैं. अभी तो मैं देखूंगी बारी बारी से कि कौन अपना कला दिखाएंगे. अभी आप बुलाने वाले हो किसको?
1: यस, अभी मैं बुलाने वाली हूँ कॉडोमास का वेलनेस सीनियर सिटीजन एसोसिएशन से श्रीमान सत्यवान. इनके लिए प्लीज जोरदार ताली हो जाए. आप गाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना. और यहाँ पर मैं इनसे थोड़ी बात करने वाली हूँ. तो चलिए यहाँ पर आपसे हम लोग रूबरू होंगे. आप अपने बारे में कुछ बताएं मिस्टर सत्यवान. हाँ जी,
3: मैं सत्यवान हूँ, सत्यवान सुबाना. मैं कॉडोमास वेलनेस सीनियर सिटीजन एसोसिएशन से हूँ. आज आपके सामने थोड़ा एक गाना पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मदर्स डे आ रहा है. बहुत बहुत बधाई जिस सभी को, जिसके अभी तक माँ जिंदा है. मेरे माँ तो गुजर गए, लेकिन एनीथिंग, हैप्पी मदर्स डे टू एवरीबॉडी.
1: बहुत बहुत धन्यवाद. भले ही आपकी माँ ना हुए, लेकिन आप भी एक पिता है. तो कभी कभी कहते हैं ना, पिता भी माँ समान ही होती है गिनी. तो चलिए, आप एक खूबसूरत गीत गाना चाहते हैं. लगता है कि आप किशोर कुमार के यस, लेकिन राजेश खन्ना के जबरदस्त फैन है. ये गाना स्पेशली आप चाहना चाहती हैं.

0: क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए श्रीमान सत्यवान के लिए। आप जब गा रहे थे ना, लग रहा था कि हाँ आपके दिल को जरूर चैन मिल रहा था कि नहीं?
1: मुझे तो चैन मिल गया। कि आप लोगों के दिलों को चैन मिली या नहीं? अच्छा लगा आपको? अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरू हुई है आज का ये कार्यक्रम। सो वी आर सेलिब्रेटिंग मदर्स डे स्पेशल। हाँ जी, पूरे RN3 का जो टीम है हम यहाँ पे हैं रेडियो मनोरंजन, एंड इवन आप लोग जो हैं, हम सब एक ही टीम है, कोई अलग नहीं है। जैसे कि नीतूषा ने कहा है कि कोई सुल्फेरिनो से है,
0: मेनिल से है। बहुत सारे सुल्फेरिनो वाले लग रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे परिवार, सब तो परिवार ही है ना?
1: बिल्कुल जी, इसीलिए सब मिलके जुलके सब नाचेंगे गाएंगे साथ में, लेकिन थोड़ी सी मस्ती हो जाए, क्या कहें?
0: ये तो बनती है भाई, मस्ती ना हो ये ऐसा हो नहीं सकता।
1: और एक्चुअली आपको तो याद ही होगा, सारे मामाज जो है जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके साथ हम खेलते हैं, उनको सिखाते हैं कि कैसे खेलना है, क्या करना है, कितना मजा आता होता ना। ये जो दिन होते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि काश बच्चे छोटे ही रह जाते, वो दिन कितने प्यारे होते। तो कोई बात नहीं, हम दोबारा फिर से जिएंगे ये वही दिन आप लोगों के साथ आज। तो क्या करेंगे, अभी थोड़ी सी मस्ती करेंगे। विल हैव अ गेम।
0: आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रही हूँ।
1: आप अभी, मैं हंटिंग करने जा रही हूँ, मुझे 5 मामाज चाहिए, 5 मम्मीज चाहिए।
0: फटाफट
1: यहाँ से एक मम्मी आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। मैं
0: शर्माने का नहीं,
1: मैंने खाना खा लिया आंटी जी, आप ऐसे मत देखो। आ जाओ, चलिए आप आ जाओ यहाँ से, कोई तो आ जाओ मेरे पास। आई नीड 5, 1, 2, 3 यहाँ से। आप उधर मत देखना, आप आ जाओ। चलो एक लेडी और चाहिए मुझे, एक और वहां से आ जाइए। आप शर्मा क्यों रहे हो? पता है नीटू या आंटी बोल रहे तुम जाओ, वो बोलते नहीं तुम जाओ, पहले तुम आ जाओ।
0: आज कोई नहीं बचेगा,
1: ये जो आंटी मना करे ना उन्हीं को बोलेंगे आ जाओ मून, आ जाओ मून। चलिए वी हैव 5 आंटीज, अभी एक गेम शुरू हम करेंगे। सो उषा, अभी आप उनके साथ थोड़ी सी बातें कर लीजिए, आई विल कम बैक।
2: हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि गिनिशा क्या करने वाली है ना, मुझे पता है, लेकिन
0: आज की निशा बिरयानी पकाएगी।
2: मैं आपको बताऊंगी नहीं वो क्या करने वाली
0: है। मुझे लगता है आज वो बिरयानी पकाएगी, बनाएगी।
2: बिरयानी देखो आलू के साथ आ गई। और मैं चाहूंगी कि यहाँ पर जो भी लोग हैं उन सभी स्टाफ के लिए एक जोरदार ताली हो जाए जिन्होंने आप लोगों की सेवा की है। तो सभी स्टाफ जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारियाँ की हैं तो उनके लिए जोरदार तालियाँ। आप उनको लेकर कहाँ जा रहे हैं आलू के साथ?
0: आप लोगों को पता चल गया होगा, उषा इनको पता चल गया होगा ये कौन सा गेम है,
2: बिरयानी बनाना।

0: बिरयानी बनाना ये तो अभी भी मुश्किल है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जब हम छोटे थे, जैसे कि गिनी ने कहा, हम लोग बड़े हो जाते हैं, वो जो गेम्स हम लोग किया करते थे याद है, लेकिन करते नहीं है। कभी कभी शर्म लगती है, कभी कभी बच्चों के सामने कुछ क्या हो जाए, लेकिन इन आंटीज के हाथ में है चम्मच यानी कि स्पून। आपको पता है क्या करना है? आपको शायद पता चल गया। एक सेकंड, इनसे बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले फटाफट आंटी आप अपना नाम बताएं। ऑलरेडी सेट हो चुकी है, ऐसे चम्मच लेकर खड़ी है। आपका नाम?
1: मैं उमा देवी किशन हूँ और कौंडे मास की हूँ, वेलनेस की ओर से।
0: बेस्ट ऑफ लक। आपका नाम?
2: सुरेखा केजू, कौंडे मास से।
0: और आपका नाम?
3: रेनुका कास्टेल से।
0: कास्टेल से। आप कौन है जी?
4: गीता।
0: गीता।
5: यस, मेनिल से।
0: मेनिल से। और आपका नाम?
6: शीतल कोवल, सेबास्टोपोल से।
0: अच्छा, यानी कि कॉडियोमास से आई हैं आप। चलिए, आप लोग रेडी है? वो गाना याद आ रहा है, आलू ले लो, आलू ले लो, ले लो। एक्चुअली हम आलू बेचने नहीं आए हैं, इट्स अ गेम, ना बिरयानी पकाएंगे। आपको तो पता है ना कि क्या करना है, चम्मच तो हमने पकड़ा दिया है, खाना तो आप खा चुके हो, अब इस चम्मच का क्या करेंगे? इसको लेके चलना है और इसके ऊपर एक आलू हम रखेंगे और जल्दी जल्दी वहाँ जाना है जहाँ तक टेबल है और मुड़ के वापस आना है। और जो सबसे पहले यहाँ वापस पहुँचेंगे उनको एक गिफ्ट मिलेगा। ये रेड वाली सूट जो लेडी है ना, इन्होंने बोला है कि वो आपको गिफ्ट देंगे। बिल्कुल जी, उन्होंने बोला है कि देयर्स अ टिकट, टू वे टिकट, शी इज़ गोइंग टू गिव यू अ टू वे टिकट। अब सोचो कहाँ जाएंगे आज। तो चलिए हम आपको आलू पकड़ाएंगे, आप अपना आलू पकड़ लो। नहीं, और मैं, चलो मैं सिखाती हूँ कि कैसे करना है। आलू रखो, आपको चम्मच यहाँ से नहीं, यहाँ से टिप से पकड़ना है, टिप से ऐसे पकड़ के चलना है, ठीक है? वहाँ जाके मुड़ के वापस आना है। अगर गिर गई तो उठा लेना, फिर रख लेना, फिर से शुरू करना। और अगर किसी को टक्कर मारना चाहते हो तो मार लो, हम बुरा नहीं मानेंगे। चलो हम आलू, हम बोल रहे हैं आलू ले लो, ये आलू फेंको।
7: हाँ तो आप रेडी हैं? और वहां पर नीतूषा गाना चलाएगी।
0: सो यू आर रेडी? रेडी के निशा?

0: चाची की ताली बजाए
1: क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी में हैं, इन लोगों के लिए ताली बजाए, वो लोग इंतजार नहीं कर पा रहे हैं।
0: इनको बहुत ही ज्यादा जल्दी है आलू लेके चलने का। हम बोलेंगे गेट सेट गो, फिर चलना शुरू करोगे, वहां पे जाके मुर्गे वापस आना है, ठीक है? गेट सेट

0: सीधा। ये सिर्फ एक वार्म अप था, अभी असला जो असली खेल है ना अभी शुरू होगी। हमने कहा सीधा और अपना हाथ ऐसे सीधा रखना है मैडम जी, ऐसे तो कोई भी चलेगा ना, ऐसे सपोर्ट लेके तो कोई भी चल सकता है, सीधा रख के। और जब हम कहेंगे नहीं आप लाइन पे आ जाओ, ओहो चप्पल भी खोल ली मैडम ने, लाइन पे आ जाओ, चलो गेट, रुको जाना ज़्यादा जल्दी है इनको, गेट सेट गो, चलो तालियां हो जाए और म्यूजिक।
1: हाथ सीधा,

0: ये लुक ही ले रही है, ये जो मैडम है ना वहाँ तक गई है, यहाँ पे आई और मुझे बोले और अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा आपको? चलो ऐसी आंटी से पूछते, कितना अच्छा लगा?
1: नहीं ओके,
0: आपको भी अच्छा लगा? एक्चुअली इस आंटी ने सबसे अपना आलू सबसे आगे रखा, ऐसे चल रही थी कि मुझे सबसे आगे पहुँचना अपने आलू को लेके, अच्छी बात है। और नंबर टू ये वाली मैडम आई, नंबर थ्री बाकी मैंने देखा नहीं, मैं मेरे सिर्फ दो

भाई, मैं सिर्फ दोनों दो तीन लोगों को दे सकती हूँ. तो एक्चुअली मैडम आपको इनको गिफ्ट देना है. थैंक यू सो मच. आपका नाम क्या है? सरिता जी, आप कहाँ से हो? मेनिर से. सरिता जी ने मुझे ऐसे आंख मार के बोला था एक कोने में ले जाके कि मैं इनको एक गिफ्ट दूंगी, आप मुझे अपने आलू वापस दे दो. हाँ ठीक है, उन्होंने बोला था कि एक टिकट देंगे, आले रेटो मेट्रो क्या पिप पोलवी.

0: मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, आप जीते हैं एक बढ़िया सा ट्रिप फ्रॉम पोट्रीज टू क्यू पेपर. थैंक यू सो मच.
1: क्या बात है, ये गेम तो काफ़ी में इंटरेस्टिंग है, हम भी बाद में खेलेंगे. और अभी के लिए मैं मिस्टर हरिदत्त को बुलाना चाहूँगी. और जैसे कि हमने आपको कहा कि ये है सुहाना सफ़र हमारे अपनों के साथ, आप हमें बड़े, अब हमारे बड़े हैं, आप सबका प्यार आशीर्वाद जो मिल रहा है. तो बस यहाँ पर गिनी आ रही है और थाम रही है माइक मिस्टर हरिदत्त को. और आप हैं मिनिल आर्यन सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन से, आपका स्वागत है. नमस्ते सर जी, कैसे हैं आप? बस आप ठीक हैं. आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप मिनिल एसोसिएशन से आए हैं.
2: मिनिल से है, मैं हूँ. ये नहीं चल रहा है.
1: हाँ जी, तो आप हमें बताएं, आप मिनिल एसोसिएशन से आए हैं और आप यहाँ पर आके आपको बहुत अच्छा लग रहा है.
2: मैंने आपको सुना,
1: आपको अच्छा लग रहा है आज आए हुए हैं. हम भी, हमारी टीम आपके साथ है.
2: बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा. और मैं, मेरा नाम हरिदत्त दुखी है, लेकिन फिर भी मैं दुखी नहीं हूँ. ऊपर वाले के छोर से मैं अच्छा से जी रहा हूँ. अपना जीवन बच्चों में, परिवार में अच्छा से चला रहा हूँ. तो मैंने आप लोगों को कहा, माफ करना मेरा हिंदी इतना फ्लुएंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ. कल मैंने आप लोग से कहा था, मैं आप लोगों को अपने दिन पे वापस बुझाऊँगा. जब हम जवान थे, ये 70 और 90, इसी पर हम मैं गाना गा रहा हूँ. मुझे फिर कापेल rappelle je joue peut-être je suis très couillé de la cousine de Bétan 60 ans, je suis content. Mon frère est très content, retourne je joue encore pareil. Ok, merci.

0: क्या बात है, क्या बात है। जोरदार ताली हो जाए मिस्टर हरिदत्त के लिए। आपके दिल की पुकार को हमने सुन लिया है, क्या बात है। कलाकार तो बहुत सारे हैं। उषा, हमारी जरूरत बिल्कुल नहीं है।
1: बिल्कुल नहीं है, मैं तो गाना चाहती हूँ। कब से कब का मैं इंतजार कर रही हूँ।
0: एक गाना तो गा लिया ना।
1: एक गाना मैंने गा लिया, अब क्या करें।
0: बस हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही गाते रहे, गुनगुनाते चले, इनसे थोड़ी बातें कर ले, फिर मैं एक बहुत स्पेशल गाना गाने वाली हूँ हमारे सभी माओ के नाम।
1: लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि सिर्फ गाने वाले हैं, नाचने वाले नहीं है।
0: अभी तो बस इंतजार का फल मीठा होता है। अभी तुम लोगों ने देखा नहीं है ये लोग कैसे कैसे डांस करते हैं।
1: मैंने डांस की बात की और इनके चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान देखा मैंने। देखो
0: भोजपुरी के तड़का हमने मारब सा, हाँ। सुन स्प्रे कर ऐसा। चले थोड़ी बहुत बातें आप लोगों से हम लोग कर देते हैं। मुझे पता नहीं कौन कहाँ है, लेकिन बस रैंडमली नमस्ते जी, कैसी हैं आप। उनके सामने आ रू। नो नो नो, मेरे सामने मत आना। आप कहाँ से हैं? अच्छा, आपको अच्छा लगता है, आप सब घूमने जाते हैं, आप लोग MBC रेडियो सुनते रहते हैं, सुनते हैं ना। कौन से गाने आपको ज्यादा पसंद है?
2: बहुत से गाने।
0: आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
2: मोहम्मद रफी।
0: अच्छा, रफी साहब का कोई भी गाना एक लाइन गा लेंगी आप?
2: नहीं, मैं
0: पसंद भी करती है, अभी नहीं गाएगी लेकिन बाद में गाएंगी। आपसे तो हमने बात कर ली है। नमस्ते जी, आप किस एसोसिएशन से हैं? आप भी कौन से मास्क से हैं? आपको कैसा लग रहा है? आप भी गाएंगे, डांस करेंगे अभी थोड़ी देर?
1: देखा मैंने बोला ना, डांस करेंगे
0: अभी यहाँ पर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप है मिसेस कलावती जी हैं, आप मिसेस मागा। बस आप इस एसोसिएशन के बारे में, वेलनेस एसोसिएशन के बारे में एक दो शब्द बताएं।

0: आप लोग 5 साल से हैं, वो सोच रहे मैं क्या बताऊं। आप थोड़ी बहुत जैसे कि आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स, जो सोची हैं आप लोग करते हैं, तो कोई बात नहीं। आप मुझे पता है आप रेडी हैं, पोएम सुनाने वाली हैं थोड़ी देर में, तो अभी एक स्पेशल गाना हो जाए उषा
1: जी। अब आपकी आवाज़ में हम सुनेंगे एक प्यारा सा गाना, और मैं चाहूँगी, देखा आपने गला ठीक नहीं है, जुकाम है, फिर भी इतने दूर से आए हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और अब मैं चाहूँगी कि नीतूषा के लिए एक ज़ोरदार ताली हो जाए। थैंक यू।
0: मेरी तरफ से ये गाना सभी माओं के नाम और सभी पापा, क्योंकि यहाँ पर मॉरिशस में हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, फादर्स डे भी, तो ये गाना आप सब के नाम, मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ गाना।

0: धन्यवाद। बस माँ का नाम लेके सबकी आंखों में मैं देख रही हूँ आंसू है। बस ये शब्द ही छोटा सा शब्द है गिनी, लेकिन इसमें कितनी शक्ति होती है, कितना पावर होता है। माँ जब तक है, इसलिए हम कहते हैं जब तक हम अच्छे बने रहते हैं, ये माँ का संस्कार है। गिनी, यू नो, हम लोग कहते हैं कि पिता जो होते हैं वो डिसिप्लिन का जो इक्वल्स टू डिसिप्लिन, और माँ जो होती है हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जीने का सलीका सिखाती है। और यहाँ पर आप लोगों की आंखों में देखकर पता चल गया कि आप लोग अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। तो ऐसे ही जितने भी बच्चे सुन रहे होंगे, शायद वो लोग भी अपने माता पिता से ऐसे ही प्यार करें, जो संस्कार उनको मिले हैं वो कभी ना भूले और अच्छा इंसान बने।
1: जैसे कि हम हमेशा कहते हैं ना कि माँ हो तो सब कुछ है, अगर माँ नहीं तो घर खाली खाली सा लगता है। लेकिन हमेशा हम याद दिलाना चाहेंगे, जब तक कि आपकी मम्मी जिंदा है, आप हमेशा प्यार करें, आप उनको रिस्पेक्ट दें। जैसे बोलते हैं ना कि आजकल के ज़माने के बच्चे ये सब बड़े बिजी होते हैं, लाइफ हैक्टिक होते हैं, अपने मम्मी पापा को शायद किसी ना किसी कारण से होम केयर होम में सेंटर में भी छोड़ के आते हैं। लेकिन प्लीज़ हमेशा याद रखें कि वक्त निकाल के उनके साथ दो मिनट बैठ के बात तो कर ले। जैसे कि घर पहुंचते हैं, चाहे आपके बच्चे बिजी हो, आप खुद कभी कभी देखते हैं ना कि बच्चे रियलाइज़ नहीं करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या मिसिंग है। तो आप बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर या इवन पापा हो के भी आप उनके पास जाएं, बैठें। ये जो वक्त है ना, दोबारा मुड़ के वापस नहीं आता है।
0: कहते हैं ना गिनी, हाँ जी, कि क्या फ़ायदा अगर आप मंदिर मस्जिद जा रहे हो, वहाँ पर प्रेयर कर रहे, पूजा प्रार्थना, और आपके घर में जो माता पिता है उनका ही आप सम्मान नहीं कर रहे होगे, तो कोई फायदा नहीं है।
1: बिल्कुल। सो हैप्पी मदर्स डे। चलो, हम कुछ ज़्यादा इमोशनल होने लग गए हैं, अभी तो मस्ती करने का वक्त आ गया है। ये नीटू है ना, बड़ी बुरी आदत है इसकी, जहाँ जहाँ जाती है ना रुला के ही छोड़ती है। ये गंदी बात है और मैं नहीं सुनूंगी अब इनकी बातों को, क्योंकि अभी हम मस्ती करेंगे। और फिलहाल के लिए चले, लेडीज़ को हमने उठा दिया। अंकल जी कैसे हो, बढ़िया ना? नमस्ते अंकल, आप ही से बात कर रही हूँ। चलो अंकल के पास जाएंगे। अंकल ऐसे देख रहा है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। क्या हाल है अंकल?
2: नमस्कार। नमस्कार सर।
1: आपका नाम?
2: सुनील है।
1: कहाँ से?
2: मेनिल से।
1: मेनिल से, हम पड़ोसी, हम सैपल से हैं। हाँ ठीक है, तो आ जाओ, आ जाओ। चलो चलो, हाथ पकड़ सकते हैं ना आपका? चलो अंकल, चलो। मैंने बोला हाथ पकड़ सकते हो, आप जेब में डाल रहे हो हाथ, ये गलत बात है। चलो इस अंकल के लिए जोरदार तालियां। एक और, चलो और अंकल चाहिए, आप भी आ जाओ। मैं आपको जानती हूँ ना? हाँ, ये हमारे पड़ोसी है। हाँ जी, हमारे पड़ोसी है। तो चलो पड़ोसी जी, आप आ जाओ। अच्छा, हिंदी नहीं आती है, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगी, आप ही आ जाओ। चलो मेरे को 5 जो जेंट्स है चाहिए। चल 6 चलेगा, 6। आप भी आ जाओ अंकल, आ जाओ ना, इतने प्यार से आंटी बोल रहे हैं, जाओ ना, जाओ जल्दी से, आ जाइए जल्दी जल्दी करते हैं। अरे आप भी आ जाओ, आइए आइए। हाँ जी, आप भी आ सकते हो। कितने हो गए? 3, 4, 5, 6। आप भी आ जाओ। चलिए अभी हम एक खेल खेलेंगे, बोलते हैं ना आ खेल खेले हम।
0: तो बस यहाँ पर खेल, इसके हाथ में टोपी, ये किसके सर पे जाने वाली है?
1: सबके।
0: आपने? सबके।
1: मेरे हाथ में है टोपी और यहाँ पे इतने सारे सर हैं। तो चलो आप आ जाइए, हम खेलेंगे अभी टोपी। आपको पता है ना कैसे खेलते हैं? आप सब खड़े हो जाइए, ऐसे पीट करके, ऐसे एक राउंड बना के, एक दूसरे को नहीं देखना है, उस तरफ देखिए। ओके, आप भी आ जाइए। हाँ जी, ऐसे ही थोड़ा उधर जाइए अंकल, थोड़ा उस तरफ, इधर इधर इधर इधर, आप इधर आ जाइए। म्यूज़िक बजेगा, ये टोपी इनके सिर पे, म्यूजिक बजते ही आप ऐसे, उनके सिर ऐसे करते करेंगे, जिसके सिर पे ये रुकेगी, जब म्यूजिक बंद हो जाएगा वो OUT आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप ही से शुरू करते हैं। डोम रेडी विथ म्यूजिक, चलिए शुरू करते हैं।

जब अंकल ने बोला ओ हो ओ यू टी आउट, ये इसकी प्लानिंग थी एक्चुअली. अंकल ने मुझे बोला एक मिनट मैं इसको आउट कर लूँ. आपको नहीं पता उन्होंने बोला है मुझे. जस्ट टू रिमाइंड यू द शो इज लाइव ऑन आर एंड थ्री मनोरंजन का जो पेज है ऑन फेसबुक, आप हमें फॉलो कर सकते हैं. म्यूजिक

किसके सिर पे रुकी? अच्छा अपने आप बोलता है मैं अपने आप जा रहा हूँ, ये बोलेगी ओ यूटी आउट, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, चलो हम अपने आप निकलते हैं। थोड़ा एक मिनट पास आ जाइए, थोड़ा सा चलो पीट करके स्टार्ट।

0: टिक्के।
1: ओहो म्यूजिक रुकी तो टोपी कहाँ पे थी?
2: इन
1: आपके सिर पे। हमारा प्लेन फेल हो गया अंकल। चलो आप थोड़ा बीच में आ जाइए ना, आप ना गा के क्लैप करके नाच के ये एंजॉय कर सकते हो ना। चलेगा म्यूजिक।

ब्यूटी आउट। थैंक यू जी। और मैं बताना भूल गई, जो जीतेगा, इस वाली आंटी ने बोला है कि इस बार वो देंगे गिफ्ट। थैंक यू आंटी। आंटी बोलती है कि उन्होंने तो मेट्रो का टिकट दिया है, मैं तो मॉरिशस के बाहर भेजूंगी। चलो शुरू हो जाए। आप एक मिनट इधर आ जाओ, पीट करो यहाँ अंकल के साथ। कम यहाँ, इधर इधर इधर इधर। हाँ ऐसे, अब खेलो।

0: ब्यूटी, आज आज इतना अच्छा खेल रहे थे, फील्डिंग भी अच्छे कर रहे थे, अभी आप जीत गई, कंग्रेचुलेशंस। क्या नाम बताया था आपने अंकल?
1: सुनील।
0: मिस्टर सुनील के लिए जोरदार तालियां। अब आपको जानना है कि आपने गिफ्ट में क्या जीता है। आंटी जी, हाँ जी, उन्होंने दिया था एक टिकट मेट्रो क्यूपी पोर्टलिस, आप क्या दोगे?
2: एक ट्रिप, बोट ट्रिप टू इलोसेफ।
0: देखा, मॉरिशस के बाहर भेज रहे हैं, यानी कि इलोसेफ तक आपको जरूर भेजेंगे। नंबर ले लेना है। आप अपने बीवी के साथ आए हो? अकेले आए? आप भी अकेले आए हो? ये क्या बात हुई, अच्छी बात है। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। हम लोग मजाक करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, आप लोग बुरा ना मानिए, बस हम एंजॉय कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी घर के सारे टेंशन को भूल जाइए, बच्चे, परिवार, पड़ोसी सब को भूल जाइए। फिलहाल के लिए इस वक्त को आप दिल से एंजॉय कीजिए, ठीक है? तो अपने लिए जोरदार तालियां।
3: थैंक यू सो मच गिनी। वेल, यहाँ पर जैसे कि हमने कहा, बहुत सारे कलाकार हैं, आप लोग गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वेरी गुड। और यहाँ पर श्रीमती साधना मौगा है, शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ कॉडमास्क वेलनेस सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन। आप दो शब्द कहे और एक प्यारी सी कविता, एक पोएम आप सबको सुनाना चाहेंगी।
4: प्रणाम। मैं एक माँ नहीं हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं।
3: गिनीशा बोल रही है, वो है, आप उसको अडॉप्ट कर सकती है। हम सब

0: आपके बच्चे हैं।
1: है, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बच्चे मिल रहे हैं, धन्यवाद। एक कविता मैंने लिखी, माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका असूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ को नानाज करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मीठी जन्नत की धूल है। धन्यवाद।
2: बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारी। आपने खुद लिखी है ये कविता?
1: मैंने।
2: कोई बात नहीं, लेकिन आपने कहा अभी आप माँ नहीं है। मैं नहीं मानती हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे को पैदा करें तभी माँ बनते हैं। आप शायद एक बहन होंगी, चाची होंगी, शायद एक बहू होंगी, एक बेटी है, तो किसी ना किसी को तो आपने संभाला है, किसी को तो बड़े होते देखा आपने, किसी की उंगली, किसी का हाथ तो आपने पकड़ा होगा ना, तो ऐसे भी आप माँ बनती है। हम लोग कहते हैं माँ, मामा, मासी, सब माँ समान ही होते हैं, तो आप अपने आप को कम बिल्कुल मत समझेगा। और यहाँ पर तो आपके इतने सारे बड़े बड़े बच्चे हैं भाई, एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, तो आप सबकी माँ है यहाँ पर, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई है आपको। थैंक यू।
3: जब नीटू बोल रहे थे ना कि आप सबकी माँ हैं, तो वहाँ पे बोल रहे हैं हाँ सबकी माँ है, सबकी माँ है,
2: सबकी वाट लगाती है,
3: सबकी वाट लगाती है, सबकी माँ है। सो गाइस, अभी के लिए मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी कि बाय द एंड ऑफ दिस शो अभी हमारे पास एक गिफ्ट है सबके लिए। RM3 रेडियो मनोरंजन MBC की तरफ से आप सभी लोगों के लिए आज हम गिफ्ट लेकर आए हैं। सो प्लीज़ वन बाय वन एट द एंड आप आइएगा ज़रूर, विल बी गिविंग यू अ गिफ्ट। और नीटू, हाई नीटू, हैप्पी मदर्स डे।
2: थैंक यू गिनी, हैप्पी मदर्स डे आपको भी।
3: पता नहीं मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, बार बार मैं बोल रही हूँ ना, अभी मैं बाहर गई, आपने बोला कि RM2 पे जाके तुम लाइव कर लेना इन कन्वेंशन, सबसे पहले मैंने कहा हैप्पी मदर्स डे,
2: अलग ही फीलिंग होती है,
3: अलग ही फीलिंग होती है। काश कि एक्चुअली देखा जाए तो मैं तो बोलती हूँ कि वी शुड सेलिब्रेट मदर्स एंड फादर्स एवरी डे। चलो ठीक है, एक खास दिन निकाला गया है 365 दिनों में कि हम उनको सबसे ज़्यादा लाड प्यार दे, गिफ्ट दे। बोलते हैं ना कि जब संडे को मनाते हैं, एक्चुअली मॉरिशस में लास्ट संडे को मनाया जाता है
2: मई
3: महीने में, तो मम्मी पापा को हम इतना प्यार देते हैं, कार्डो देते हैं, हम जाते हैं उनसे मिलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए 365 दिनों में एक दिन ऐसा होता है कुछ भी हो जाए सारे बच्चे जाते हैं ना अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए, तो हम तो चाहेंगे कि वाई वेटिंग फॉर दिस डे।
2: मैं भी हमेशा
3: why waiting for one day to go and meet your mom and your dad?
2: नेक्स्ट डे क्या करते हैं फिर, मामा को देखेंगे नहीं,
3: पूछेंगे भी नहीं। आप रोज थोड़ा वक्त निकाल के अपने मम्मी अपने पापा के साथ बिताइए, और अभी घर जाएंगे आप अपने बच्चों के साथ भी आप थोड़ा सा वक्त, अगर वो एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा एफर्ट आप भी डाल दीजिए, फिर आप देखना म्यूचुअल एफर्ट हो जाएगा।
2: बिल्कुल पते की बात, क्योंकि देखो कल हो ना हो, वी डोंट नो कल क्या होने वाला है, अगले पल क्या होगा नहीं पता, जब चले जाते हैं तब याद आता है काश हमने अपने माता पिता को ये दो छोटे शब्द आई लव यू, जितें मामा आपसे प्यार करती हूँ पापा, जो छोटे छोटे बातें होती है जो होती है ना, अगर हम कह दे अभी तो वो रिग्रेट वो नहीं रहेंगे।
3: एक्चुअली नीटू जैसे कि आप बोले हो ना, अगर मैं किसी से यहाँ पे आके पूछूँ कि आप मुझे यहाँ पे बताइए कितने लोग हैं जिनके अभी मम्मी पापा जिंदा हैं, बहुत कम। पिछली बार आपने अपने मम्मी को कब बोला था आई लव यू मॉम? रोज बोलते हो, अच्छी बात है। सो आई वुड लव कि एवरीवन जो है, जो रेडियो पे भी हमें सुन रहे हैं लाइव, जो हमें देख रहे हैं लाइव ऑन फेसबुक RM3 रेडियो मनोरंजन का जो पेज है, टेक एट लीस्ट 20 seconds ऑफ योर लाइफ एवरी डे एंड डू टेल योर मॉम, डू टेल योर डैड कि वो लोग कितने स्पेशल हो आपके लिए और आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो सबके दिलों में होते ही है प्यार, सो जताना जब उसकी बारी आती है तो पता नहीं क्यों शर्माते हैं, इसलिए हमेशा बोलना चाहिए। मुझे नहीं पता आखिरी बार किसने आपको बोला है आई लव यू, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए।
2: तो यहाँ पर हमारे दो कलाकार बिल्कुल तैयार हैं, एक बार फिर मिस्टर हरिदत्त और आपके साथ है श्रीमती चंद्रानी जी। वंस अगेन आप सबको ले चले हैं डाउन मेमोरी लेन, चंद सलबहार एवरग्रीन सॉन्ग्स, गिनी ओल्ड इज गोल्ड, और आप दिल तेरा दीवाना फिल्म का वही गाना गाना चाहते हैं, मुझे कितना प्यार है तुमसे अपने दिल से पूछो, हम आपसे सुनना चाहते हैं, जोरदार तालियां हो जाए।

तो लीजिए भाई आपको हम ग़ियोंबे लेके चले हैं सुहाना सफ़र, जहाँ पे हर एक सफ़र खूबसूरत हो रहा है। चलिए इसी के साथ उनको एंजॉय करने देते हैं और हम सुनते हैं

0: बड़े खूबसूरत लग रहे हो. ऐसे हम ढूंढेंगे हमारे सारे आंटीज को, कुछ लेडीज को, और उसके बाद बताएंगे कि क्या करना है.
1: Well, यहाँ पर ये कहना चाहेंगे गिनी, क्योंकि हमारे जितनी भी मम्मीज हैं, डैडीज हैं, पापाज हैं, मामाज हैं, सबको गिफ्ट मिलने वाला है. क्या मिलेगा? ये है वर्ल्ड ऑफ नेचर की तरफ से. हम बता दें क्या मिलेगा.
0: मैं नहीं बताऊंगी, इट्स अ सरप्राइज.
1: सरप्राइज है, लेकिन आपको मिलेगा गिफ्ट डेफिनेटली. तो आप लोग बैठे रहे, आराम से गाएं, गुनगुनाएं, हमारे साथ जुड़े रहे. ये तो है पल हमारे अपनों के साथ, ये जो सुहाना सफर है. और वंस अगेन आप सबको याद दिला देते हैं कि हर महीने के आखिरी जो फ्राइडे हैं, क्योंकि इस संडे को स्पेशल मदर्स डे है, इसलिए आज हम आए हुए हैं बस थोड़ा सा पल, थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी मस्ती करने के लिए, आप सबका प्यार आशीर्वाद पाने के लिए. उषा माँ रेडी?
2: जी जी हाँ, मैं रेडी.
0: तो चलिए जी, जोरदार तालियां हो जाए उषा के लिए.

0: थैंक यू।
1: जोरदार तालियां हो जाए इस खूबसूरत गाने के लिए। हम तो कहीं गए ही नहीं थे बहन, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लौट आइए लौट आइए।
0: सबको बेकरार कर रही है कि नहीं?
1: हाँ, अभी सारे लेडीज ना मेरी तरफ नहीं देख रहे।
0: क्यों?
1: वो मैंने बोला था ना कि अभी मैं 5 लेडीज को उठाने आऊंगी, सब ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं। चलिए लेट्स गो। नहीं, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी, आप अपना बैग रखो। नहीं आ जाए, नचाऊंगी नहीं, डोंट वरी, आप आइए मेरे पास। बैग रखो आप, प्लीज़ इस बैग को संभाल के रखना प्लीज़। थैंक यू जी। आइए, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हो?
2: कैस्टेल से।
1: ओके जी, तो चलिए आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। मुझे और 4 लेडीज चाहिए, खूबसूरत सी लेडीज। आप नीचे क्यों देख रहे हो? ऊपर देखो ना, मैं इधर हूँ। हाँ आइए, आप ही आइए। उस टाइम आप उनको बोल रहे थे ना जाने के लिए, आप आइए, आ जाइए। नहीं आप आ जाइए, अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, आप आ जाइए। ललिता कौन है? ललिता, ओ माय डार्लिंग ललिता, मुझे बोल रहे हैं चुप, मैं चुप नहीं रहूंगी, आ जाइए ललिता, आओ आ जाइए यहाँ पे, आप आ जाइए। नहीं आप शर्माते क्यों, आइए, अरे कोई तो आइए, आ जाओ। ओए होए मेरी रानी, क्या नाम है इस रानी का, आपका नाम क्या है?
3: शीला।
1: शीला, शीला की जवानी। बैग रखो, एक और लेडी चाहिए मुझे। अनिता गेस्ते दो मीडम गाते, नहीं है नहीं है। चल अनिता जी कहाँ पे हो आप? अनिता कौन है? अनिता, ओ माय डार्लिंग, अनिता भी आ गए, आ जाइए। चलो ये है अनिता, आप हो चंद्रानी, सचिता, ललिता, शीला, शीला की जब ये याद है मुझे और कुछ नहीं। चलो अभी हम आपको कहेंगे, चलो पीछे आ जाइए थोड़ा पीछे। ये हमारे जो लेडीज होते हैं ना, ये घर के क्वींस होते हैं, दे आर द एक्चुअली। कभी कभी हम किसी लेडी से पूछे ना कि आप क्या करते हो, वो बोलते हैं कि मैं लाइफ में ना कुछ नहीं करती हूँ, मैं घर पे रहती हूँ। नहीं, आप लोग काम करते हो, आप होम मिनिस्टर्स हो ना, सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये है होम मिनिस्टर्स का, ठीक है। और आप लोग इतने सज धज के आए हो, इतने खूबसूरत लग रहे हो, सो सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे मम्मीज, थैंक यू। मुझे भी बोलो ना, मैं भी तो मम्मी हूँ, थैंक यू। तो चलिए फिलहाल के लिए हम आपको क्या, आपसे क्या करवा सकते हैं? आपको कैटवॉक करना आता है? नहीं, डेफिले डोमट नहीं आता है? घर का काम करते हो, कोई बात नहीं, झाड़ू लेके ऐसे झाड़ू झाड़ू लगाऊंगी, ऐसे आप कर सकते हो, कोई बात नहीं ना, झाड़ू को भूल जाइए, बर्तन वर्तन खाना पकाना कुछ भी नहीं। अभी म्यूजिक बजेगा, आपको यहाँ पे फैशन शो करना पड़ेगा। आज के हमारे मॉडल्स से मिलिए, ये हैं आज के मॉडल्स, तो सबसे पहले उनके लिए जोरदार तालियां, ठीक है। आप आएंगे, कैटवॉक करेंगे मटक मटक के, ये रहा लक टुनु टुनु लक टुनु टुनु, ऐसे करके यहाँ पे आए। कोई भी अंकल हो जो सामने, जिसको भी फ्लाइंग किस देना चाहते हो आप दे सकते हो, अगर आपके पति बैठे हैं तो उनको भी दे दे रो, यू वॉन्ट माइंड ना? नहीं, हम मजाक कर रहे हैं, दे विल माइंड है। और यहाँ से फिर आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, सब बारी बारी करेंगे और देखते हैं कि सबसे बढ़िया कैटवॉक आज कौन करेगा, ठीक है। तो चलिए म्यूजिक हो जाए, विल स्टॉप बाय शीला, शीला की जवानी, ठीक है। चलिए म्यूजिक, चलो ओहो ओहो, तालियां हो जाए।

0: ये क्या बात है आंटी, आप ऐसे पुलिस वाले के परेड की तरह चल रहे हो, पता है कहाँ जाना है, आप ऐसे चल रहे हो जैसे पता नहीं यार गिन्नी ने क्या करवा दिया आज मुझसे। ये वाली आंटी जब चल रही थी, अरे चलना तो है तो चलो, ऐसे भी चलेंगे वैसे भी चलेंगे। और ये वाली आंटी, ओह चलेंगे हम भी चलेंगे ऐसे चलेंगे। और ये वाली आंटी, आंटी बोलते हैं मुझे तो चलना है, अरे कहाँ के फंस गए, हमें बोला गया था कि यहाँ पे आका के हम आराम करेंगे, ये ऐसे आराम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाली आंटी बोलते हैं सबसे पहले मैं क्यों आई, कोई बात नहीं मैं कोशिश करूँगी। गिन्नी ने बोला यहाँ तक, हाँ उसकी कौन सुनेंगे, हम तो यहाँ तक चलेंगे। आंटी को मैंने बोला पीछे, बोलते नहीं चुप कर मैं तो चलती रहूँगी। लेकिन जो कुछ भी है, जैसा भी किया आपने, बहुत ही अच्छा किया, जोरदार तालियां हो जाए हमारे इन खूबसूरत लेडीज के लिए। आप लोग बहुत ही अच्छे लग रहे हो, हैप्पी मदर्स डे, मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ ऑलवेज, ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसके लिए एक्चुअली जो बेस्ट मॉम होते हैं उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि यू आर अ गिफ्ट, ओके, आप लोग खुद हमारे लिए एक गिफ्ट हो।
1: मॉम हमेशा बेस्ट होती है, गिनी जैसे भी सिचुएशन हो, जैसे भी हालात हो, ममाज जो हैं आर द बेस्ट। चलिए म्यूजिक की ओर और बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं मिस्टर सत्यवान को बुलाना चाहूँगी, एंड आप एक बहुत ही प्यारा गाना गाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बॉम्बे टू गोवा। अंदाजा लगा कौन सा गाना, बॉम्बे टू गोवा में कौन सा गाना, देखा ना हाय रे हाय रे। तो चलिए मिस्टर सत्यवान आप बिल्कुल रेडी है और ये गाना आप गाना चाहते हैं तो लगे हाथ। आप लोग डालो जरूर तालियां बजाएं, डांस करना चाहते हैं तो फील फ्री, ये जो मंच है आपके लिए, प्रोग्राम आप ही के लिए है।

0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत ही बढ़िया गाना था और आप नाचने भी लगे, और मैं चाहूँगी कि एक जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और यहाँ पर आप इतने सारे लोग हैं, मैंने देखा वहाँ पर ज़्यादा नितुषा भूषा बात कर रहे हैं, यहाँ के लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। नमस्कार आपको, आप कैसी हैं?
1: या
0: अच्छी है। तो मैं बात करूँगी और मैं जानना चाहूँगी कि जो मातृ दिवस का दिन है, मदर्स डे के, आपने प्लान क्या किया है? आपने प्लान क्या किया? पहले आप अपना नाम बताइए।
2: रागिनी।
0: तो रागिनी जी, मदर्स डे पर आपने क्या प्लान किया है? तो ये दिन कैसा कैसा जाएगा? अभी तक सोचा नहीं? तो चलिए मैं यहाँ पर आती हूँ, और वैसे एक गाना है दादी माँ फिल्म से लिया गया, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, अगर आपने ये फिल्म देखे हैं, एक गाना है इसमें माँ पर, कौन सा गाना है? नहीं दादी अम्मा, ये तो दादी के लिए है।

0: हाँ, वैसे हमने भगवान को नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है, लेकिन भगवान को हम अपने माँ के जरिए देखते हैं, है ना। तो जब हम माँ को देखते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो भगवान को सम्मान देने का बराबर है, है ना। तो चलिए जोरदार तालियां। और यहाँ पर नीतूषा है रेडी एक खूबसूरत गाना के साथ।
1: अभी आपने शुरुआत कर दी है कि किसने नहीं देखा है, माँ का नाम लिया है, तो ये जो अभी गाना है सबको पता है, फ्रॉम द मूवी हम साथ साथ है। ये तो सच है कि भगवान है फिर भी मगर अनजान है मगर फिर भी, कहते हैं ना भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए माँ बाप को भेजा है धरती पर। तो ये गाना, एक और गाना आप सबके नाम नजर करना चाहूंगी, और उसके बाद थोड़ा मजा करेंगे, थोड़े से तनी सुन भोजपुरी जन गीतवा बातें हमने चलाओ अब सर, जब सब कोई हमने मजा कर अब सर, हाई जन दिनवा बातें निमन से प्यार से अपनापन से हमने मनाओ अब सब। मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद.
1: हैप्पी मदर्स डे एंड हैप्पी फादर्स डे. आई कैन सी एवरीबॉडी इज गेटिंग इमोशनल. सबको बहुत सारी बातें याद आ रही है ना, आपको मम्मी याद आ रही है, बचपन की बातें याद आ रही है. लेकिन आज आप सारे गम को बुला दीजिए, एंजॉय कीजिए. अरे बहुत सारे लोग ऐसे मैं देख रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ ना आ जाओ नाचो गाओ हमारे साथ, सो व्हाई यू फीलिंग सो शाई. हम लोग यहाँ पे आए हैं मस्ती करने के लिए, जस्ट टू मेक यू हैव अ ग्रेट डे. तो आप एमबीसी टीम के साथ RM3 रेडियो मनोरंजन का जो टीम है हमारे साथ एंजॉय कर रहे हो. यहाँ पे आवाज़ आई, वहाँ पे ढीला ढीला ढीला, मज़ा आ रहा है. ओहो, बार बार जगाना पड़ता है ना आप लोगों को, जागो रे जागो, हम यहीं पे हैं. तो चलिए नीट, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट?
0: उषा बोल रही है फिर से गाऊंगी. अभी अभी गाना गाया था ना, उसको नहीं देखा,
2: वही गाना, क्योंकि मैंने देखा कि आप लोगों को पसंद आया ये गाना और आप लोग साथ मिलकर गा रहे थे. लेकिन जब मैं गाऊंगी ना तो मैं चाहूंगी कि आप भी साथ मिलकर गाएं. ठीक है, ओके
1: ओके, ठीक है,
0: हम भी ओके, तुम भी ओके हो जाओ अब.
2: हाँ जी, सब लोग ओके, शुरू.
1: तुम भी ओके. बर्थडे के लिए परफेक्ट गिफ्ट, सारेगामा कारवां.
0: चले आप लोग भी तालियां बजाएं, साथ में गाइए.

0: धन्यवाद, थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद उषा। वेल, मैं घड़ी देख रही हूँ, कैसे 2 घंटे निकल गए पता भी नहीं चला। आप लोगों को अच्छा लगा? 2 घंटे कम लगते हैं, लेकिन ये जो प्यारा सा वक्त हमने आप सबके साथ बिताया वो बहुत स्पेशल यादगार है, गिनी।
2: बिल्कुल जी, और सबको हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोगों ने साथ दिया, आपने पार्टिसिपेट किया। कुछ लोग जो हैं काफ़ी शर्मा रहे थे, बट स्टिल उन्होंने ट्राई किया कि थोड़ा सा डांस करें हमारे साथ। मुझे ये आंटी बड़ी अच्छी लगी, आपकी हग, आपकी जादू की जप्पी वॉज वेरी पावरफुल। आई लव यू टू, आई लव यू गाइज। एंड सबसे ऊपर हम रखेंगे सारे माओ को एंड पापाज को, पिताजी माताजी जितने भी हमारे बड़े लोग यहाँ पे आज प्रेजेंट हैं। सो हमारे पूरे MBC टीम की तरफ से, RM3 रेडियो मनोरंजन टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे एंड हैप्पी फादर्स डे।
1: वेल, हमारा ये जो छोटा सा प्रोग्राम लेकिन प्यारा सा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, लेकिन सिलसिला कभी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि हर महीने के अंत जो तीसरे जो फ्राइडे है, शुक्रवार है, हम किसी न किसी रिक्रिएशनल सेंटर में जाएंगे, ऐसे ही परफॉर्म मस्ती करेंगे। तो चलते चलते यहाँ पर तनि सुन हमने भोजपुरी तड़का, जहाँ जाते हैं गिनी जुबेदा के मांग परेला, सब कोई बोले ना सर जुबेदा तनि सुन गादा, तो चल जुबेदा संगी हमने गाओ अब सा आप लोगन के छोड़ के जाप सा। वेदिता को बहुत बहुत धन्यवाद, स्टूडियो में है यहाँ पर आपको की निशा उषा डीजे वकील, हमारे टेक्निकल टीम है डोमिनिक, साथ में इकलास अमोद है और दाऊजी, साथ में कुणाल, सब टीम, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन टीम,
2: बिल्कुल, और जो यहाँ पे जितने भी स्टाफ
1: हैं यहाँ पर,
2: जितने भी यहाँ के स्टाफ ऑफ द
1: रियोंबेल रिक्रिएशनल सेंटर,
2: थैंक यू सो मच।
1: तो बस ऐसे ही, और हमारे स्पॉन्सर को नहीं बोलते हैं गिनी, वर्ल्ड ऑफ नेचर। तो बस चल इतनी सुन हमने सब ठुमका लगाओ साथ गिनी,
2: मुझे लगाना है, मैं तो रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ,
3: आई
2: एम ऑलवेज रेडी, एवर रेडी। चलिए म्यूजिक,
3: क्या आप रेडी हैं? दिख तो नहीं,
2: तो चलिए सभी लोग खड़े हो जाइए, आ जाइए हमारे साथ, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए, हाँ।

0: बहुत बहुत धन्यवाद। चला और नाचे के मन बा तनी सुन और
1: जोरदार तालियां हो जाए खुद के लिए।
2: नितुषा शुरू करने से पहले मैंने सुना कि ये जो लेडी है यहाँ पर आप हैं ब्लू लेडी, आपका जन्मदिन है आज
1: तो चलिए सब मिलके गाएंगे, सब मिलके गाते हैं।

0: जी हाँ, हैप्पी बर्थडे। चलिए, दो बज गए हैं, बढ़ते हैं समाचारों की ओर। ये थी हमारी पूरी टीम सुहाना सफर लाइव फ्रॉम रियोबेल।
1: सुनते हैं देश विदेश की खबरें अशिता से। आपको नमस्कार।
2: नमस्कार परिश्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। राष्ट्रीय सभा के कार्य आज शुक्रवार दोपहर 3:30 फिर शुरू होगी। सत्र की शुरुआत विपक्ष के नेता की ओर से पूछे जाने वाले प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन यानी PNQ से होगी। ये प्रश्न रेजिडेंशियल केयर इंस्टीट्यूशंस और नाबालिगों के आश्रय गृहों से जुड़ा होगा। ये PNQ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर व जेंडर इक्वालिटी एवं परिवार कल्याण मंत्री आर्यन नवमारी से संबोधित होगा। विपक्ष के नेता जोली जोगाद मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत संस्थानों की संख्या और उनकी क्षमता उपयोग दर सहित कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगेंगे। वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहस भी आज दोपहर दोबारा शुरू होगी। मॉरिशस के उत्तरी क्षेत्र ओंसलागे में एटीट्यूड ग्रुप ने कल शुक्रवार को एकोलो नामक का एक अनोखा तैरता समुद्री शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। लॉन्चिंग शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद, पर्यटन के उप मंत्री सिडने पियर, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों और एटीट्यूड ग्रुप के संस्थापक जॉन मिशेल पीतू की उपस्थिति में हुआ। ये परियोजना एक परिवर्तित कैटामारन है जिसका उद्देश्य लोगों को समुद्र के और करीब लाना है। इसमें विज्ञान, समुद्री जीवन की खोज और स्नोकलिंग जैसी गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। ये पहल न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि मॉरिशस के नागरिकों और स्कूलों के लिए भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन सीमा के करीब स्थित रोमानिया के गालाटी शहर में एक रूसी ड्रोन रिहायशी इमारत से टकरा गया। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। इंस्पेक्टोरेट फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस ने बताया कि ड्रोन का पूरा विस्फोट पेलोड फट गया जिससे इमारत की 10वीं मंजिल पर आग लग गई। आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक आग बुझाने के दौरान करीब 70 लोगों की इमारत से उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। और दूसरी ओर यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। इटली ने राजधानी रोम में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि फ्रांस और पुर्तगाल में मई महीने का अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। पुर्तगाल के मोरो शहर में तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया जिसने साल 2001 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ये भीषण गर्मी जून की शुरुआत तक जारी रह सकती है। फ्रांस में कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। कुछ स्कूलों में तापमान इतना बढ़ गया है कि छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी जिसके बाद स्कूल बंद करने पड़े। पेरिस में चल रहे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के खिलाड़ियों को भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और एक खिलाड़ी लंबे मुकाबले के बाद कोर्ट पर गिर पड़ा। जलवायु वैज्ञानिकों और संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों का कहना है कि ये असामान्य और समय से पहले आई हीट वेव जलवायु परिवर्तन का एक और बड़ा संकेत है जो यूरोप में चरम मौसम की घटनाओं को और अधिक गंभीर बना रहा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। के ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
4: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3.

0: गीत नृत्य और परंपरा।
1: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। जाना पहचाना कार्यक्रम है आपका गीत नृत्य और परंपरा। आज हमारे साथ दो अतिथि जुड़े हैं और वे हैं श्रीमती राजकुमारी लचन जी और साथ ही हैं श्रीमती कियोली झंडू जी। कियोली झंडू जी आई हैं डागोचिया से और आप आई हैं लेस्पेरांस कॉन्चिमलिटिया से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आज

0: के इस कार्यक्रम में, और हमारी जो टीम है जो आप तक कार्यक्रम को पहुंचा रही है उसमें शीतल जी प्रोडक्शन सीट पर बैठी हुई हैं, अंजू जी और उरुसा जी आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाने में हमारी सहायता कर रही हैं, पूरी टीम की ओर से फेसबुक लाइव जो जुड़े हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं, और साथ ही जो हमें रेडियो पर सुन रहे हैं उन श्रोताओं का भी हृदय की गहराई से स्वागत है। श्रीमती झंडू जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कब से आप गीत गवाई में जुड़ी हुई हैं?
1: प्रणाम सभी को। हम छोटा से हम खुशी रली गीत गवाई में जाएंगे तो हम अपन नानी दादी संगे हम भी जाते ले जाओ लोग जाते हम जा गीत गावे एगो लाज दूजा से
0: गावत हवा।
1: हाँ, तो हम गाते गाते गाते गाते तो हम वो लोग के संगे जाते जाते हम बहुत सीख लिया है।
0: कोनो लीव लेके जात रहला के कंठस्थ करत
1: रहला? कंठस्थ लीव लेके नहीं।
0: और कैसे तोहर रुचि बढ़ल कि हमरा गीत चाहिए सीखे के कैसे गाए के? दादी नानी तक गावत रहलन, माँ मैवो गावत हो यन।
1: हाँ,
0: पर तू कब से मतलब रुचि लेला कि हमरा अब गीत सीख ले के चाहिए कंठस्थ कर ले के चाहिए ताकि हम सकब जाके गीत गवाई में गीत गाए?
1: हम लाज वेंदेशों से जब हमार शादी हो गल तब हम ससुराल गईली तो नहीं गावत है, हमार ससुराल गईली तो हमार अलन जा बोले गीत गावे के तो हमार ससुर रलन सास नहीं हमार ससुर रलन तो वो बोलन बड़किया तू गीत गावे जाने ला काहे नहीं जात हो गीत गावे तो हम बोले पिताजी हम गीत नहीं गाइला नहीं गई नहीं कब तो बोलना नहीं जा गीत गावे तब वही जब अब गईली हुआ तो हमार ससुर रलन दूसर ला सामने सुना तलन और हम यहाँ बैस के अब गीत गावत हैं तो अब सब कोई बोला था जा दे गाव ऐसी बड़की गीत गाव तो हम बोलिए हम तो कबो नहीं गए हैं लेकिन परल गावे के तब भाई ये गीत गई लिया संजा
0: संजा

वहाँ रहे के तारा लिया पना डाडा मड़वा रहे के तारा लिया पना डाडा मड़वा कुस के चटैया बिछावन भैले हमर कुस के

0: पहले हमारो ऐसे ऐसे करके हम अब गैली समझा।
1: अगर आपने ध्यान से सुना हो श्रोताओं गीत को, तो उसमें कुशा का आसन बोला गया है। कुशा एक घास होती है जो कि पूजा के लिए भी बहुत पवित्र माना जाता है उसका आसन, और जहाँ भी गीत गाना हो या कोई भी तप तपस्या करनी हो तो वहाँ पर कुशा का आसन लिया जाता है। कुश एक घास है, उसका आसन लिया जाता है। और तो लोक गीतों के माध्यम से, गीत गवाई के माध्यम से तू बतावत हवा कि कैसा आसन चाहिए, कैसे बैठे के चाहिए, कैसे दादा दादी के संगे बैठ के सब ले आगे देवी के पूजा या भगवान के आवाहन करे के चाहिए। अब हम पूछा था तोहर से, तू कैसे जुड़ रहा गीत गवाई संगे?
2: गीत गवाई संगे हम ऐसे ही जुटल हैं दादी लोग संगे जाके, दादी छोटा रही हम दादी जातलन गीत गवाई तो अकेले जातलन तो बोलन घरे से एक जना साथ
1: लड़का संगे चली
2: जाए तो हम दादी के संगे संगे रह दली देव के सब तो दादी के संगे जा थली तो समय उतना दादी के संगे जात जात उतना नहीं धरली गीत पवन समय सब याद बा
1: कंठस्थ
2: हाँ
1: कहूँ लिखत नहीं रहला
2: नहीं कहूँ नहीं हम तो छुट्टी से मामा भी लगे से तनी ज्ञानी मजे तनी सत्संग में जाता होता लीसा
1: जी
2: लेकाल भाई सब करत नहीं सा तो दादी के संगे भी गई ली तब थोड़ा बहुत कुछ हो मजे ध्यान में आवे सब समा नहीं रख थी सा कंठस्थ नहीं कर थी सा तब बाद में जब भाई शादी हो गई ली हियाँ अपन ससुराल तो हियाँ पर रहनी तो हमारे फुफा सास रहन सास ससुर रहन जा तो फुफा सास सास उतना नहीं जा थलन कहूँ गीत गवायु में से तो हमार फुफा सास बोलन शादी के तब आगे सब कोई बोले एक समय दू समय आगे से चावल दाल चुने के पकाए के
1: आगे कुछ दाल चावल चुनल जाता है
2: सब तब तो हमारा बोलियन चले गए तो हम अपन से नहीं सक

0: जाए हमारे बुढ़ा से बोलन बोलन जे जाए दिए कमला के संगे लेके जाप हमार छोटा नाम कमला तब बोलन विदा करिए हम हमार संगे जाए तो गाँव के तब ना कोई के नहीं जानत हैं तब फिर शादी होके आल हई सब 16 बरिस में शादी होके आल हई तब जब जाए लग रही फूफू संगे तो हुआ अब तनि जान फूफू के तो नैहर के हवन उ सब कुछ जान ला गाँव के तो सब कुछ चिन्ह पड़ता फूफू लगे ना हमरो बहुरिया हवन बहू हमार ससुर के बोलत हलन जा मिनीस बंदा मिनीस के अति पतु
1: हाँ
0: तो फूफू के संगे जाते जाते पकाए के भी पकाए के मामा लगे से भी जानत नहीं तनि पकाई तो हजुआनी तो फूफू के संगे पकाई में सब में है तनि फूफू के संगे संगे सब सीख ले ली तभी तो नहीं हवन फूफू सम हर नाम लियो थे
1: बहुत अच्छा डागोचिया में तू अब भी सबके गीत सिखावेला कब से तू शुरू करला और आगे तू कहाँ जात रहला सीखे गीतवा
2: गीतवा हम सीखे नहीं जाते कहूँ हाँ अपन गुनगुनावत रही तो तब्बे से कोई सुनिया जाता बोला तला जा जे तू जाने ले गीत गावे ना तो गुनगुनावे ले
1: हाँ
2: हमारे पति भी बोलन बनजे तू गुनगुनावे ले गीत गावे काहे नहीं जा हम वही जाने ला हम नहीं जाए ला गीत गावे लेकिन हमार कंठ में आवेला जोन जोन तो हम ऐति करी ला गाय ला तो हमने लगे वो कॉम्पिटिशन रहल ऐति में जिसके काउंसिल तो वो कॉम्पिटिशन में पा ले लिया जब पा ले ली तो हम सेगो आई ली जब सेगो आई ली तो हम बड़ी खुशी होई ली तब हमारे एगो गोतनी रलन हमारे छोटा रलन से माँ वो जातलन ऐति पेचिखाफे
1: पेचिराफे में लेकोल रहा
2: लेकोल रहा तम लेकोल पेचिराफे के लेकोल शुरू होल बा 2013 से वहाँ के लेकोल शुरू होल बा वहाँ के हम के हेड हवन रीता पुनित
1: जी
2: हाँ तब हमार गोतनी लेके गए लन हुआ तब हुआ पर ये सीखे लगली संगीत सीखते सीखते में तब हम बोली हमार बहन जी के बोली हम बोली बहन जी जे हमरो लगे बाटे जे जेलेब लोग बा जे वो लेकोल खुल जात हमार लगे तो ऐसे करते करते में हमने के 55 गो लेकोल बा गीत गवाई के
1: 55 लेकोल पूरा मोगिस में
2: बा हाँ तो सबसे पहले हमने के बहन जी रीता पुनित जी वही सबरो हेड हवन तो अब जब ऐसी बोली आके लेकोल खोले के तो हमने के लेकोल खुल गल दागो जी
1: है इकोन बरिस में खुला
2: मिल 2017 ने कॉम्पिटिशन में रली
1: जी
2: तो 2018 में खोला लेकर
1: तो कॉम्पिटिशन में तू जीत गई ला
2: हाँ जीत ली
1: तब से तू सिखाई लगला
2: हाँ सिखावे लगली एगो हमने के हरदी के गीत मिला रह गावे के और दुगो झूमर तो हम हरदी के गीत गा दिली अपन झूमर गा दिली तो हमने सेलेक्ट हो गई ली जा
1: अच्छा हियाँ पर कार्यक्रम कर ल सेलेक्टे होइ ला जीत ला हियाँ लेकोल में सिखावे ला मॉरिशस से बाहर मोगी से बाहर कबो गल हवा गीत गवाई खातिन
2: हाँ गल है
1: कहाँ
2: ऐ पटना गल है ऐ कुशीनगर भारत
1: हाँ दिल्ली गई ला
2: दिल्ली गल है वहाँ पटना गल है कुशीनगर गल है गोरखपुर गल है आर तो उस समय
1: ढेर जगुन गई ला
2: ढेर जगुन गल है
1: वहाँ गीत
2: हाँ कार्यक्रम कर ले है जा
1: कार्यक्रम कर ला हाँ तू हूँ संगे गए रला जा
0: हम दीदी संगे नहीं गल है हम ऐसे गल है
1: बेटा संगे गई ला
0: हम जाते ही तेरे ही ला अती दिल्ली
1: हाँ
0: भारत थोड़ा
1: कार्यक्रम में गई ला हूँ
0: कार्यक्रम हुआ दीदी लोग संगे नहीं गल है
1: हाँ
0: ऐसे जब पूजा पाठ में है समय है कार्यक्रम हुआ हमने के नहीं होगा हम ऐसे ग्रुप में जाते हैं
1: अच्छा अब हम पूछा था कि जो तोहर लगे कितना जेलेव बा अभी लेकुल में
2: हमार लगे भी एगो वेंसेज जेलेव बा
1: वेंसेज जेलेव के तो तोहर कोनो लीव बा जेकर से सिखावेला कि सबके हाथ से लिखल गीत देवेला कैसे के कंठस्थ करावेला कैसे
2: हम कंठस्थ करायला
1: कंठस्थ करावेला
2: कंठस्थ
1: वो अपन से लिख लियन
2: लिखेलन हां
1: अपन डायरी में लिख लियन तब कंठस्थ करियन
2: हां वो लोग अपन से लिख लेवे रंजा तब जब एक दो हला सीख लिया जा तब हम लोग पर छोड़ देला हम बोला अब तो लोग गावा जा दे में हम सुन अब कैसे गावत हो जा
1: कैसे गावत हो
2: हाँ
1: तब जब सीखा था वन छिपा जब तू सिखावत हुआ तब

0: ढोलक आदि के प्रयोग करेला।
1: हाँ,
0: कौन कौन चीज?
1: ढोलक बा, चिमटा बा, है लोटा बा और लकड़ी टाल। हाँ, मंजीरा बा।
0: हाँ
1: हाँ, तो संगे जेकर लगे नहीं रही तो ताली बजाई ला जा।
0: हाँ, जे जे मतलब वादन नहीं रही। हाँ, तो अपन ताली से।
1: हाँ, ताली से
0: जोड़ के
1: हाँ।
0: तो एक महीना में कई हला तो हर लेकुल खुलेला?
1: हमारे लेकुल सावे जा हर मंगर के करेला।
0: हर मंगर के करेला। हाँ, जा तू हूँ जाला कहूँ सीखे?
2: हम सीखे नहीं जाला बहन जी।
0: सिखावे जाला
2: हमने अपने में है।
0: कुमार जाएगो घूम बा बैठ के
2: हमी पूजा पाठ में
0: रियाज करे के।
2: हाँ, रियाज करे के करीला जा और गीत गवाई में हमन जा चाची दादी लोग लोगे के संगे में है जाएगो सात आठ जना है जा अपन सगरे आई जाए की।
0: हाँ,
2: आर से गांव में सब कोई कुछ होला सब साथ दे बेलन जा सब कोई साथ में तभी गीत गवाई के हवे लेकुल के सब लालिस में है जा।
0: हाँ,
2: जा एगो हमरो लगे हम जाएगो बीस
0: पच्चीस बेटा के शादी बा बेटी के शादी बा तो हुआ से लेकुलवा से तोहर नाम मिल जाए तब तू जा लग गीत गाए।
2: हाँ, जाइला जा तब जस्ती दीदी संगे जाइला अति हो जा चिलाफे जाइला जा
0: चिराफे जाला
2: तो गीत बात नहीं जान ही ला सकवा जा उतना माजे नहीं बोला कि कुछ नहीं जान से हम थोड़ा जान ही ला जा से हो जाली खुलवा जाला सत आर तनी नु बनु बतानी सीखी ला सब
0: सीख ले बेला
2: आर है सब देवता पितर के जब आई परंपरा के गीत जानी ला सब फूफू दादी लोग संगे सीख ले आई हम।
0: हां,
2: दादी लोग रहलन जा तब
0: जो लोग गीत बाहिया।
2: हां, जब जब हमरा लेके गेल फूफू तो वहाँ अब चाची दादी लोग रहलन जा फूफू रहलन संगे सगरे काम भी कर से जा नौकरी कर से सा काम में दादी लोग गाय गीत हमू गाबलो के संगे संगे तब जब खाई बहुत सब सत तनी सत पूजे कर सत तो ऐसे ऐसे करके सीखनी सत तब मान लो थोड़ा दिन हो तब फूफू बोले अब चलिए सांझ के गीत गाए तो वहाँ पर फैमिली लोग परिवार लोग आवे ना
0: करे
2: अब फैमिली लगे जहाँ गल शादी में तो वहाँ कोई के माँ की नानी कोई आल बा तब बोलिए जब आगे नहीं जाते नहीं जा दूसर गाँव।
0: हाँ,
2: आगे तो खाली अपने गाँव
0: में। हाँ,
2: तब हुएँ से अब हम दादी लोग बोली तब घरे नहीं जना बस जाती सा गीत गाए चाची संगे हुआ चाची लोग से पूछ नहीं जाए हमारा बुरा कहाँ गाते हो सा गीत गाए तो भी गाँवे में तो ऐसे ऐते जाते में तब अब दूसर बगल जाए लग
0: दूसर गाँव में जाए लग।
2: हाँ, तब फूफुए लोग संगे सीख ली जस्ती गीत गाए की तब मान लो हमी के गीत गवाई बात नहीं जानी तब कोविड के आगे कौछमीते में एगो एगो बैठका रहा एगो बैठका बा लाग के आगे तो वहाँ पर एगो हमारे बहन एगो हमारे बहन लगत है कुमारी वो बोलन दीदी तू इतना गीत गावे जा लो सगरे सगरे जा लो तुम्हारा सगरे सगरे देखी ला तो अहिया है जहाँ पर हम लेकुल है एगो बैठका बा वहाँ तनि बतलैया हम के गीत सीखे के तो कोविड के आगे तनि थोड़ा दिन गए नी एगो एक बरिश ले वहाँ करी सत एगो
0: कोविड चला
2: एगो। हाँ, एगो पंडिता रहन बहन जी उ तो कंठ कितना हमरा सम्मान कर लम बहुत इतना गीत जाने ल तू तो सब कंठ अपन अथी से है से गावे ल नहीं लिखे ल कुछ नहीं तू कहाँ से सीखल तू हमने के सीख हम लिव में के देख के सीखती से तो नहीं सकत से सीखे तो हमू ऐसा ही बोल देवत हैं गीतवा गा देवत है तो वो लोग अपन लिख लेवत हों जा पंडिता लिख देवत हन ताबलू में तो थोड़ा लिख तब तक भी चला छोड़ दे सब अब भी ले दीदी बा बोले ना देख ला बीरती सत अभी कितना आर सीख लेती सा
0: सीख ले
2: तो नहीं सीख ला जाओ उतना वो लोग तो के जैसे
0: हैं आज के तिथि में बहुत लीव बा जैसे हमार लगे को लीव मिलल ई दीम लाला मोहित जी के लिखल गीतवन बा जोन में झूमर बा ललना बा मजाकिया गीत बा बिरहा बा खाए के गीत बा हनुमान राम कृष्णा के गीत बा और निर्गुण जोन के मरनी के गीत बोलल जाला जेकरा तू हमरा बतलैला सबद बोलल जाला हियाँ गाल जाला तो जब तू गीत गवाई में जाला तो कौन गीत से शुरू करेला
1: जब गीत गवाई हम शुरू करेला पंडे कुल में।
0: हाँ,
1: तो पहला हम एगो प्रार्थना करीला
0: सब ले आगे तो हाँ ये संस्कार है हमने के चाहिए एगो प्रार्थना से शुरू करेंगे।
1: वक्रतुण्ड महाकार्य सु

0: मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। ऐसे शुरू करी राजा
1: पति के सब ले आगे पूजे पूजेला।
0: तब अब एती से संध्या से संध्या शुरू करा। तब संध्या फिर नहीं हो जा तब देवी के गीत गावा जा। देखो टुकड़ा सुना ये देवी
1: हाँ हाँ अवश्य।

0: सबले आगे धरती माँ के पूजा कर ला बस के नाचे के बाद गाय के बाद धरती माता के याद करे के चाहिए सबले पहले
1: तब ओकर बाद में तब देवता के गीत गाइला जा
0: तब
1: देवता के
0: हाँ बोला

0: देख लो लोक गीतवे में कैसे हमने के संस्कार बतला देलक कि दादा के घरे तुलसी बा और ओकर में दादा दादी पूजा करे लंजा तो गीतवा के माध्यम से हमने के संस्कृति हमने के परंपरा सब उही में छुप
1: उही में
0: गीत के माध्यम से सब बतला देला
1: सब बता देलन तो जब तलक ले हमने के दादा दादी के नहीं पुकारबा तो हमने के नहीं एती
0: हो बरजना के नहीं
1: बरजना आगे हो जा ना
0: हां
1: तो उही कारण त हमने है गाइला जा ए देवता के गीत तो ओ फिने जाला तब महादेव के गीत गवाला तो एगो टुकड़ा सुना देला
0: बोला

0: जी महादेव के गीत है। तो जब 12 बरस के बाद महादेव अलन तो उनका विश्वास नहीं बा पत्नी पर, तब हे क्रिया खियावत हन। तक में ढेर बातें हई तुलसी से क्रिया खियलन, अग्नि से क्रिया खियलन, हई सर्प से क्रिया खियलन, तब पछिला नवर गंगा से क्रिया खियलन। तो जब गंगा से क्रिया खेलन तो जब गौरा गएलन गंगा बीचे, तो गंगा बीचे उनकर बहिन भेटा गल गंगा, तब गंगा आर अथी गौरा दोनों भेंट अकवार हो गएलन जाओ कर में। तो बड़ी सुंदर गीत बा से मत लंबा बा,
1: तो एक बुद्ध गाओ खाली
0: है ये मेरा। हाँ बरहो बा

0: तो गौरा ही पार्वती है और हमारे लोक गीतों में ये सारे कुछ निहित है। अब हमने के बोला जा के अब भगवान के पूजा हो गल देवी के पूजा कर लेला तब ढोलक के पूजा होला कैसे गीत गवाई में कोचनीय करेला जा
1: महादेव के यदि हो जाला तब शादी के होला उसकी
0: शादी में जाता हुआ
1: शादी में गल है जाना
0: तो जब कोई के लड़का होला तो ओका सिस्टम दूसर है के हुआ तो धरती के पूजा कुछ नहीं करबा सीधा ललना गई बा
1: ललना
2: के रसन गावल जला है एगो धरती के गाई ला जाता रसन
0: तो ललना
1: में हां में अब शादी के जब बोली ला जा हां तो सब लोग गीत में आवेला बहन जी
0: हां
1: तब शादी के बोली ला जा ये थी अब छोकरी के शादी के
0: छोकरी के शादी के दूसरा छोकरा के दूसरा
1: हां छोकरी के शादी के बा

0: मुलाम।
1: बहुत सुंदर गीत के माध्यम से ही बोल दिलन के डोली सजैयन दादा दादी, अर्थात बड़े लोगों को सम्मान देना है।
0: सम्मान दे के चाहिए, हाँ बड़ा
1: सम्मान दे के चाहिए, बिल्कुल
0: दादा दादी के,
1: दादा दादी। अब जब बोला सम्मान दे के चाहिए, जब गीत गवाई जाला तो तोहर लूगा कैसन चाहिए रहे के, साड़ी पहने ल जा, लहंगा चोली पहने ल जा, तो सब सम्मान के ध्यान में रखते हुए तू कैसन हमनी के बोलबा के कैसे चाहिए जाएगी।
0: पहले हमनी के बड़ा आदमी हमार दादी रहन, हाँ, हमार नानी रहन,
1: हाँ,
0: तो हम जानी ला वो लोग के बड़का बड़का लहंगा रहल,
1: पेनवार
0: पहन जा,
1: हाँ,
0: वो लोग के हम देखते पेनवार है जा नीचे ले,
1: हाँ, कमर के नीचे,
0: कमर
1: ले
0: नहीं लौकी तन को बिल्कुल नहीं,
1: हाँ,
0: उसे वो लोग
1: अब तो लामोद नहीं बा पेनवार के, अब का बोलबा
0: नहीं तो अब लामोद नहीं बा पेनवार के, लेकिन अब हमने साड़ी पहनी ला जा,
1: हाँ,
0: लेकिन हम के दैत तोपल रहला सगरो नहीं कि पेट लौके के नहीं है,
1: हाँ,
0: तो हमार जेलेब जितना हवन जा हम सबके सीखे ले साड़ी पहन के, कोई नहीं लंगा पहन के आवेल हमार लिकुल में, सब कोई साड़ी,
1: बहुत अच्छा,
0: हाँ, आर हम जोन है तो हम जब से हमार शादी होल बा तब से हम लंका छोड़ना है तब साड़ी पहन दी रहा, अभी तक ले हमार शादी वो संक्रांत हो गए, लेकिन हम सड़िए पर रही ला,
1: सड़िए पर रही,
0: हाँ, तो हमनी के असली पोशाक है साड़ी, चाहे साड़ी पहने के दें सब तोपे के दें नहीं बताए के,
1: हाँ,
0: आर कपार में होड़ नहीं डाले के, लेकिन अभी शायद नहीं डाले हैं, लेकिन हम कपार में

0: ओढ़नी डाला के वो लोग नृत्य कराईला हाँ मल्लिकुल में
1: ओढ़नी ओढ़ के नृत्य करेला जा
0: ओढ़नी ओढ़ के
1: और खूब जेवर पहना सब
0: हाँ अच्छे से पहना
1: हाँ
0: जितना जेवर पा जितना सब डाला वही तो शोभा है महिला लोग के
1: महिला लोग के
0: हाँ
1: अच्छा अब हम जैसे हम देखनी लीवा में अब हमने के बहुत सारे साहित्यकार लीव में गीत दिले हवन प्रहलाद रामशरण हवन दीमलाला मोहित हवन अंशराज जी हवन उनका लीवन में गीत बा उनका पुस्तक में हाँ। गीत बा तो तोहर जोन गीत गवाई के लिखोल है हुआ कोनो पुस्तक नहीं बा खाली कंठस्थ करावे ला जा और टैबलो पर जैसे ई बोलन के
2: हुआ नहीं बा दी लगे हो जा चिल्हाके के लिखोल में नहीं कर लिया जा टैबलो अपनी कंठस्थ से देवे ला जा
1: अपन से लिखा
2: हाँ।
1: जब मैं जान जाई बा
2: हाँ। नहीं दीदी लगे भी
0: तो हम लोग लगे नहीं हम टैबलो में नहीं लिखाइला हम ऐसे हम
1: कंठस्थ
0: हम हाँ हम गीतवा गावब तो हम बोलब अब तो लोग लिखा जा सब कोई तब लिखे लन जा
1: बहुत अच्छा
2: अब हम करनी थोड़ा संत अब दीदी लोग अथी कर ले लन जा माजे उतना नहीं जानत लन जा ना फेक फेक रहल था
1: हां
2: तब पंडित दीदी वे नहीं जानत हलन ऐसे अपन कंठस्थ सीख माजे तब लिख ले त जस्ती सीखब जा
1: सीखब जा
2: तो हवे से लिखत लन जा अब हां अब तम नहीं अपन ऐसे अब तो सब कोई है कॉपी बना ले बतन जा एक
1: पुस्तक में से निकाल के अपन कॉपी अपन हाथ में लेके जालन जा
2: तब अपन हम ही तक ऐसे कॉपी नहीं लेके जाइला जा कहूं जाइला जा
1: तो हर तक कंठस्थ बा
2: हमनी कंठस्थ से कहिला जा
1: तो देखिया कंठस्थ साहित्य आई बहुत अच्छा बा चला एगो गीत सुनी जा स्थानीय गायक के तब हमनी के कार्यक्रम और आगे बढ़ाब जा बातचीत जारी रही अंजू जी से निवेदन है कि आप एक गीत से कार्यक्रम को सुझाए

0: संगीत, नृत्य और परंपरा।
1: सभी श्रोताओं का हम फिर से स्वागत करते हैं। जो अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता रही हूं कि आज हमारे साथ कियोली झंडू जी और राजकुमारी लक्षण जी आई हुई हैं कार्यक्रम में बताने के लिए कि गीत गवाई, लोक गीतों के माध्यम से हम कितना अच्छे से संस्कारों से जुड़े हुए हैं और कैसे उन्हीं लोक गीतों के माध्यम से हम बीजारोपण करते हैं संस्कारों का अपने बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में। तो परंपराओं को चलाने के लिए परंपरागत गीतों का भी एक बहुत सुंदर माध्यम है। नृत्य से, गीतों से हम परंपरा से जुड़े रहते हैं। कियोली जी, हमें बताइए, जब आप जाती हैं किसी भी कार्यक्रम में, जब सिखाती हैं, तो सिखाते के समय आप किन बातों का ध्यान रखती हैं कि कौन गीतवा अच्छा बा, इ लोग के पहले सिखाई के हई नहीं अच्छा बा, तो हाउ कैसे कंठस्थ करावेला, कैसे करावेला?
2: हाँ बहन जी, कंठस्थ करायला।
1: हाँ बस की इतना बोलला आगे हूँ कि लिखेला नहीं, कंठस्थ करावेला।
2: कंठस्थ करायला तब वो लोग अपन निके, तब अपन गावे लंजा,
1: पाचिके करे लंजा,
2: पाचिके करे लंजा, एक से में दू से में। तब फिर से हम वो लोग से अब सवाल पूछब जे कहाँ निकाल हुआ जा।
1: हाँ
2: तब वो लोग अब सुनई हम जाता, जेकर अच्छा रही तब बोली ला अच्छा बा, जेकर नहीं अच्छा रही तब वो लोग फिर से सिखाव,
1: फिर से कंठस्थ कर,
2: कंठस्थ कर कराव।
1: हाँ
2: ऐसे ऐसे करके हम सिखाए ला लोकगीत, लोक परंपरा गीत हमके बहुत समय से बाटे। लोकगीत हम
1: दादा नानी के संगे आल बा।
2: हाँ हमने के पूर्वज सब लेके आल बन जा।
1: हाँ
2: ता तब से लोकगीत परंपरा गीत चलता, तो हमने एक एक कबो मिटाई नहीं देव जा, तो ऊ खातिर हमने के चाहे लेके चले के,
1: लेके कैसे चलबा? कंठस्थ करैले जइबा आज के पीढ़ी, काल के पीढ़ी ले चौंपाई तब ना।
2: हाँ तब भी बोली ला जा, अभी हमने है जा तो हमने सिखा दो,
1: अभी माध्यम बना लवा तू सिखाई,
2: सिखाए के तो अभी जो वो लोग आवत हो जा, सीखत हो जा, तो वो लोग सीख लिया जा, तो हमने के नया पीढ़ी लोग के सिखाया जा, तब ना वो चलते रही।
1: बिल्कुल,
2: बस की जब पीनी हो जाए तो हमने के बिल्कुल नहीं अच्छा बा ना,
1: एगो धरोहर

0: 이거 더워함니께 다 오카티함니 시카이테 레이라담 데함니께 나야 비리존 아이한자 오로고 아이스네 파레 레케 살리한자 시키한자
1: John like a lo que sikhave la jabi bolla 20 25 go like a ba hua sikhe ke u log kitna khushi se sikhelan ke zabardasti ha humni ke sikhe ke padha ta ta sikh le la ja
0: bilkul nahi
1: khushi se
0: badi khushi se
1: badi khushi se
0: ha badi khushi se sikhelan ja ta mahila hon ja
1: ha ha ta git gawai ta mahila log ke ha gamath purush log ke gamath ta
0: hamar git gawai me
1: ha
0: ए हमने खाली स्त्री जाती है जा न एगो आर हमार गीत गवाई में हुए थी देर कोई जाम्बे उड़ाए ला जा हमार में नहीं
1: जाम्बे नहीं
0: न हमार में जाम्बे नहीं
1: बस के वो दूसरा किलचिया के हाँ, बात है हाँ,
0: वो दूसरा किलचिया है वो तो इतनी लोग है ना
1: हाँ
0: तो हमने के बा हमने के ताल है ढोलक और ढोलक मंजीरा लोटा चिमटा इसे हमने अपन ले चली ला जा हाँ
1: साथ में सब रखल बा तोहर लिकोल में
0: हाँ बाटे
1: झाल ढोलक
0: हाँ बाटे
1: बाटे
0: हाँ
1: सब सीखे लग जाओ
0: हाँ
1: तो अभी हमने के बोला के स्त्री गर्भवती थोड़ा देर पहले बतिया थे जा तो गर्भवती होला तो गीत गावल जाला
0: हाँ
1: तो कैसे कमाजा जैसे गर्भ में लड़का आवेला तो ओकर गीत बाटे तो हर महीना के एगो अलग गीत है
0: हाँ हर महीना के
1: हर महीना
0: हाँ,
1: के
0: दुआ महीना तीनवा महीना चौवा महीना पर ऐसे बाय का गो गीत
1: एक एक गीत हाँ तब जब लड़का हो गल तब ललना गावल जाला
0: हाँ, तब ललना
1: तब खुशी के बात है
0: तब
1: खुशी थाली बजेला
0: थाली बजे थाली बजेला
1: हाँ
0: तब ललना गवाला
1: कैसे लल्ला
0: नहीं आवता
1: कोई बात नहीं
2: दादा के
0: नहीं आवत अभी
1: चलो कोई बात नहीं तब ओकर बाद मुंडन संस्कार
0: बाजे लगल थरिया बधाई हो बधैया ललना झूले झूले झूले ला पलना

0: नैया ललना झूले झूले झूले लापलना ललना झूले झूले झूले लापलना।
1: तो ऐसा ऐसा ललना गा के तू खुशी के माहौल बना देवेला। तो ओहो में तो ढेर संस्कार करल जाला जब लड़का होला तो थोड़ा जानकारी दा हमनी के श्रोता लोग के।
0: जब ची बेबे होला अब दाई आई, दाई के बोलावल जाला दाई आई हन। अब लड़का के मिशन, माँ के मिशन, सैखियन वो सब होवेला। तब छः दिन दे
1: तो आज तो औरत लोग मोडियन हो गल बा जो नहीं मिसावेला।
0: तो वही से तो आजकल इतना बीमारी आल बा न बहन जी।
1: हाँ
0: रकम रकम के बीमारी चलाल बा। तो अब वो जब
1: हो हमनी के संस्कार है कि तेल से मिसल जाला लड़का और मादामों के मिसल
0: मादामों के चिबेबे के चाहे मिसे के।
1: हाँ
0: तब जब सास जोन हवन तो उनकर घर एगो नाती जन्म ले ले बा।
1: बिल्कुल
0: बड़ी खुशी बड़ी खुशी। तब जहन अपन पड़ोसिया लोग के बोलियन।
1: हाँ
0: बोलियन जाने जा हमारे लगे नाती आल बाटे जे अह जला में दिह जा हमरा हम कसार बांधब। तो बोलियन जा जे हाँ तब अहन जा तब मेथी चाउर चना दाल उ सब डाल के अब जाँता में पिसियन जा।
1: आजकल तो ग्राइंडर बा।
0: हाँ अब ग्राइंडर बा लेकिन अब जाँता के पिसल उ अलग है
1: ओकर जोर दूसर
0: है। ओकर जोर दूसर है
1: बस के जो कोड़ा से चलेला ग्राइंडर तो वो जोर मार देवेला।
0: हाँ तो वो में थी भी पिसाला सतुआ भी।
1: हाँ
0: सतुआ भी पिसाला तो ओकरो गीत बा
1: सतुओ के गीत बा। हाँ। और कसारवो के गीत बा। हाँ। तो कसार से सतुआ से हमनी के भोजन के संस्कार भी जुड़ल बा।
0: हाँ।
1: कमाजा सब कोई के जाने के चाही कि कैसे गीत के माध्यम से लोकगीत के माध्यम से हमनी सब कोई संजोई लसा चाहे वो भोजन हो चाहे वो परंपरागत गीत हो चाहे लड़का के गीत हो चाहे शादी के गीत हो सब के एगो लोकगीत बा और सब के संस्कार से जोड़ल गल बा। बहुत अच्छा। इसके बाद
0: एगो ठीक है गीत सुना दिला जाँटा के।
1: हाँ
0: एगो टुकड़ा
1: बोला
0: पिसु डानी जीरावा से सतु मात हम परदेश जय बो राम

0: भाई गीत गा के तब हमने जटा चलाई ला जा पिसी ला जा
1: बोला था कि पति नहीं आलमन एक बरिस हो गल
0: तो गैलन नौकरी पर
1: नौकरी पर
0: खोजे गैलन नौकरी
1: हाँ
0: तो जब वहाँ गैलन तो नौकरी नहीं मिलल
1: बिल्कुल
0: नहीं मिलल तब यहाँ
1: औरत लोग बैठ के दुख वो अपन चाचा करत हवन और संगे संगे जटा पिसत हवन
0: तो वो बोले चाहत हवन जे इतना दिन हो गल हमर पति नहीं आल हवन जे अब काहे नहीं वो अहन कि नहीं अहन तो उनकर भाई आल रहल उनकर ले जाए बोले अकेले रह भैया गीतवा में बोले ला से मल्लम बाबा तो बोले नहीं आल कोई नहीं भैया जे चल हमने अपन बहन भाई रह जाए जगह तो वो महिला बोले न जे नहीं हम बिल्कुल ससुराल से नहीं जाब नैहर में हम अपन दिन गंवा देब अपन भाँसुर देवर के संगे गीतवा में बोले
1: तो बड़ा भाई हाँ, मिल गल हाँ, हाँ, उनके संगे अपन समय
0: अपन समय
1: एगो संस्कार बतलक हाँ, के हाँ, दुख के समय अपन मायके ने गैल हाँ, हाँ, हुए रह के अपन भाई नियर देवर भाई नियर भोसुर संगे रह
0: अपन दिन गवा देलन हुए पर
1: बहुत अच्छा अच्छा अब गीत गवाई विवाह संस्कार हो गल लड़का हो गल तब मजाकिया गीत वो बा जो उनमें मजा तनी छेड़छाड़ होला वो बा पर मृत्यु के समय गीत गावल जाला जेकरा निर्गुण बोलल जाला जेकरा हिया शब्द बोले लग जा वो कैसे है
0: वो शब्द हम तो नहीं जानी लावत ना
1: हाँ
0: लेकिन वो
2: सुनले है जा मैं गईले है जा भी बाकी हम से नहीं उतना कंठस नहीं कर
1: सके नहीं, नहीं कर ले हवा जा बस के गीत गवाई जोन हा
2: शब्द
1: शादी ले सब कोई जाने लगे शादी संस्कार विवाह संस्कार हल्दी में गीत गवाई के दिन संगीत के दिन गीत गवाई होला त उ दिन के गीतवन जाने लग जा
0: हां वो सब जाने लग जा
1: हां त आगे के दिन में हमनी के जोन नवा लड़का लोग बा जवान लड़का लोग बा परंपरा से कैसे जुड़ियन तू कैस का सोचेला गीतवन के माध्यम से जुड़ियन वो तो खाली एक सुख के दिन गीत गवाई हाँ। होला पर कुमाजा कोचिनिये कैसे करियन जा
0: तो कोचिनिये करियन जा कैसे बोले ला ना मॉरिशस के नौजवानों के अपन भाषा संस्कृति एवं परंपरा पर गर्व करे के चाहिए
1: हाँ
0: आधुनिक कुमाज
1: हाँ,
0: गर्व करे के चाहिए फाले हमनी उनकरा देवब जा उनकरा लेवब जा उनका से
1: स्वीकारे के चाहिए हमनी
0: हाँ,
1: के
0: हाँ,
1: हमनी नहीं स्वीकार अब सत्ता हमनी के दोष है
0: हमनी
1: हाँ,
0: के दोष हुई
1: हाँ,
0: तो उ खातिर हमनी बोलब जा आव जा हमनी तो लोग सिखावब जा
1: हाँ,
0: जे में है हमनी के थी जोन बा परंपरा रहले रही हमेशा के त नौजवानों के हमनी बुलावब जा अपन संगे कैसे बेटी बहू लोग हवन जा त नौजवान हम जाना तो लोग नहीं आवे खोज हम के परी आने के उन लोग के गीत गा के वो लोग के बुलाओ अब जा दे में सीखियन जा
1: वो लोग के सिखावे के बाद कोनो एग्जाम में वो करे ला जा
0: तो एग्जाम में नहीं वो कॉम्पिटिशन हो गया
1: कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन के माध्यम से जान जाए के जस्ती नियमन से सीखलक के नहीं सीखलक तो कॉम्पिटिशन कब होला
0: तो कॉम्पिटिशन ऐसे पहले हुआ था हर साल हुआ था
1: हर बरिस
0: हुआ था
1: अब
0: नहीं हुए ला अभी तक ले
1: अभी ले हुए ला
0: हाँ हमें तो ढेर कॉम्पिटिशन में गल है
1: तो वो कुमाजे दूसर लौंगवा के लिए कुल जोन खुलल बा गीत गवाई के उनकर संगे करे ला जा के कोनो सौ था जहाँ कॉम्पिटिशन के दिन ओगानी जे होला
0: नहीं कॉम्पिटिशन के आगे चाहे ओगानी जे कर देवे के एगो छः सात गो प है नहीं ढेरे मिले ला पफा बीस पच्चीस गो टोली मिल जाला कॉम्पिटिशन में भाग लेवे के वही में अब हम निजाब जा
1: सब एक के लौंदवा के
0: नहीं
1: दूसर दूसर लौंदवा
0: अलग अलग
1: अलग
0: अलग लौंदवा के
1: हाँ
0: तो वहाँ पे अब कॉम्पिटिशन हो तो ओकर पहला से आँस हो दूसरा से आँस हो तो थर्ड फाइनल हो तो ओकरे में जान जाब जा देख के जस्ती जाने ला
1: के जस्ती जाने
0: के जस्ती जाने ला तब ओकरे में अब उनका दिया फोमिये से गो थर्ड
1: के नीमन से
0: सीख ला नीमन से गईले बा के नीमन से गावेला तब ई होवेला
1: पेची राफ्रे के लेकुल में कितना जब तू जात रहला सीखे तो कितना से लेव रहल
0: हम जब जात अली त एगो
1: एगो 2013 के बाद बतिया नहीं सा
0: 2013 के
1: हां
0: तो हम 2013 में नहीं गल हैं
1: हां
0: लेकिन हम 2018 में गल हैं
1: हां
0: आ पे प्रे 80 से लेव रहल
1: 80 से लेव रहल तो दूसरा

0: دوست دارم لندن که همان
1: ساگرو بار موریس که
0: بار موریس که
1: بار موریس که زلیب آوات لندن جهان تا کاتو به زلیب راه تا آب کمان جه سب گاو گاو می جب لیکول خلو گل با تب سه تاکی اپن اپن گاو می کری لندن جه لیکول لیکن سپتاه می یک خلا جا لندن جه پیچ گاف که لیکن وہاں کے لیکول ہمیشہ چلتے رہے لا
2: وہاں کے لیکول وہ آتی ہے نا یونیورسٹی ہے
0: اب ہم پوچھا کہ کوچی نیل میں ایک بریس پیچھے گافے وہ میں سیکھ لو اور اپن لندوا میں جیسے تو ڈاگوچیا میں سکھاوے لا جیسے تو کانچیمیتیا لیسپیرانس میں سکھاوے لا تو کونو پاپیے کونو سرٹیفکا کمپیٹیشن ہو گل سرٹیفکا مل گل پر کیسے جنبا کہ ای ریگولر آل ایک بری سیکھ لک اتنا سیکھ لے لک اتنا ہو گل اور اب نہیں چاہیے آئی کے
1: بالکل نہیں हमने सीख ले लें सर लेकिन हम बिल्कुल नहीं मान ला कि हम इतना सीख लें अब हम लेकुल हुआ नहीं जाए
0: अच्छा
1: हम लगातार चल हर सुख के
0: बस के सीखते रहे के
1: हमरा नहीं बस बोल रहे सीखल चाहे सीखते रहे के बस कि जब अभी हमने नहीं सीख सर हमने संगे बा गिदुअन बा लेकिन वहाँ जाए ला सर तो हमने
0: بس کے تو لیو میں سے نہیں گاوے لا کنٹھست با تو کنٹھست ایک گیت ایک دو مہینہ نہیں گئی با تو بھلائے لگ با
1: بھلائے لگ با
0: تو او پرچک رہے کے چاہی
1: ہائی
0: یہ خاتین تو جالا
1: ہم جائے لا
0: پیچھے رافقے جالا ہر سمینے
1: ہر سکھ کے جائے لا
0: ہر سکھ کے تو آج نہیں جائے با آج سکھا
1: نہیں تو نہیں گئی لی پھجی دے نو بجے ہمالے کل شروع بے لا نو بجے سے بارہ بجے لے تو आ नहीं गईली तब पुता हमार बहन जी बोलन है बोलन जी नहीं कोई बात नहीं बात नहीं यही बता लेकिन हुआ तो राजा के पास जाऊँगा
0: तो आज जनता के बतिया सुनावा था वह कि कैसे लोकगीत हमनी के संस्कृति हमनी के परंपरा हमनी के समाज के जोड़ के रखेला जैसे तू बोल कसार बंद है के बा आसपास के आदमी के बोल ला और अत्यन अयन जरात के बैठ के बंद बा तो समाज में एगो प्यार एगो प्रेम बढ़ेला ऐसे अकेले में दादी बांधी तो उत अकेले रह जाए नकामा हाली फिनी हो ना प्यार वे रही तो कैसे एकर पर बोला कि समाज के जोड़े खातिन गीत गवाई कैसे ऐप होता बा
1: तो समाज के जोड़े के कैसे बोलनी ना कि हमने के लेकुल रही लेकुल में तो हमने बोली ला जाओ लोग के आवे की तब हमने सिखाओ जाओ लोग के आज समाज कैसे जोड़ाए अब कैसे को पूजा पाठ हुआ था कैसे काली माई में पूजा करे जाब जा तो सब थी स्त्री लोग के बोला जा एगो 20-25 जना के जे आज जाते हैं जा काली माई जे चलिए जा
0: तो खीर पूरी चढ़ाई
1: पूरी चढ़ी तो पहला हुआ अपन थी के 12 जो नवन एक जोड़ा निकाल के एगो कोना में रखी ला जा तब हमने अपन सात देवी के चढ़ाई ला जा अब वो लोग सब अहन जा तो वहाँ खीर पूरी चढ़ी
0: गीत गावल जाए गीत गावल जाए काली माई में देवी के गीत गई बा
2: माँ के गीत
1: देवी माँ के गीत
0: देवी माँ के गीत गा के तब वो पूजा समाप्त कर
1: पूजा समाप्त कर
0: तब आके सब कोई बांट मिल के खाई खाई बजा तो समाज के जोड़े के काम है ये सब
1: तब भी ना समाज जोड़ा है जब सब कोई के बोला जा तब एको पूजा हो तो अहन जा अब एको समाज हो गल ना तब जोड़ा जा
0: तो एक दूसरे के संगे मिल के आगे बढ़े के चाहिए
1: आगे बढ़े
0: तो गीत एगो माध्यम बन जाला नृत्य एगो माध्यम बन जाला है ना तो हमनी के गीतवन के माध्यम से लोकगीत लोक संस्कार जो भी हमने सीखे जो आप लोग अपने छात्रों को सिखा रहे हैं वो एक माध्यम है हमारी परंपराओं से जुड़े रहने का हमारी मिट्टी हमारी जड़ों से जुड़े रहने का ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोग लोकगीतों के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोकगीतों के माध्यम से हम लोक नृत्य के माध्यम से अपने आप को समृद्ध बना रहे हैं आप समाज को समृद्ध बना रहे हैं और अपनी परंपराओं से जोड़ के रख रहे हैं तो

0: ये बहुत अच्छा संदेश भी है हमारे देश में कि जैसे गीत गवाई हमनी के धरोहर है, पुरानिया लोग के धरोहर है, अब एकरा आगे ले जाए के आज के युवा पीढ़ी के जोड़े के परंपरागत गीत गवाई चलते रही
1: चलते रही
0: और ओकर रूप ना बिगाड़ा सबले बड़ा चीज है कि जैसन रहल उही प्रारूप से आगे बढ़ते रही।
1: वही हमने वही सीख लिया जा ना, कैसे हमने के बाढ़ आदमी जातलन जा, कैसे गावत जा, कैसे उनको लोग के पोशाक रह, उसने हमने चला था जा, तो हम अपन चेले लोग के उसने सिखाई ला।
0: बहुत अच्छा काम करे ला जा समाज के जोड़े के गीत नृत्य के माध्यम से। अभी हाल ही में परिवार दिवस गल, कुछ दिन पहले परिवार दिवस रहा, फैमिली डे, और लेतमातेन के 31 तारीख के मातृ दिवस बा, हम सभी माताओं को समर्पित करते हैं ये दिन शुभ रहे सबके लिए। परिवार को जोड़ने का काम गीत गवाई भी करती है, परिवार को जोड़ने का काम हमारे अच्छे संस्कार करते हैं, और परिवार को जोड़ कर ही समाज आगे बढ़ सकता है, और जब परिवार अच्छा रहेगा तो समाज अच्छा बढ़ पाएगा, समाज अच्छा रहेगा तो देश आगे बढ़ पाएगा। तो अपन देश के सोच के सबके मातृ दिवस की शुभकामनाएं, परिवार दिवस की शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप माता लोग गीत गवाई के माध्यम से बच्चों को संस्कार सहित बना रही हैं और उनको गीत गवाई के माध्यम से सुसंस्कृत कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों समय निकाल कर आई, आज के कार्यक्रम में जुड़ी, और हमारी टीम जो आप तक आप ये कार्यक्रम पहुंचा रही है, जिसमें हमारे साथ हैं शीतल जी, अंजू जी और उरुषा जी, इनके साथ हम आप सबको शुभकामनाएं देते हैं परिवार दिवस की और मातृ दिवस की। मदर्स डे आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे, शुभ संध्या आज के लिए, आप सभी को नमस्कार।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अर्शिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आपसे बिलों का स्वागत है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए बिजली चोरी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। इस वर्ष सामने आए मामलों

0: की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीबी ने अपने नियंत्रण और निगरानी तंत्र को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। बोर्ड अब बिजली नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक कड़े निरीक्षण और तकनीकी उपाय अपना रहा है। इसके साथ ही सीबी ने एक जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया है ताकि लोगों को बिजली चोरी के दुष्परिणामों के बारे में बताया जा सके और इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सके। लिसे ला बूदने और लिसे दी मस्कारेन के छात्रों द्वारा तैयार किया गया एक डॉक्यूमेंट्री प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को उजागर करता है। इस 20 मिनट की फिल्म में युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने का मजबूत संदेश दिया है। डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों के बारे में संवेदनशील बनाना और ये याद दिलाना है कि पर्यावरण की रक्षा आज और आने वाली पीढ़ियों दोनों के लिए अत्यंत ज़रूरी है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत इंडोलॉजी विभाग द्वारा आज शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आयुर्वेदिक पाक कला और आहार विज्ञान यानी कि डाइटेटिक्स के पाठ्यक्रमों के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही इंडोलॉजिकल होराइजन्स न्यूज़लेटर के दूसरे संस्करण का औपचारिक शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम में मौजूद विशेषज्ञों ने संतुलित और स्वस्थ जीवन के लिए पारंपरिक ज्ञान और आयुर्वेदिक सिद्धांतों की ओर लौटने के महत्व पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीका और ईरान के बीच संभावित युद्ध समाप्ति और समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन अभी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। अमरीकी राष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि समझौता कब या होगा भी या नहीं। इससे पहले अमरीकी अधिकारियों ने बताया था कि दोनों देशों के बीच एक प्रारूपिक समझौते पर सहमति बनी है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, लेकिन इसे अंतिम मंजूरी ट्रंप और ईरान के नेतृत्व द्वारा दी जानी बाकी है। रिपोर्टों के अनुसार ये समझौता 60 दिनों के युद्ध विराम को बढ़ा सकता है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर बातचीत शुरू कर सकता है। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी ने कहा कि अभी तक कोई भी समझौता अंतिम से तय या पुष्टि नहीं हुआ है। प्रस्तावित ढांचे के तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बिना बाधा आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है और ईरान को बारूदी सुरंगें हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया जा सकता है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहे सुन पाएंगे एक शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नेहरू रोड लालमाटी में 22 साल के 22 years old के श्री भविष कुदी जिन्हें भविष्य के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके पिता उत्तम कुमार खुदी के घर लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night.
4: आज की चर्चा।
5: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। आज की चर्चा हर शुक्रवार हम कानून से जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उस पर हम बात करते हैं और आज भी हमारे साथ आज के मेहमान हैं जो हमेशा हमारे साथ होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमने की जो वकील हवन कपिल देव रघुनंदन जी, चला उनका स्वागत करी लाजा। नमस्कार वकील जी।
6: नमस्ते जी।
5: आज की चर्चा कार्यक्रम में आज हमने एगो नया विषय लेकर आ लें जा। हाँ, और हमके बुझाता कि ई विषय पर हमने कब बात नहीं कर ले हैं जा, लेकिन फिर भी हमने के अधिकार ह जाने के और हमने बात करब जा, आज अधिकार के ही बात करब जा, यानी कि आज के हमने के जो शीर्षक बा वो है राइट ऑफ प्राइवेसी। तो हर जो निजी जीवन बा, हर जो प्राइवेट लाइफ बा, ओकर बारे में आज हमने बतियाब जा। तो वकील जी, जब हमने बोली ला जा राइट ऑफ प्राइवेसी, हर जो शब्द बा राइट ऑफ प्राइवेसी, हमारे

0: विस्तार से हमके एक बारे में बताओ।
1: अच्छा पहला जी विदिता जी हम इससे बोले सबने की भाई बहन लोग के प्रणाम और सब माँ के आज सब आवा था है वीकेंड में है है ओकर है दिन तमनी बस सब माँ के
0: मातृदिवस
1: फेत मामा हां आली पहला चीज जैसे तू है बोला है ये सब का है रिस्पेक्ट दे ला वी प्रिवे राइट ऑफ प्राइवेसी। अच्छा राइट ऑफ प्राइवेसी हर इंसान के सर हर आदमी के वो छोटा से बड़ा हो कौन सी पूरी इंसान ओकर एगो द्वा प्रिवे बा। अभी देखो समझ के कानून का बोलेला कॉन्स्टिट्यूशन का बोलेला और ओकर सब तो जाने ला हर आदमी के अपन घर में एगो बोली रही आली तने वो कुछ करी ओकर घर में कोई दूसरा आदमी नहीं से क्योंकि कुछ मना करे बस की काहे ये ओकर लावी है आदमी नहीं बोले ला कप मजे है बोल बोले बोले सामा मो लावी सा तो वो और ओ सामा लावी पुइवे मो फेस आ की मो कोंता ये सुनने वो ये गोसा फेर हां हां
0: इतना सुनने के हमें सामने के मिलेला हमें जानी लाजा सब कोई बोलेला कि हमर हमर हमर जीवन है हमर हमर जीवन में तो के बोले के कौन चाहेला।
1: हाँ आलो तो दूसर में का बोलेला राइट ऑफ प्राइवेसी मतलब एगो इंसान के ओकर लावी पुइवे में दूसरा आदमी के नहीं चाहे मजो कर नाक डाले के।
0: हाँ बोले के नाक डाले के
1: तो के ना तो
0: बोले ऐसा तो हमर जीवन में अपन कान का हमर हमर चीज में अपन नाक डाले था।
1: हाँ ऐसे बोले ला अरे एगो आदमी के मजा का कर ले बा मजे ओके मन बा एगो है एगो जिप पहने के एगो एगो, एगो स्त्री के अब कोनो एगो लेपो कर हल छोटा सन जिप पहने तलन सन अरे तभी एगो कुमाज हो जला कभी देख बा अभी तक आदमी कबो के देखे ला सी बुझो पहन ले बा गो जिप कूद जैसे हमने बोल सा बोले हो देख ओ मजा मुआ के कैसे कुमाज एगो लुगा शर्म नहीं बा कि चाहा तो के ऐसे कुमाज लुगा डाले के दूसरा के सिपोजो को ब्लूज बा ओके नहीं खुशी बा और तीसरा जो ने पोता की आज बात कर से ओकर लोनेर ओकर चल चलन ओके देखे में आदमी बोली कि ये तक कोरिक नहीं बा बस कि काहे कानून मना करेला मिसल में कानून कहूँ लिखल नहीं बा एगो आदमी जैसे ओके मन हो मजे है लुगा पहने के हाँ पब्लिक में ना ये बिता ले देखो सही सब चीज़ जो है तो ओके ओके ओकर खुशी ओकर लावी पीवे है अब ओकर पति संगी मजे बा बैठ के तो ओके मन बा टेलीविजन देखे के मन बा कुछ करे के खाए के पिए करे के वो जैसे खाए पिए से बुझो वो बकतवा ओकर पति है ओकर हाथ छू के खाए के या ओकर मुँह में ओके डालता कोई नहीं सकी माना करे बस कि ई ओकर लावी पुइवे जैसे खुशी उ अपन में मजे अपन पति से एगो बोली के ओके मन होई जिए की अरे पतियो नहीं रही तो अपने घरों में अपने से सकी जिए पूवी कानून नहीं कर में रही एगो बोली के घर में तो बा ओके कपड़ा डाले के चाहेला हाँ तो कानून नहीं बोलेला कहूँ कि घरवा में तू ओके कपड़ा चाहेला डाले के मैं सिलमा जे निकली सीमा में तो वो कानून मना करेला बोले ला नहीं सगवा कुमा जे एगो लावी पीवे आने आलो लाखो तोर लावी पीवे है जैसे तोरा मन बात चले के चलत हुआ कुमा जैसे हमने बोला सा नेकेड कुमा जो नहीं आवा था भोजपुरिया में कुमा जे है एगो आदमी एगो लुका नहीं पहन ले बा हाँ ई पब्लिक में कब हो जाला तो ई एगो है एगो ऑफेंस हो जाला तो आले हमने देखत है सर राइट ऑफ प्राइवेसी हर इंसान के एगो दुआ है एगो दुआ दे लावी पुइवे अब ओके मन हो अब ऐसे जिए के तो उ सकी औसे जिए और कोई एगो आदमी नहीं सकी एगो एगो कुमाजे एगो एगो उपजे अभितय कुमाजे एगो कुमाजे कौन चीज करिए उ जैसे जियता उ ओकर लावी पुइवे में। अभी देखब सब बड़का पॉलिटिशियन के देखब सब हमने बड़का बड़का हई के बड़का बड़का आदमी के जहाँ कौन चीज ओकर लावी जैसे ओकर लावी फैमिली ओकर लावी फैमिलियल में कोनो आदमी के दुआ नहीं बा कुछ बोले के जैसे जिया था ओकर परिवार संगे या मज ओकर भाल देखता या नहीं देखता ओकर परिवार के मेंटेन करता या नहीं मेंटेन करता खाई के देवता या नहीं देवता कोई दूसरा के दुआ नहीं बा आके ओकर लावी पीवे में आके कुमजे ओकर तरल जैसे बोली सर ओकर नाक डाले
0: यानी कि जैसे कि आज एक जना एगो प्रोफेसर बा तो स्कूल में स्ट्रिक्ट बा तनि कुन सख्त बा तो जरूरी नहीं बा अपन घर में सख्त रही।
1: हाँ
0: अब मान ले गो दुखतिया बा ओकर जो ओकर किसी बोला ओकर जो टाइटल बा एगो दुखतिया बा तो कैसे बोल जरा कि काम में सकेला स्ट्रिक्ट बा तो एकर मतलब इने बा अपन घर में नहीं सकी गीत गाई।
1: हाँ
0: यानी कि ऐसे ही जैसे बोल कि जो जो पॉलिटिक्स में जो रहे जा लोग के एगो

0: काम देवल गल बा टाइटल देवल गल बा तो कर जरूरी नहीं बा कि लोग अपन निजी जीवन में नहीं से कैसे को गीत गाए नहीं से कैसे को गीत पर नाचे वो लोग के अलावा प्रिवे अलग है घर के अंदर अपन फैमिली में जोन बा वो लोग के जीवन है
1: जी जी
0: बाहर में अलग
1: है अलग है
0: प्रोटोकॉल जैसे बोली ला जा हमने के कामों में धीर अवती रहला जैसे कब यहाँ पर हमने के काम में जैसे बोली ला जा के हमने से कब कसकस के हंसे बोले धमार करे नहीं सकब ना हमारे को चाहे ना रिस्पेक्ट करे के जब जैसे कि हम जाना था हमारे संगतिया लोग काम करा था हमने से कब जाके वहाँ तपास करे जबकि वो काम करा था दे हौसे नहीं सकब करे यानी कि हम समझने की सब कोई की जो लाभी प्रिवे है तो हर घर के अंदर जोन करबा सकबा करे बाहर जब निकल गया तो वो
1: दूसरा चीज है इतना झुली से शायद हम ही नहीं सकब एक्सप्लेन करे जैसे तू बोल रहा
0: नहीं नहीं नहीं
1: नहीं बड़ी झुली से
0: कोशिश कर रहे थे
1: नहीं जैसे एक्सप्लेन कर ला जैसे बोल ला जैसे बोले और कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं देखा था कुमार जी एक से ज्यादा सकल जाए और बोले अच्छा ये तो बोल दे फैमिली के विषय जैसे कुमार जी अपन परिवार से अरे कैसे जैसे खूब बोल एगो डॉक्टर एग्जाम्पल जैसे ले लह कि एगो वकील कोई भी हुई नहीं सकी कुमार कमुआ में कुमार जी जोन खुशी कुमार जी आदमी से बोले आदमी नहीं बोले ला असल मेकुशा ऐसे नहीं कर हम कि बस कि हम यहाँ काम करते हैं ओकरा परिवार बा मिसिल में घरवा में आई तो पत्निया के सके कुछ बोले ना कोई एग्जाम्प जैसे दिल ये सुपे हम बड़ी खुशी हुई नहीं अच्छा एगो एग्जाम्प हाल ये ओकर काम में अब यहाँ आल बा अब ओकर घर में ओकर डोमिसिल में डोमिसिल में आई तो अपन पत्नी से अपन लड़का से माँ बापो से ओकर लावी पूरी जो चीज़ बोली हर माँ बाप के ओके मन हो कुछ बोले के तो ओके लिप बहुआ बोले के कोई नहीं सकी ऑफिस करे बस ये ओकर माँ बाप हाली अब दूसरा इला से एगो हर आदमी के एगो लोनेय ओकर लोनेय रहे लो के समाज में एगो मान बा एगो और एक मान चीज
0: कुमार सब के इज्जत
1: सब के एगो
0: जोली बा
1: सब के इज्जत है और हमने के चला रिस्पेक्ट करे के तो ही देखे ला रिस्पेक्ट दे ला भी प्रिवे राइट टू प्राइवेसी जब एगो आदमी के एगो लोनेय बा तो उ लोनेवा के तोहरा चाहे लो वो रिस्पेक्ट करे के आदमिया के नहीं कि सकबो के गारी दे या कुछ बोले कि कुमार जी ठीक नहीं रही हर इंसान के एगो लोने बा एगो रेपिटेशन बा अब एगो आदमी के एगो रेपिटेशन बा सोसाइटी में जियेला बड़ी लिमन से एगो आदमी है तो उ कमाइले बा उ नमुआ औसन सोसाइटीवा में रहे के तो हो गल बा एगो राइट टू प्राइवेसी एगो लावी प्रिवे हो गल बा ओके में अब एगो दूसरा इंसान नहीं सके ओकर रेपिटेशन में आके कुमार जी एगो लाबू डाले एगो चीज कुमार जी है, है नहीं करे के कुमार जी कोरे बस के एगो रेपिटेशन कर दिले बा अभी देखब सा कानून का बोले ला रेपिटेशन में कैसे एगो आदमी के रेपिटेशन अटाके करब जब एगो चीज ठीक नहीं हुई तो एगो जिफामेशन हो जाला अब जिफामेशन हो जाला तो एगो आदमी के नहीं सकल पूवे करे तो एगो किस लाखों ढूके उ जिफामेशन में तो तोरा पूछवीव करी दुमाज के ही के कुमार जमी अभी हमने आपसे का बोले ला हमने के कुछ सिविल मोशिया हर आदमी के एगो प्रोटेक्शन है कानून बगल से कानून सब इंसान ना कोई बात दुनिया में नहीं बा कोई छोटा ना बड़ा ओके चाहे ला कानून का लिखल जला वो लिखे ला सब आदमी के नहीं बोले ला ई तू ऐसे है तू ई ललुआ ई तो के अप्लिक हुई कभी को कानून पास हुई अरे काले को कानून पास हुई बा तू एगो सुफेर हुआ अब बोले बा हिया बिया तो जो ना एगो आदमी कभी को कोंजरे करता एगो मशीन एगो एक्सीडेंट कर दिलक एगो कर दिलक तब ओकर कुमार जे एगो पॉइंट्स कुमार जे
0: ओके
1: कुमार कटा जाला तब आर गांजी होइले जाय कैंस पुसौ तब नहीं देखब समनी ओ त देखब त ओ कानून सब के है का तोहर हमर का या कोई है कोई भी सकी पहुंच के कोनो कर स्टैंडिंग होई में देखब ओ कानून एप्लीकेब होवेला अनमन सब आदमी के लालुआ डिस्क्रिमिने नहीं करेला कॉन्ट्रेयर लालुआ मना करेला डिस्क्रिमिनेशन के तो यहाँ देख लो हर आदमी के एगो धुआ बा एगो धुआ दे प्रोटेक्शन लालुआ के जहाँ एगो आदमी दूसरा एगो आदमी के ओकर लावी पीवे में ओकर कुमार जे हई में जिंदगी में ओकर कुमार जे
0: दखलंदाज करेला
1: हां जे को कुमार
0: छाले ला ओकर
1: हई का जो के करे आलू ते देखेला हमनी के लावी पीवे फॉर्म पची करेला हमनी के दुआ सिविल में अच्छा ई का हो ये हमेशा तो सुनब आदमी बतियाला द्वासी ये हमारे द्वा सिविल है ये हम ये तो है ला पुलिस के मजे है काम है एगो हमने बोले द्वा सिविल बा द्वा क्रिमिनल भी बा तो देखब हिया द्वा सिविल

हर इंसान के कुमा जे ओकर है लिमन चीज के ओकर कानून बनाई ले बा मेहुआ क्रिमिनल तो सब चीज बा जहाँ लेता हमेशा आदमी बोले ला पुलिस पूछी करेला आदमी के नहीं लेता पूछवीव करेला देश पूछवीव करेला नहीं है के रहा कब जेब काल देख बा एगो कुमा जे केस आवेला लाकुर में तब बोले ला स्टेट अगेंस्ट एटेल पुलिस अगेंस्ट सेंटियल तो वो पुलिस रिप्रेजेंट करेला डीपीपी के कुमाजिया है कर है काम का तो उस स्टेट वा वो रिप्रेजेंट करेला देश रिप्रेजेंट है काले वो चीज कर बा कोनो चीज ऑफेंस क्रिमिनल तो देश के कुमाजिया स्टेट के कुमाजिया तू एगो ऑफेंस करत हुआ मिसलमान हमने सेंट पुलिस कब केस आवेला लाकुर में लिखे हुआ पुलिस अगेंस्ट एंटेल कोंट एंटेल में तो ये सिलमा हमने लेता कि कम है बनावल है ला पुलिस सिर्फ एगो मीडियम हो पुशिव करे के एगो आदमी एगो कैसे एगो आदमी को ओके मेंटेन करी लो तो हमर नियर आदमी तो नहीं सके मेंटेन करी लो ना तो स्वाज के कर लेन सेंस बोझो ला पुलिस के तो ला पुलिस मेंटेन करे ला लो एंड ऑर्डर आले हर आदमी के जिससे पुलिस ओकर बा एगो द्वा दे सिविल अब सबसे बड़ा कानून हमने के देश में है हमने के कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमने के एगो है है ये बात चौपटे बा लिखल है हमने के कानून कुछ 1968 में कब हमने के है देश को

0: करे ला लो एंड ऑर्डर आली हर आदमी के जिससे बोली सा ओकर बा एगो दुआ दे सिविल अब सबसे बड़ा कानून हमने के देश में है हमने के कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ई हमने के एगो है है ये बात चैप्टर बा लिखल है हमने के कानून कुछ कुछ 1968 में कब हमने के है देश को मज कले एगो चीज एगो आदमी लिखी एगो चीज ऊ बखतुआ नहीं रहल अब नुवो चीज आई तो देखो कभी अमेंडमेंट आवेला
1: तो सब अमेंडमेंट कितना समय में आवेला हर बरिस में आवेला
0: नहीं नहीं अमेंडमेंट मज हर बरिस में नहीं आवेला अरे सिबुसो एगो चीज पासे होल बा अब ऊ बखतुआ नहीं रहल तो अब इन नेसेसिटी हो गल बा तो देख बहिया ओके चाला समझे करके जितना हाली सकल जाई आने तो हुआ ने अब यहाँ आई एगो
1: तो जब उ समझे हो जाला तो कैसे सब कोई जानी
0: हाँ तो यही चीज है बढ़िया से आदमी बोले सा इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो डिफेंस मतलब तू नहीं जनला लवला हर आदमी के सीपोजे जाने ला ओके जाने के चाहेला कि ये कानून का बोलेला हाँ जब एगो आदमी एगो चीज पासे वेला असेंबली में तो असेंबली में कब पासे वेला तो हमने के बा ओके कुमा जे गवर्नमेंट के लगासेत गवर्नमेंट गाजेट जिसे हमने बोला सा ओ इम्प्रीमे करेला ओ में पिब्लिए करेला सो जिस सब आदमी के पढ़े के जाने के चाहेला देख लो हर एक भान आदमी तो लगासेत में पढ़ी या रेडियो में तोर संगे सुनी समाचार में कि हैतिल हैतिल कुमा जे आलबा अमन मालबा सिसेल मानिया जाने ला तू कभी तो दूसरा ओकर संगतिया या कोई भाई या बैसा की बोल जाने ले नहीं जाने रे ई बदला आलबा कानून में तो एक भान आदमी नहीं जाने ला मिसल में कोई डिफेंस नहीं है एगो प्रिजम्पशन है कि हर आदमी के कानून जाने के जला तो सावेजक काल अमेंडमेंट हो गल एगो बोली के अब तू नहीं जने रहल कानून में नहीं सब बा के मजिस्ट्रेट के बोले जाने रे माई बाप हम नहीं जने रही कि मजे ई लालुआ हुआ ऐसे पास होगा न तो हम ये चीज हुआ नहीं कर ली
1: हाँ तो ऐसे है ना कि जितना कोई लालुआ पढ़ेला जानेला सब कोई सोचेला कि जो वकील लोग हवन जा ये लोग के लालुआ जहाँला जाने के कहे कि ये लोग केस लड़े लन जा ये लोग के जहाँला जाने के तो जो बाद में जो हमनी जैसा आम इंसान लोग हवन जा वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देवेला वो लोग खाली ई जानेला कि पुलिस बा आज यहाँ पर स्पीड लिमिट बा और हैजा पर आज हम कोनो लालिन दुआत बा दुबले कर ली तो प्रॉब्लम हो यानी कि हमार जो वाजन बा उकर उकर घर में यानी कि छोटा छोटा चीज हमने के आम जीवन में जो कुछ होवे ला एगो इंसान जब ना खाली होवे जाने ला अभी देखा आज हमने बतियाते जा राइट टू प्राइवेसी न एकर में जैसे अभी बोल ला कि एगो इंसान के उकर दुआ है अपन घर में जो चाहे वो करी अगर दुआ है बाहर में तोहरा बोली कि हाँ यहाँ काम करत हुआ कि यहाँ पर लामिजिक दुआ नहीं बा चलाई के हॉस्पिटल में हवा एगो एगो दुखतिया के नहीं एक्सपेक्ट कर बा कि अपन अपन अपन काबिन में राजो दल के लामिजिक डाल के नाचा था कुछ करता नहीं सकबा करे ना लेकिन हवे इंसान जब अपन घरे बात अपन घर में नाचे बोले हाँ हमने के तो बोले राजो नहीं सुने के तो वो काम के जगह है ना हाँ जो नकर घर वहाँ होकर प्राइवेट लाइफ है यानी कि ओकर दुआ है घर में कुंज करे के तो ये सब तो हम नहीं जाना थे जा लेकिन अभी जैसे बोला कि इतना लालुआ बा इतना सब कुछ बा तो एगो आम इंसान के लिए जाने के बहुत मुश्किल बा अभी बोला तो हमने के हमने के रेडियो के माध्यम से हमने के टीवी के माध्यम से इतना लोग हवन जा सकेला लोग जानत हुए जा अब कि उन लोग के दुआ कौन ची हम कि उन लोग के चाहना लालवा जाने के लेकिन एगो आम इंसान नहीं जानी हो
0: नहीं हाँ अरे एगो बात करूँगा बोला वकील के वो वकील जाने ला कितना आवोका बा अरे आवोई बा एगो लालवा पास बा वो जन्मे नहीं करे ला कोनो का करे ला आवोका सिर्फ जाने ला वो एतेल कई सीजेवा में सब सीजेवा में नहीं जाने ला किसी सकबा बोले एगो अबोका सभी चीज जाने ला सभी पढ़े ला
1: कैसे हम जब
0: नहीं का हुए ला कब सुने ला कि ऐतिल हुलबा पासे हुलबा या एगो केस ओकर आगे आल बा हाँ तो कि अब न कानूनवा जाई देखे कौन सी होल बा का बोले ला वो कानून उमे
1: अनुभव से आगे जाने लन जा सीखे लन जा
0: हाँ तो ओकर केसवा जैसे मिलल ऐसे अब डेवलपे करके और कोनो तो बाहू तो बहुत बड़ी से होई कानूनवा में वो जाने ला
1: जैसे अभी इतना कुछ जाने ला हमने के इतना कुछ सिखावे ला थोड़ा से इतना कुछ जाने के हमने के मौका मिले ला हमने के लिए एगो बहुत बड़ा भाग के बाद बा कि हमने तोहर के साथ यहाँ पर बैठ के जब कार्यक्रम कैला जा तो अपन दुआ के बारे में जाने ला जा
0: हाँ तो यही बोल अरे यही तोरा है काट के बोलते हैं कोनो भाई जमने के प्रोग्राम सुनत हुई ओकर एगो प्रॉब्लम हुई तो यही तो मीडियम है ना हाँ। कि आओके पूछे के कि ऐतिल नहीं निश्चय को नहीं देखते बाकी जोन में बतवा करते हैं सर वही में पूछे के पूछा एगो चीज जहाँ तोहर समस्या हमने सकब सब इ मीडियम से तोहर हाँ। से सॉल्व करी के ओकर प्रॉब्लम
1: सकेला कि ई जोन परेशानी बा हम हमके अगर में कोनो इंटरेस्ट नहीं बा कोनो लायते नहीं बा हमर हमर से हमर हमर चीज के काम हमर हमर काम की चीज नहीं है लेकिन सकेला कि ओकर पड़ोस आस पड़ोस में परिवार में कोई बोली देखना हमके हई प्रॉब्लम आ गेल अच्छा जानत हुए हम तो

0: प्रोग्राम देखले रही टेलीविजन में राजो में सुनले रही एक बारे में बतियाले रलन जा तो के चाहना जाके वो वकील के देखे के तो के सकेला जाके बोली तो ऐसे चलेला ना।
1: हाँ, जरूर,
0: जब ले वो इंसान के जीवन में एगो समस्या नहीं हाँ, आवेला हाँ, हाँ, जब कानून के बारे में नहीं जनबा तो जब ले भगवान है तब ले नहीं जनबा ना।
1: हाँ जरूर आली तो हमने देखी रस देख ई कानून कैसे पोते से करेला दुआ दे रिस्पेक्ट दुआ दे लावी प्रिवे राइट ऑफ प्राइवेसी आली हमने के कानून जो लिखल कानून है कितना बात हमने तो कर ले कैसा दुआ सिविल में कितना बात कर ले सा शादी जीवोस माटी पता सब के जाफे में ये हमने के कानून पोते जे करेला हमने के जीबिया एगो आदमी आले तोहर एगो जमीन बा ओ जमीन वा के प्रोपिएटर तू हवा हां त कानून नहीं बोलेला कि ओ जमीन वा हम सकबले ले समझला ना। हां कानून में नहीं बा ओ तोहर जीबिया ई तोहर जे जीबिया के ई जे सेम दी बोला सा ई जीबिया वा तोहर ह तोहर लावी कनेक्टे बा ओ जमीन वा से ओ तोहर नामे बा अलकारी कैसे हम आके सक बोले ई हई जमीन वा दे हम के ये हमले लिप से ताजिए ये कब कुदेता हुए ला तब सब कुमार जमीन हुए ले ले वेलन सन मैं या नहीं हम तो और जमीन जो तो और नाम में बात तो और कोंठा में बात कैसे हम सके कब आला के काले के उस जमीन वाके है बोले कि ये हमर है
0: लालवा सब कोई खाती ना
1: सब कोई
0: भले कोई जाने ला कानून नहीं जाने ला कानून उस जमीन तोहर है तो तोहर है।
1: हाँ आलोस लालवा प्रोटेजे करे ला ओ तोहर लावी प्रिवे के ओ जमीनवा कनेक्टे बा ओ तोहर ह तोहर कोंतरा हो या कैसे मिलल बा तोहरा ओ तोहर ह हम नहीं सकब अपन हाथ डाले ओ जमीनवा में या चोरी कर ले या गो फोड करे के ओकर नमो त चोरी या फोड त ही ते ऑफेंस हो ख ई त नहीं कानून मानेला त दिखल हिया जब ओके मिलेला ओ जमीनवा ओकर नाम में ह लालवा कानून पोतेजे करेला ओ आदमी के कबू के पोतेजे करेला तो कर पोतेजे कर तो कर लावी पुईवे समझ लेना कोई नहीं दूसरा। अरे सबसे बड़ा चीज तरेला बोली सर हमने के कॉन्स्टिट्यूशन है हमने के लॉजिक दूस हमने के कॉन्स्टिट्यूशन जोन बाल जोन हमने के देश के गुवेने करेला ये हमने के कॉन्स्टिट्यूशन वा ओ प्रोटेक्शन देवेला लिबर्टी एक्सप्रेशन रुआ बोली एगो आदमी के नहीं सकब ओके गारी दे हाँ। नहीं सकब बोले तू ऐसे हवे चोर हवे सिपाही से हुए या एगो आदमी ठीक नहीं हवे समझ ला ना ओके लालुआ पोते से करेला धुआ नहीं है आदमिया के ओके गारी दे के या ओकर इज्जत उमजी को जे बोले के हाँ हम तो बोले ओकर इज्जत बेचे के समझ ला ना ये धुआ नहीं है मैं हमने के कॉन्स्टिट्यूशन दोन दूस को जैसे अलौचिक दूस बोला था ये प्रोटेक्शन देवेला लिबर्टी एक्सप्रेशन में हाँ। ये देख अब एगो चीज हमने देख सर कैसे एगो आदमी मेम क्यों कर दो आप प्रिवे ऐसे का मैं लिखल कानून है जब एगो आदमी ओके दूसर आदमी के सिपा एगो चीज बोली देख सभी तारे खींचे के करी या कुछ बोली ओके देवेला कानून उ है धुआवा ओकर आदमिया के बोले के जो ओके मन बोले खोजता सिबोसो एगो आदमी नहीं ठीक बा तो कल हम सब बोले मजा एगो मीटिंग में हो रही या एगो कहूँ आल आके ऐसे ऐसे एगो बात बोलक कि हम ऐसे ऐसे कर ले हई समझ ले तो हमने सब बस वो देख ले कितना झूठा आदमी है ऐसे बोले रहल अल्लाह असेंबलीवा में बैठ के जहाँ रहल कि ऐसे ऐसे चीज करी मैं कुछ नहीं कर लक ये हमके धुआ बा ओके खींची के करे के
0: हाँ खिचके करके और एगो आदमी के कैसे बोला जला मान ला तोहर पड़ोसी बा तू अपन घर में वो अपन घर में बा त अपन घर से ओके गाड़ी दे के इकर धुआनी है ना रोज चला के मारे के ई धुआनी
1: है
0: ना ऐसा चीज है कि उकर माटी में जाए के धुआनी है लेकिन अब आजे तोहर वाजा जुन बा अपन माटी छोड़ के तोहर माटी में जाता तो उकर धुआ हा बोले के कि तो धुआ नहीं है हमारे गमर माटी में आए के सकी बोले
1: हम
0: अपन अपन अपन अपन जुन अवधि बा तो बागास जुन बा के निकाल यहाँ से कहे कि हमारे माटी है जाली बा तो उस सकी बोले
1: सकी बोले और दूसरा हमने देखी कब देखी ऐसा लिबर्टी एक्सप्रेशन हमने के बा हर इंसान के ओकर एगो लोपिनियो बा आले लगाजित में नहीं देखे ला कितना चीज कुमा जे लिखल जाला
0: लोपिनियो
1: ओकर लोपिनियो हा ओके देवेला कौन ची बोलेला का करेला आर ओ का करेला हमने की दुआ हा लोपिनियो दे के और हमने की

ऐसी वो करेगी उल्लू पिनी अरे काल बोल बो कुछ तो हमको से वो नहीं करता है कब हम बोलब तो ओके कम्युनिके करता है मैं चाहे ला ओ इंफॉर्मेशन वा डंक जैसे हमने कबर लिबर्टी एक्सप्रेशन में नहीं चाहे ला कोनो इंटरफेरेंस तो सावजे एगो लावी प्रिवे में एगो आदमी के नहीं चाहे ला ओके अटैक करे के हो आदमीया के तब ले ओ कुमा जे जुन चीज बोले बा ओके चाहे चाहेला जस्टिफिए करे के आलू का बोले ला एगो आदमी ओकन लोपिनियो रही अरे हमके तो देख लेगो बोले के तोरा तोरा दुआ नहीं बा बोले के हमर कैसे है हम कौन सी करी ला मे बैंक बहुत दूसरा चीज जस्टिफिए करे के तू सब काल हमके मर काते अटैके करे के हमने की बा हमने के कानून में जैसे हमने सब बोली ला सर डिफामेशन एगो आदमी सकी दिखे के एगो दूसरे आदमी के मजे ओकर काकते में ओकर लावी में ओकर लावी पीवे में सब चीज ओकर को मजे है बोले के भी सिल्म का बोली हमने के बोले लालवा जी फाम आशो में बोले लंसन जस्टिफिकेशन जस्टिफाइड एगो आदमी के बोल बा अरे से बोझो हम साइंक पीस से थे एगो बोले के तो कल हमके नहीं सकब को मजे तो बोले झूठ मुड़ के हम दे पिए हैं जस्टिफिए करत बस कि खाए सच ऐसा का में तो देख एगो लावी पीबे जो आदमी के बा कि तुहरा धोआ नहीं बा ओकर लावी में ओकर कुमौतिया करे के मैं सेमा चीज में आवेला कभी सब कुमौतिया करके एगो बोली ला एगो ला पुलिस झुके के एगो आदमी बोले ला चाहे ला कुमा जे है ला पुलिस के साइक पेसे साइक पेसित रही एक बार आदमी जाने ला पुलिस वा जो ढुक गल बा साइक पेसिस आदमी बोला अरे दिखले है पुलिस वा के इतना छोटा लोग था बस वो तक नहीं बुझा ला को साइक पेसित बा तुहरा जस्टिफिए कर ल कालो के बोलब कर दिल तो ए तू तो साइक पेसिस हुए साइक पेसित नहीं हुए तो वो कर लावी पीवे अटाके कर ल ओके तो अटाके कर ल मैं सिल्मा काल जस्टिफिए करब कि जोन चीज बोलत हुआ वो सच था तेकर जस्टिफिकेशन है कानून में बहुत सा वकील कभी को केस आवेला ओकर लाकू में जिफामाशो में जिफामाशो में बोले लंसन ओकर लोने में एक बार तो देखब आदमी बोले लंसन है कभी को केस आने ला एगो मैडम के सिबोज एगो मिश्र बोले बा बोले तू एगो वेश्या हुए एगो ऐतिल हुए मजे ऐसा न हुए तो उजाला एगो केस करेला लाई में मजे अब ओकर वकील उल के देख के बस केस आवेला लाकूर में तब भैया या बोले कुमार जी एगो दूसरे आदमी के रख ले हुए या ऐसे कर ले हुए ओके सब चीज बोले बा मडमुआ के तो हिया मडमुआ का करेला जाके अपन वकील के देख के एगो केस करेला लाकू में अब केसवा कब आवेला लकुरुआ में तो हिया तो बोली ना मडमुआ बोले हमके बोला था ऐतिल ऐतिल हाँ ऐतिल ऐतिल में ओ मिशे हुआ जे ओकर बाप पुए ओकर बाप प्रेम सकी बताए कि हाँ ये ऐसा नजमी है तो यहाँ जस्टिफिए हो गल कि मैम कि ओकर लावी पीबे अटैके कर ल तो यहाँ बात हो रहा गेजो कि ओसन आदमी है तब कानून में डिसमिस कर देवेला के स्व काहे जस्टिफिए करता आलो हमने देखी ला सर एगो आदमी के कब ओकर लावी तू अटैके करे खोजत हुआ तब बा हमने के लिबेट एक्सप्रेशन जो आवेला जब नेसेसर होवेला तो सकल जाए मजे आने ई एगो लोपिनियो पब्लिक में आँचे कि सकब आके बोले कि देख सोसाइटी में आके भी बोले कि जस्टिफिए वेला बस वो आदमिया हौसन एगो एगो एगो ऐतिल जुमुन आली हमने देखिला सर बहुत चीज लासेंब्ले में पास होवेला आली लासेंब्ले में नहीं देखेला एक बान चीज आवेला है बतियावल जला हुआ एक बार डिब्बा होवेला एगो मोशो में जब एगो मोशो में आवेला तो दूसरा डिपीते हुआ बोले ला ना तू ऐसे हवे ऐसे हवे हाँ लासेंब्ले में तोरा सकब एगो आदमी के ओकर लावी पीवे अटैके करे ओके सकब बोले कि अरे गो बोले कि कुमार देख बान सके आई बोले कोनो चीज लासेंब्ले में तो वो बोले ला हमने के कानून प्रिविलेज है एगो आदमी के सकब गाड़ी दे दे एगो आदमी के सकब बोले तू ऐसे हवे ऐसे करे वह सकबे बोले गो चोर हवे तू वहाँ बोला था लासेंब्ले में बोला था हाँ तो लासेंब्ले में हई दे पीते हुआ हाउ दे पीते हुआ कि एगो चीज बोले तू ऐसे कर ले ऐसे नहीं कर ले ओकर दुआ बात एगो लिबर्टी एक्सप्रेशन में मेम के कौन चीज या नहीं जस्टिफिए

0: ओकर पसीसी बोजों आदमी आगे छोड़ नहीं है यहाँ बोला था एक ही से नहीं देखे ला एक बार आदमी बोले ला आला सांबले में बोलत हुए हियाँ सकबे बोले जोन तो के मन होई पसकी हमने के प्रिविलेज बा हमार कागत्या ताकई करत हुए या कुछ बोलत हुए मैं सिलमक निकल के हियाँ से असेंबले में रस्तवा में वही बोलिया बोलिए ना तब हम तो बोला का करे के चाहे सब नहीं कहीं सीजे वहीं से आवेला तो यहाँ देख ल एक एक जगह सगब एगो आदमी के बोले ऐतिल जिस्तवा मैं पब्लिक में नहीं सगब बोले
1: झूठ रही बोल दिला था वो कर दुआ बोले के
0: नहीं दुआ बोले के बाप ओके चाहला ओकर है ले के कॉन्सिक्वेंस जब एगो चीज झूठ है अब तू पांच काल गई लगो केस में तोरा चाहे ला ओके जिस्टिफिए करे के अब नहीं जिस्टिफिए करे
1: जैसे बोला कि अभी एगो एगो कैसे बोला कि अभी असेंबली में कोई के सकबे आता कई करे हां सकबे और देवो ने से बात
0: आता नहीं आता के देवो नहीं
1: अर्जुन बतवा बोला हुआ पर बोल दिला हां बाहर आके कुछ नहीं सको करे
0: कुछ नहीं बाहर नहीं पसी क्या है जो चीज बोला हुआ असेंबले हुआ कि मैं मतलब रूम में जाऊँ कर हॉल हुआ बस आज जहाँ बैठे ला सबको या असेंबले ही करे नंबर हुआ तो बोल देला मैं आ दे वो यही बोलवा तो ये एक बार नहीं बोले ला दीपी थी कि कुमार जहार ये तो ये सब मिला गाजित में रेला कानून है सब चीज तो बोले हाँ क्या आ दे वो बोलिए नहीं बोलिया तब हम तो कि बताब हम के हई तब हुआ तो वो तो माने बा कि एगो चीज नहीं चाहे बोले के नहीं बोली ना मजे रास्ता में या एगो पब्लिक जाके मैं आके हिया है आके बोली यही से नहीं देख ला एक बार चीज कब मीचिंग होवेला तो एगो आदमी जो मीचिंग करेला एगो छोटा सा पापी रख ले बा सब चीज बोलेला मैं नहीं आके बोली एगो चीज नहीं सके जिस्टिफिए करे नहीं सके आके बोली उस दिन में जाने ली तो एगो चोर है बस यहाँ तक मजे मीचिंग पब्लिक के आगे बोल दे बा ई और नहीं सकी वो चीज वहाँ पूवे करे तो कल एगो किस दलक हुआ तो फिर ओकर कॉन्सिक्वेंस पे ये करे के चाहना ओकर कॉन्सिक्वेंस का है बड़का पैसा मांगल जाला एक नंबर दो मास तो देख बहु आदमिया पुशिव करेला बस एगो चीज बोलेला नहीं कि मजे है करेला तो ये देखेला यही बोलेला हर आदमी के हर सर्कमस्टांस में एगो पब्लिक के बा कुमा जे सकब चीज बोले और कोनो चीज सकब नहीं बोले आले अब तू तो बोल देला एगो आदमी के लावी प्रिवे ऐसन हो से और हमने तो मुरछे है स जाने बहुत कुमाते करेला सब एगो आदमी के कब देखी ला सब बोली ये तो ऐसे है वो
1: तो ऐसे तो सच्चे बात भाई तो सच्चे बात बा निकल जाला मुंह से
0: नहीं निकल जाला मुंह से नहीं कोनो तो जाने ला बोलेला ये एगो तांदस हमने बतियाला हम तो सोसाइटी में हम मुरे हम तो मुरछे
1: है नहीं देखा ऐसे बात एगो बात ऐसन है कि अपन में बात कर ल माना दुगो दोस्त हमन कोई के देखलन जा काम आलबा और इतना ले जैसे सच धज के आलबा तो सकब दो जना बतियाते कि कहां जाता शादी में जाता का ई अपन में आपस में बात ऐसे हाँ,
0: हो जाला
1: ना ऐसा बात रहेला
0: हाँ, और मोरिशा खुशी रहला रिमार्क करके बोले हाँ, के कोई के हाँ, आलू तो हाली एगो बोली के एगो ओकर लावी पुईवे में ओके अटाके कर देले बा ओके चीज बोल देले बा जोन चीज नहीं मजे बोले के अब जोन आदमीया जोन विक्टिम हो गल बा ओ का सकी करे कौन ओकर रिकूबा कुमा जिया ओ आदमिया के का करे के चाहेला एक बार आदमी तो नहीं देखे लगासित में डालेला कि कम का कुम हुआ डाल दे लेबा तेल तेल दुनिया पढ़ ले लेबा उमें जोन चीज बोले के नहीं चाहेला कौन तो का करेला माफी मांगेला तो हिया हमने के बोलल जला उसे एगो चीज कब हो जला तो देखबा ओ आदमिया जोन विक्टिम है वो एगो वकील के देख के एगो आवोए के देख के एगो केस लोजे करेला लाखों में अब देखी कितना मांगे खो जाता कुनो तो मांगी तो हक मजे सैंक मिलियों से छोड़ के दिए में ऐते में जे छोटा लाखों में भी सकब या ऐते में जे में सकब में जब जिस मिलियों मांगत हुआ सिपा 20 मिलियों सिपा 100 मिलियों ऐतेल बोलिया के कब बोलेला तो आदमी सकेला ओकर आवे लोजे करे एगो केस लाकूर के आगे रिकलामे करे के दो मास यही पैसा है कि ओकर लावी प्रिवे व्योले कर दे बा आता के कर दे बा और औसन आदमी के जब ओकर रेपिताशों कोरेक बा तो यहाँ देखिला स नई उपमा जबा एक भान आदमी एगो चीज करे खोजता एगो आदमी के लावी प्रिवे आता के कर ले बा मैं आता के नहीं कर ले बा अभी कुछ बोल ले नहीं बाकर में हाँ शायद प्रीमे कर दे लो ही बना दे ले आज न काल नहीं या कहूँ आके आके उ बोलिया के कुमा जे है पिबलिए करे तो सकी एगो आवोका आवो के देख के एगो केस खाई में लाकूर में आई के एगो जीश असम के एगो

0: droit mangé écrit na injonction arrêter करे के पिब्लिए करे के आगे ऊ जुनलो चिकवा ओ के मन रखल पिब्लिए करे के ये देखे ला कानून कैसे अल्बा मेम की दुआ ये दुआ की सकी ऊ ओकर एच मिते ओकर लावी प्रिवे के जो ओ आके दिवाले करत मिसलमा भी नहीं दिवाले कर दे ले बा सीख ले लो ही कोई से कोई जानत होई तो मजा कभी तो देख भाई गोदमी कब प्रिपेयर करत है कोई चीज तो दूसरा आदमी बा ऊ जाने ला उसके दूसर के कब बोल दे ले तो जाना था कि एगो चीज ऐसन होई तो सकी आगाड़िए करे या एगो लीव पब्लिक में जाए के गाड़ी सकी कब जान गल बा ऐसा चीज हो गल बा तो जाके देखे के एगो मजम के एगो लोद मांगे के एक नाम ओसों की वो लिवा के आरती करे के नहीं पिबलिए करे के ना दुनिया में ऐसा विजय हुए उजिजवा देखेला हर आदमी जोन एगो कुमा जे चीज बोलेला गुलाबी पीबे ओके अता करे अता के करेला है तो वो एगो ओफेंस हो करेला आतं एचमी दे लावी पीबे कोई के दुआ नहीं है जे एगो चीज औसे करब तो वो आदमिया सकी पुशीव करे तोहरा तो ये काली ते बोले लनसन नहीं बा अब हमने देखला सर एगो लावी प्रिवे के नहीं चाहेला पब्लिकेशन नहीं चाहेला कुमा जे एगो एगो मानिए दूसरा एक बार आदमी का करेला एगो आदमी के लावी प्रिवे अटाके करे के कारी काचिय करेला डिजाइन एगो फोटो एगो डिजाइन करके ओके है कुमा जे औसन में हुआ दा कुमा जे करी ओ कर लावी बस की कुछ लिखले नहीं बा
1: हाँ, खाली एगो कागजाचिया बना दे रे बा हाँ, तो कर दुआ करेगी
0: ये नहीं जी ऐसा एगो चीज कर ले बा तो कुमा जे आली एगो आदमी के एगो कागजाचिया करे करी बा अभी हाँ, छोना होता अभी सर हर आदमी के दस बोसों दुगो हाथ बा ना एगो कागजाचिया डाल के हुआ पिबलिए करे को जाता ई आदमिया के जोन के दुग हथवा बा एक के एगो हथवा कटा गल बा बस वो कागजाचिया हुआ में डाल दे बतिया तो आदमिया देखी तो बोले कैसे सकता बोले कि हमार तो दोनों हाथ बा यहाँ तक एगो लेग्जाम मैं बहुत मुवे काली थे वहाँ नहीं बोरे को जैसा में कौन सी सकी डाले जो यहाँ एगो ओफेंस हुआ था क्या देखे ला बिना कंसेंटमेंट के एगो आदमी के जो नौकर लावी पीवे तू पिबलिए कर ल या प्रोनोसे कर ल पाहौल जो नहीं चाहे ला प्रोनोसे करे के तो वो कर लावी पीवे अटाके करत हुआ ऐसा आदमी के देखब लावी पीवे कुमजा ठीक नहीं है अरे ये वो यही पछिला एगो चीज बोल कभी से मर को परवा में आवे त मई बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे खाली जाने ना बहुत सा बड़का बड़का स्तोबा लेडी डायना के सुन ले वो करना
1: हां हां हां
0: अरे लेडी डायना एगो कुमजा है से किंग सॉल से शादी कर ले रखल बिचारी मर गले गो ऑक्शन तब हम अंगले थे रली तो ऊ कहाँ जाई देखभाल आप सोकर पाचे
1: प्राइवेट लाइफ
0: हाई का प्राइवेट ही लावी प्रिवे ये जो मैं कब से आतान करते ही में आई के तो उकर लावी प्रिवे बा हर इंसान की एगो लावी प्रिवे बा ओके मन बा जाई के आले लामेर
1: हाँ।
0: लामेर में गल बा हुआ तो उकर कायम लागन होई यार मजे बड़का एक्ट्रेस होई अरे बिकिनी तो सब कोई डाले ला करो मन हुई बिकिनी डाले के
1: तला में साड़ी पहन के थोड़ी नजर बनाजे करे
0: गई जोली बोलिया तो अब आदमी हाँ बोली जाने ली लेदी दया ना हम तो दिखते हैं कुमा जा ये को बिकिनी पहन के कुमा जो हुआ लारेन के ये हुए लारेन नहीं रही वो बोली के कुमा जी ऐतिल से शादी कर ले रहा अरे थोड़ा शर्म नहीं कि ऐसा डाले तो यहाँ तो सभी कोई डाले ला कुआ एगो चीज मैं सबसे बड़ा चीज का देखब हर आदमी के एगो लावी पीबे बा ओ गल लामेर कब गल लामेर तक मजे कोई से कोई जानल हुई अब आ जाना था एगो मिशिये के मिशियवा के बाप हाथ धर ले ले बा कब ओकर हाथ धर ले ले बा लमेरवा के आगे एक मजा चलता कोई भी हो यू का बोलत हुआ काल तो दिखबल लगा से तो कर कैमरा से जाके कुछ खोजते रखेला कब ऐसा चीज पिबलिए करी बस की कब ऐसा चीज पिबलिए करेला लगाजेद तो कहते पैसा में ओकर भाई ओकर लगाजेद ज्यादा बेचेला सेंसेशनल न्यूज आना था कि ऐसा ऐसा एगो चीज हुआ था कि ऐतिल इतना बड़ा है ये आदमी ऐसा नहीं गुलाबी ले जाता तो यहाँ का कर तो गुलाबी पीवे के

0: जुन सब आदमी के गो लाभी प्रिवे बा यहाँ को लाभी प्रिवे अताके करता कहाँ कानून मना करेला ओके जे मजे गोदमी के सिबुजों खुशी होई के आर जे खुशी हो गल बा ती तक एगो फ्री कुमाजे एगो तरह का है तो हिया देखे ला बड़ा चीज है जैसे बोली तरेलवा एगो कम्युनिकेशन आवेला रेडियो में टेलीविजन में फिल्म में ला प्रेस में जहाँ दिखबा एगो आदमी के ओकर लावी पुईवे आताके करेलन सन ये एगो चीज कोरेक नहीं बा तो हिया जहाँ एगो फोटो निकललक एगो बड़ा आदमी के तो हूँ ओकर फोटोआ से ओकर लगा से बेची एगो या कुछ करता कई बन तो हुआ देख बक मजे बड़का बड़का लगा से बन नहीं बोलो को नमो तो हुआ लगा से तो हमें दल ले बा हम बोलते एक दिन में सब कोई मज बोला था वो बोलिया देख बा ओकर वॉल्यूम जितना खाई होल बा इंक्रीज हो गल लगा से तो आके बिस्ते जाता दिन रात काहे हिया ओके हई ओकर हई लावी पुईवे आताके कर दे ले बा ती ती दूसरा हला लाइन के छोड़ दे ला सब
1: हाँ
0: तोहर घर बा हमर घर बा
1: हाँ
0: अरे सामने सामने है सब
1: हाँ
0: बाप हम तोहर नहीं है पिक तो दूसर मानिए बोली ला एगो आदमी के घर बा हूँ एगो मैडम हऊ बगल बा हिया एगो मिशे बा दोनों एगो कंवाड़ी कुमा जी हमी देखब सब पिता वी वी वी ई ए है हमी के दुआ नहीं है कुमा जी घर बनाई के कुमा जी तोहर कुमा जी है लाफ नहीं बता खिड़की तोहर खिड़की और मर खिड़की जिगे नहीं बहन
1: यानी कि हम आज अपन खिड़की है जैसे खोलब हाँ। तो हमार खिड़की के आगे तोहर खिड़की नहीं चाहना रहे
0: हाँ तो हिया देखे ला एक बान आदमी का करेला एगो घर बनावे ला तो देखे ला हो बगल के बा एक बान या मिशे हो या मैडम हो अरे झांके ला भैया ओकर लावी पुईवे में जो नो के मन होई माफ करिए बोलत हई लंगटे हो अपन लसाम में तो ओकर घर ओकर लावी पुईवे है और एक जगह है जहाँ ओके ओके मजा है कानून नहीं है आप इसे करेला अपन घर में कुछ करे के ये आदमिया का करी सकी फिल्में करे वो आदमिया का करता तो ये गुजाफे घूमे है
1: फोटो सकी खींचे फिल्में सकी करे
0: हाँ सब चीज ओकर व्या ए
1: वाइब ऐसे करके सकी देखे
0: हाँ तो ई एगो जाफेत ई ओकर लावी पुईवे हाँ तो ई आदमिया का करता झांका था दूसर की अभी के तो है कि सिर्फ एगो छोटा कैमरा नहीं बा है मोबाइल से बा का पहले के तो लूप रहल ना
1: हाँ।
0: कितना दूर से सकबा देख बा
1: ओकर घरवा
0: में रही हाँ घरवा में रही बहुआ दिखल करी ओकर वाइब सब ओकर मूवमेंट जो ओकर घरवा में उ करता तो ई एगो चीज है जहाँ देख कानून तब अनलग वी में हमने आपसे तो बताया आपसे उम्मीद कैसे एगो चीज ठीक नहीं है कैसे कानून बोलेला जे तोहर

0: बड़ी सिपाहिया है ये खिड़की कुमा जब विजा विज रही तो आपिए नहीं बा कम बा और तू बना दे लो सकी वदमियाई गो मांग करे गो लाकू के कि तुरे के पास के कहे सब ओकर कुमा जा लावी पीबे ई अदमिया झांकता देखता देखियो का लुगा पहनबा तो कुमा जैसे ने गो मानियर कि आदमी बोला हिदो घिन दिया ताकि वो अदमिया नहीं सकी देखे
1: लेकिन खिड़की हुए कटवा नहीं बनाए के
0: हाँ खिड़की ही नहीं बा उके कुमा जा यहाँ
1: यानी कि हम आज अपन घर बना देनी हमार घर में यहाँ खिड़की यहाँ खिड़की बा तो उ खिड़की के सामने हमार वाजे की खिड़की नहीं चाहला उ आज बनावत हमार बाद में तो कर खिड़की नहीं चाहला हमार खिड़की के सामने रहेगी आज बनावत हम सकब ओके बोले देख हमने खुशी है कि हमार खिड़की के आगे तो खिड़की रही तो कौन चीज चाहला करेंगे
0: तो हिया ओके का करेला चाहेला पहला एगो देखे के एगो अपातेर के एगो अपातेर ओ का करेला यानी आके मिजरे करता मैं हिया के एगो रापो करी कि ऐतेल रिकेट में से बोसो तोर रिकेट में घर हल देखे हुआ बस कि तू बोला था ओकर खिड़की तोर खिड़की मजे भीर बा और तू आगे बनाई ले रहा तो ऊ तक मजे फेकुआ बनाई ले बा बस हुआ ओके एगो हापो मांगत हुआ जब ऊ अपन तेरवा आल मिजरे करलक देखलक कि एगो डिस्टेंस नहीं बा कुमाजे तीन पिए ऊ बगल तीन पिए हियाँ नहीं बा तो का करी तो अपन रापो न लिखी जब रापोआ में तू देखल ऊ सचिफिए करे कि हाँ नहीं बा छऊ पिए नहीं बा तीन पिए कुमाजे बालीजाज से ओकर घरवा तक अब तू सगब एगो वकील एगो आबो के देख के एगो केस करे के कौन ची करे के केसवाओ में कि या उ खिड़खिया जो ओकर बा बन करे के या उ घरवा ही तुरे के
1: नहीं
0: हाँ बस की दुआ नहीं हो ओकर घर हुए तुरे के
1: एगो खिड़की खातिर घर तोड़ा जाए
0: तो ये सैंप हो एगो सैंप चीज मजा नहीं देख रहा खातिर के एगो आदमी पीजों चल दला
1: हाँ
0: तो ये कानून लिखल कानून है हाँ मैम कि हमने आप सही में तब स्प्लीके कर कैसे है तो ओकर हाँ सैंप देखल खाते ओकर खिड़की सब तो नहीं देख रहा एगो आदमी हाले सैंप तोर से प्रोग्राम कर ले रही एनक्रोचमेंट में अंपियतमा में तो अंपियतमा में तोहर है घरवा हमार घरवा विजाविज बा तू हमार जमीन में ढुक गल अरे ढेर नहीं तीन पिए के डिफरेंस में कब छोड़े के चाहेला तू दू ही पिए में करके हमार जमीनवा में डूब गल हुआ तो कानून का बोलेगा तूरे के चाहला घर हुआ बस एगो अंपियतमा में एगो अंपियतमा में मजे तूरे के चाहला हाँ एगो चीज अभी भाई याद आवे स्टैट्यूटरी डिस्टेंस में मजिस्ट्रा के एगो डिस्क्रिशन बा नहीं तूरे के मैं कभी यहाँ घर अंपियतमा में आलबा कुमाजे दोनों तो देख बहिया सकी मजिस्ट्रावा के हाथ के कितना किस बा नहीं सकब सब यहाँ नामुए किसवा कुमाजे एगो दसन को किस काली तो एगो हम ही देख ली बा कि ऐतेल ऐतेल किस में चाला घर हुआ तुरे के एक महान आदमी बोले बाप मिलियों के बना दे हो घर हुआ अब वो टर्निशन लाखों से हम ढूक गल तो हिया तो सकी बुआ के बोले हम तो क्यों फेयर करते हैं एगो पैसा नहीं मजा नहीं क्या वो तो नहीं कोनो तो आदमी तेजी बा ना
1: तो बोली नहीं तुरे के
0: हाँ वो बोल और कानून के हाथ तो यहाँ बंधल बा उसर ओकर तो कानून में बस बड़का बड़का जीज दे ले बा जीज में हमने के जीज में जो जैसे बोले ला उसने जीजो के चाला ओबिया करे के और जो वकीलवा लड़ाई करे था वो चाला के रिलाई करे के वही में तो मांग करे के कि हाँ हमारा पाते रा के बोले बा दू पिए छोड़ ले बा हमारे जमीन में ढूक गल बा हम मांगत हैं तुरे के पस के तिल किस में जो लाखों सिपाही मेरल या प्रीवी काउंसिल में गरल हुआ बोले बा इसे करे कि तूरे के तो तू का कि घरवा नहीं से बोलबत है एगो लोड नहीं देबे तूरे के दे ही के चला ना तो लापेल करी वो आदमी
1: यानी कि प्राइवेट लाइफ हमी के इतना एकर पर अवती बा इतना फो बा इतना ले बा कि आज आप सकबत एगो घर के सकबत थोड़ दे
0: हाँ एगो चीज का करबा कानून उसे बनाई ले ना यही से आदमी बोले ला सा हमने आप सा दुआ दे कंस्ट्रक्शन एक बार बा प्रोग्राम मिसल में जैसे फिटिंग हुए ला आई के दुआ दे कंस्ट्रक्शन जाने ला मॉरिशस में बहुत सा आदमी घर बनावेला घर बनावेला एगो प्लान नहीं बा मैं प्लान भूल जा पेमी नहीं बा
1: मेरा प्रेमी के घर
0: बिना प्रेमी के घर बनावेला एक बार आदमी कब भर सीमा में बनावता एक जहाँ ओपन बा तब जब मजे है जो ऑफिशियल हुआ काम करेला सिपा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल म्युनिसिपाली में तो जाना था ना कि ये मंगले बैगो है मैं जाने ला एक बार आदमी मजे का सोचेला अरे घर हुआ तो हम जो बनावते हैं एगो घर बा अगाड़ी कोई विजिटे करे आई तो नहीं लौकी ओके जो हम बनावते हैं पाछे वो सोचेला कि वो में हमके नहीं चाहेला है प्रेमी वो सोचा था मेकअप

0: आवेला एक दाई नहीं देखो तो एगो बड़का दूसरा प्रॉब्लम आदमिया जो पाछे रगल बा ऐसा एगो कर दिल बागो मिराज डाल दिल बा कि पनिया सब हुए ब्लोके हो जाला आली तो हिया ओकर कुमा जे नहीं बा एगो पेमी पसीने अप्लाई कर लग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ना ला मेरी में तो अब कानून बोले ला कब नहीं बा एगो घर तो चाहे ला एगो पेमी के कुमा जे मांगे के हुआ कि तू कंस्ट्रक्शन करत हो सर और ओकर ऑफिशियल आके दिखे ला हुआ कि कौन ची करत आई कैसे मजे बना हुआ था इसके जैसे कर प्लौवा बा या प्लौवा के अनमन बराबर नहीं बा एक बार आदमी नहीं देख लो कभी आजूते करेला एगो घर बना दे ले बा आजूते हुआ करे के भी छा के पे अमी नहीं मंगले बा बस वहाँ बना दे ले बा तो हिया ऐसा काम है आपे मजे देख बा एगो आपे से तो हिया जैसे बोले ला उग है कमाई लफने तो वा कमाड़ी आ कमाड़ियो भी बा है
1: कमाड़ियो बा
0: हाँ कमाड़ियो भी बा तो ओके अरे कमाड़ियो से सक बा देख बे तो नीचे रही तो ऊपर तो रहता लेता जुआ से तो देखा था सिगों फ्लो फर्स्ट फ्लो वा में ना जे नीचे से कुमाजे नहीं बा कमाड़ी तो हाई हाई से जी लफने नहीं बा तो कमाड़ी बा ना आदमी को कंवड़ियों से भीरी करके खोल के कंवड़ी अपन लूप से लेके कुमा जो आदमिया के देखा था उखा करता पर थोड़ी दो में करेला
1: नहीं
0: लौकाता घरवा में नहीं बा कितना आदमी के घर बा अभी देख अभी तक ताजिशो हो गल बा पहले फताक रहल फताक निकाल के तोल रहल तोल निकाल के अभी तक देख रहा बेतों के ब्लोक के डाले वेल सर एक बार आदमी बा ओकर लिए मुआया नहीं बा अभी के लिए कोनो तो का कर ले मेरा ही दल ले बा बेचारा मैं दुए गो ब्लोक में छह गो ब्लॉक के वो मजे हई मेरा ही नहीं दुए गो ब्लॉक पैसा नहीं बा बान आकसे विवा तो बान लौका था हुआ ना तो अब सिर भी करता औसे वो आदमी ये बोलन सर आदमी झा का झाँकत हुए आदमी आके दिखेला दूसरे आदमी आके का करता वो अपन नहीं देखता ओकर कुमा जब प्रॉब्लम दूसर के प्रॉब्लम भी ये करता दूसर के चल चलन देखता ओकर घर में जब वो के कानून देवेला ओकर लावी पुईवे जैसे करे के चीजों के ओकर घर में ये देखेला एगो बड़ी है पूता चीज है अली जैसे बोल सब पछिला एगो आदमी के कब एगो एगो केस ऐसे हो गल गाय ओके चाहे लग लाखों के एगो रिक्लाम में करे के कि ओकर लावी पुईवे वियोले हो गल बा अब ओ खातिन ओकर रेपिटेशन बिला जाला एक बार आदमी नहीं देखला जैसे ओ खिरिया के विश्व अफीन बदले तो शुरू करब से नहीं फिने वेला जैसे कि जैसे होला बेचारी है कुमार अनमन अपन घर में चल चलन करता तो वो आदमिया जाना जिक खूब है करता उस की फिल्में करके दूसर चैनल में वो भेजे चारों बगल यहाँ ओकर संगतिया के बोले बोली के बोली नहीं जाने आदमी कैसे बतियाला एक बात होकर से ओकर संगतिया के बोले अरे जाने ले फलना के है मरम वो उसे करता घरवा में चलता है देखबे ऐसे करेला तो बोले ना तू कैसे जाने बोले आप तो क्या बताईला अब ओकर लुपवा में या ओकर मोबाइल हो में जैसे मसले अब ओके बताई बोले हई हाँ देखा का हुआ था अब वो बोल वो जाके दूसर से बोली
1: अगर वो कैसे जन विदेवा में सासवा जब लीक हो गल सब कोई अवती कर देला तो हर जगह दे देलन सा तब गड़बड़ हो जाला
0: हाँ तब कर लावी प्रीवे जोन कानून बोले ला हर आदमी के चाहे ला एगो लावी प्रीवे और हमने के चाहे रिस्पेक्ट करे के एगो आदमी के लावी प्रीवे अब वही लावी प्रीवे वा के हमने एगो चीज करी ला सा कुंजी को से सब आदमी के जना दे ला सा तो ये कानून मना करेला
1: ये हमने के राइट ऑफ प्राइवेसी है हमने के जो निजी जीवन बा उकर में कोई के अधिकार नहीं बा कोई क्या के कुछ बोले के या तो फिर वीडियो बनाए के या तो फिर फोटो खींचे के चलो एक बारे में ढेर बतेली जाता वकील जी हमने के कार्यक्रम आज के यहाँ पर समाप्त हुआ था बहुत बहुत धन्यवाद बहुत कुछ जननी जाए इतना कुछ बतिया दिला बोल दिला हमने के अब जाके देखब तक एक खिड़की के कर आगे बा चला बहुत बहुत धन्यवाद तोरा
0: शुक्रिया
1: और जैसे बोला मातृ दिवस के अभी अवसर आवा था अभी समय आवा था ना तो सब मालूम के जैसे बोला कि मातृ दिवस के अवसर पर शुभकामना तो प्रिय श्रोता लोग हमने की प्रिय दर्शक लोग हमने के जो कार्यक्रम बा आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुआ था उम्मीद करते थे कि आज हमने की कार्यक्रम से ढेर कुछ सीख ले हुआ जा ढेर कुछ जन ले हुआ जा अब अगले शुक्रवार के को और कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर हो जा अभी के लिए शुभ दिन नमस्ते
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3
3: माँ
4: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार
3: अपनापन और

0: पूरा संसार बसता है।
1: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
2: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
0: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
2: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: oh,

समाचार में एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत इंडोलॉजी विभाग द्वारा आज शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आयुर्वेदिक पाक कला और आहार विज्ञान यानी कि डायटेटिक्स के पाठ्यक्रमों के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही इंडोलॉजिकल होराइजन्स न्यूज लेटर की दूसरे संस्करण का औपचारिक शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम में मौजूद विशेषज्ञों ने संतुलित और स्वस्थ जीवन के लिए एक पारंपरिक ज्ञान और आयुर्वेदिक सिद्धांतों की ओर लौटने के महत्व पर प्रकाश डाला। सेंट्रल एलएसटी बोर्ड के लिए बिजली चोरी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। इस वर्ष सामने आए मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीबी ने अपने नियंत्रण और निगरानी तंत्र को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। बोर्ड अब बिजली नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक कड़े निरीक्षण और तकनीकी उपाय

0: अपना रहा है। इसके साथ ही सीबी ने एक जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया है ताकि लोगों को बिजली चोरी के दुष्परिणामों के बारे में बताया जा सके और इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सके। लिसे लाबूदोने और लिसे दे मस्कारेन के छात्रों द्वारा तैयार किया गया एक डॉक्यूमेंटरी प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को उजागर करता है। इस 20 मिनट की फिल्म में युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने का मजबूत संदेश दिया है। डॉक्यूमेंटरी का उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों के बारे में संवेदनशील बनाना और ये याद दिलाना है कि पर्यावरण की रक्षा आज और आने वाली पीढ़ियों दोनों के लिए अत्यंत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध समाप्ति और समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन अभी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि समझौता कब या होगा भी या नहीं। इससे पहले अमरीकी अधिकारियों ने बताया था कि दोनों देशों के बीच एक प्रारूपिक समझौते पर सहमति बनी है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, लेकिन इसे अंतिम मंजूरी ट्रंप और ईरान के नेतृत्व द्वारा दी जानी बाकी है। उधर यूक्रेन सीमा के करीब स्थित रोमानिया के गालाती शहर में एक रूसी ड्रोन रिहायशी इमारत से टकरा गया। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस हादसे में दो लोग घायल हुए हैं। इंस्पेक्टोरेट फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस ने बताया कि ड्रोन का पूरा विस्फोटक पेलोड फट गया जिससे इमारत की 10वीं मंजिल पर आग लग गई। आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक आग बुझाने के दौरान करीब 70 लोगों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद और नमस्कार।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: RM3 Radio.
1: चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है।
2: आपकी चिट्ठी मिली, आपकी चिट्ठी मिली। रेडियो मनोरंजन पर आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का, सभी दोस्तों का दिल की गहराई से हम स्वागत करते हैं RM3 रेडियो पर। मैं हूं रत्ना, आपका साथ देने आ पहुंची हूं अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक। और इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 4:08। शुक्रवार की शाम है, 29 तारीख, मई महीना। हम कह सकते हैं कि मई महीने का आखिरी शुक्रवार। और इसी के साथ जी हाँ, मई महीने का जब अंतिम रविवार नज़दीक होता है तो हमारे लिए बहुत ही ख़ास दिन होता है, क्योंकि इस दिन हम मनाते हैं मदर्स डे। पूरे मॉरिशस भर में इस वक्त कह सकते हैं कि बाज़ारों में भीड़ लगी हुई है, और मम्मी के लिए क्या ख़ास ख़रीदारी करनी है इस पर बहुत ज़्यादा उधेड़ बुन में कई सारे लोग काफ़ी दिनों से दिन बिता रहे हैं। पर चलिए, ये भी एक खुशी का मौका है जहाँ पर हम कुछ ना कुछ तरीके से अपनी मम्मी को खुश करना चाहते हैं। और आज के इस सेगमेंट में जी हाँ, जहाँ आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में हमारे पास कुछ ऐसे खत आए जो खासकर मम्मी के नाम लिखी गई छोटी छोटी कविताएं, छोटी छोटी बातें, जिसे हम ज़रूर आज के इस कार्यक्रम को स्पेशल बनाने के लिए शामिल कर रहे हैं। और यहाँ पर किसी ने एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज भेजा है कि जब माँ होती है, जब तक माँ होती है तब तक एहसास नहीं होता, पर जिस दिन से वो नहीं होती हर पल उसी का एहसास होता है। जब तक मुंह में निवाले डालती है उसके एहसान का एहसास तक नहीं होता, और जिस दिन साथ छोड़ जाती है हर निवाले की पुख्ता याद आती है। चिढ़ होती थी जब हर बात पर उसकी डांट से खत्म होती थी, वो जिंदगी से रुखसत क्या हुई हर पल अब उसी डांट की याद आती है। मचलने से संभलने तक के सफर में जिसने अपने हर गम को भुलाया, मेरी दुनिया मेरी सांसों को संभाला, हर पल उसी की याद आती है। माँ का वजूद होता ही कुछ ऐसा है, चाहो ना चाहो उसका एहसास बना रहता है। जिंदगी के बिखरते पलों में जब अपना साया भी साथ छोड़ जाता है, बस यही एक वो अनमोल एहसास है जो हर पल साथ निभाता है। ये बहुत ही मुश्किल एहसास है, क्योंकि मैं समझती हूँ हर कोई इस एहसास को जीता है। एक ना एक टाइम पर ऐसा एक समय आता है जब हम अपने माता पिता से बिछड़ते हैं, जब अपने माता पिता का साया हमारे सर से दूर होता है, तब जाकर हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया है। यहाँ पर एक और चिट्ठी मैं शामिल करना चाहूँगी। आप लिखते हैं कि जब छोटे थे तो बहुत ज़्यादा शरारत करते थे, बहुत ज़्यादा खेल कूद में मशगूल रहा करते थे,

जब भी मम्मी डांट कर कहती थी कि बस करो पढ़ाई करो, तब हमारा मन और भी ज़्यादा गुस्से से तिलमिला उठता था। हमेशा मन में यही गुस्सा रहता था कि क्यों हमेशा मम्मी पढ़ाई के पीछे लगी रहती है, क्यों हमेशा मम्मी डांटती रहती है, ना कभी कुछ मांगो तो हमेशा कहती है अभी नहीं बाद में दिलवाएंगे। जब भी कहते थे कि मम्मा आज चॉकलेट खाने का बड़ा मन करता है, तो मम्मी कहती थी आज नहीं बेटा कल खरीद कर दूंगी। तब जाकर लगता था कि मम्मी से बड़ी दुश्मन इस दुनिया में मेरी कोई और है ही नहीं। जब मम्मी से कहते थे कि मम्मा बाजार में एक बहुत नई फ्रॉक आई है दिलवा दो, तब भी हर बार मम्मी यही कहती थी कि इस महीने नहीं अगले महीने दिलवाएंगे। हर बार बहाने बनाती है मेरी माँ, और यही सोचकर मैं बहुत ज्यादा नाराज हो जाती। अपने साथ जो मेरे दोस्त हुआ करते थे, उनको हर रोज नए कपड़ों में देखकर मुझे हमेशा ऐसा एहसास होता था कि काश मेरे माता पिता भी उनके माता पिता की तरह होते। आज जब हम बड़े हो गए, आज जब माँ हमसे दूर हो गई, आज जब हम खुद माता पिता बने हैं, जिम्मेदारियों का बोझ हमारे कंधों पर पड़ा है, तब जाकर एहसास हुआ है कि कितनी मुश्किल से माँ हमें बहुत ही प्यार से बहला कर फुसला कर मना किया करती थी, पर आज हम उनकी मजबूरियों को समझ पाए हैं कि आसान नहीं होता था उनके लिए, क्योंकि उनके पास पूरे महीने भर के खर्च के लिए भी उतनी बड़ी रकम नहीं हुआ करती थी। पूरे घर को चलाना, पूरे घर का राशन संभालना, घर की ज़रूरतमंद चीज़ों के साथ हमारी सभी ख्वाहिशों को पूरा करना आसान नहीं था उनके लिए। पर हमने कितनी आसानी से ये सोच लिया था कि माँ से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं। आज जब हम बड़े हो चुके हैं, जिम्मेदारी की दुनिया में हमने कदम रखा है, और इसी उधेड़ बून के साथ हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, तब समझ पा रहे हैं कि माँ किस मुश्किल के दौर से गुजरी होगी। पर आज माँ पास नहीं, और दिल यही रोता है कि काश माँ तू आज सामने होती तो तेरे हाथ चूम लेते, तेरे पैर चूम लेते, कि माँ तू थी इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे, तू ना होती तो हमारा क्या जाने क्या हाल होता।

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: आपकी चिट्ठी मिली और यहाँ पर सच में देखा जाए तो माँ भगवान का रूप होती है और किसी ने यूं ही नहीं कहा कि भाई भगवान सभी ओर नहीं पहुंच सकते इसीलिए तो उन्होंने माँ को बनाया। माँ अपने बच्चों का देखभाल करती है, उन्हें खाना खिलाती है, उनका ख्याल रखती है, उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरतमंद चीज़ों को उन तक पहुंचाती है। और सच में देखा जाए तो माँ और बच्चे का जो नाता है वो केवल जन्म तक का नहीं होता, जीवन से लेके मृत्यु तक इस नाते को कोई जुटला नहीं सकता। और देखा जाए तो कहते हैं ना कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो माँ अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ सकती है और वे अपने बच्चों को माँ और पिता दोनों का प्यार दे सकती है। और ये हम नहीं कहते कि पिता नहीं करते, बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे पिता भी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के देहांत के बाद अपने बच्चों की बहुत बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से उन्होंने देखभाल की है। पर आज की कड़वी सच्चाई ये भी देखने को मिलती है कि कई घरों में आपने देखा होगा कि एक माँ अपने बच्चों को इस कदर संभालती है, इस कदर उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, ये आसान नहीं होता। मुश्किलों का सामना करते हुए कई सारी ऐसी माताएं हैं जो आज के समय में भी अकेले बाहर काम भी करती हैं, साथ ही साथ बच्चों को बड़ा करती है, पाल पोस कर बड़ा करती है। और मुश्किलों के इस दौर में उनको उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करती हैं। और फिर भी कई सारे घरों में ये भी देखा गया है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद कई बार जब कहते हैं ना कि रोल प्ले इंटरचेंज होते हैं, यानी अब जब माँ बूढ़ी हो जाती है, बच्चों की बारी आती है माँ को संभालने की, तब वही माँ बहुत ज़्यादा बड़ी बोझ लगती है। कई घरों में तो यहाँ तक देखने में मिला है, देखने को आया है कि कई बार माँ कहाँ रहेगी, किसके घर में रहेगी, इस हद तक लड़ाइयाँ होती है कि भाई हम तो काम करते हैं, हमसे माँ नहीं संभाली जाएगी। और बहुत सारे लोग इन्हीं सारी उधेड़ बुन के साथ एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जहाँ पर माँ को होम में डाल दिया जाता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे सामने ऐसे खत आए हैं जिनको पढ़कर, या कई सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं जिनको सच में पढ़कर ऐसा लगता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। चलिए, आज आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम के माध्यम से हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक और छोटी सी बहन हमारे साथ टेलीफोन के माध्यम से जुड़ी और उन्होंने भी हमें एक बहुत अच्छा ये एक ऐसा किस्सा सुनाया जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला, दिल को बहुत ज़्यादा दुख देने वाला एक किस्सा उन्होंने सुनाया कि जहाँ पर एक महिला जूझ रही थी और उन्होंने एक ऐसे कार्य के साथ वे जुड़ी जहाँ पर उनको आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा, बहुत ज़्यादा वे काम करने लगी और साथ ही साथ दोनों पति पत्नी मिलकर उस कार्य में जुड़े जहाँ पर उनकी आर्थिक परिस्थिति जो थी वो धीरे धीरे करते हुए सुधरती नज़र आई। कुछ ही समय में उन्होंने अपने घर के लिए एक गाड़ी खरीदी और देखते ही देखते तरक्की पे तरक्की होने लगी और ये जो बहन थी उनको बच्चे भी होने लगे। पर जब वे दो बच्चों की माँ बनी तब जाकर उन्हें

पता चला कि उन्हें कैंसर की बीमारी हुई है, स्तन कैंसर की बीमारी हुई है, और एक ऐसी बीमारी के साथ वे जूझते हुए अपने घर का कार्य करती, बच्चों को संभालती, आसान नहीं था, पर ऐसे में भी उन्होंने अपने आप को संभाला, उन्होंने बहुत अपनी ट्रीटमेंट को जारी रखा और धीरे धीरे करते हुए ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, वे ठीक हो गई। पर कुछ समय के बाद वे फिर गर्भवती हुई तीसरे बच्चे के लिए, और जब वे तीसरे बच्चे की माँ बनी, बहुत ही मुश्किलों का दौर था, आर्थिक परिस्थिति तो चलो भगवान की कृपा थी, पर धीरे धीरे करते हुए वे ऐसी एक परिस्थिति से गुजर रही थी जहाँ पर वे अपनी बीमारी के सामने फिर उसे घुटने टेकने पड़े। बेबी हो जाने के बाद, कुछ समय के बाद उनको फिर से ये डिटेक्ट हुआ कि उनको फिर से दोबारा से उनको ये कैंसर लगा है, और ऐसे परिस्थिति में जहां पर उनको परिवार का साथ, परिवार का सहयोग बहुत ही बड़ी चीज होती है, वहां पर उनके पति ने उन पर बहुत अत्याचार किया, और कुछ ऐसा हुआ। कहते हैं ना कि जब कोई इंसान बीमार होता है और परिवार का साथ मिले, परिवार का सहयोग मिले, तो ये जो साथ, ये जो सहयोग है, ये आपके लिए अंदरूनी दवाई का काम करता है। पर जहाँ पर आपको कुछ ऐसा झेलना पड़े कि आप अपने आप, अपने शरीर से आप जब लड़ाई कर रहे हैं, और उसी समय अगर आपके परिवार के प्रियजनों का साथ छूट जाए, और आपके जो सबसे प्रिय व्यक्ति है वो ही अगर आपका मनोबल तोड़ दे, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करे, आपके साथ मारपीट करे, आपके साथ इतनी हद तक बदसलूकी करे, तो चाहे आपकी दवाइयाँ आप पर असर कर रही हों, चाहे आपके डॉक्टर्स आपकी सहायता कर रहे हों, पर ये जो चोटें हैं जो आपका परिवार या आपके प्रियजन आपके साथ करते हैं, ये आपको इस कदर मार देते हैं कि इसमें से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चाहे आप ठीक हो भी रहे हों, तब भी आपके जीने की आस मर जाती है। और अफसोस की बात यह है कि इन महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। और आप खुद सोच सकते हैं कि इन तीन बच्चों पर क्या बीत रही होगी जो अब तक ये भी समझने की क्षमता में नहीं है कि आगे की जिंदगी उनके लिए कैसी होगी।

0: RM3 Radio.
1: आज बहुतों की आंखें नम है क्योंकि आज माँ का एहसास कम है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के दिन अपने माता पिता को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। पर जब तक जिंदगी है तब तक जिंदगी को आगे बढ़ाना है और दिल के इस दर्द को बस इस एहसास को अपने बच्चों के साथ बांटना है।

listening to RM3 Radio Manoranjan. इस वक्त 4:42 हो चुके हैं और जी हाँ, आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम के माध्यम से. यहाँ पर हमारे बहुत सारे श्रोता इस वक्त हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं. सुदेवी जी है मोका से, लालमाटी से सुनीता जी साथ दे रही हैं. वाकवा से शोभा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं. सुनीता जी कहती है अगर हो सके तो बस हमारे भाइयों और बहनों का नाम ज़रूर जोड़ दीजिएगा. इसी दोज से आपकी प्यारी बहन उमा जी भी साथ दे रही हैं. भाई है कपूर और मोरार बैसे सीमा जी भी साथ जुड़ चुकी हैं. बिल्कुल मातृ दिवस के अवसर पर जब माँ पास ना हो तो भाई बहनों का साथ ही लगता है जैसे माँ हमारे पास ही है. इसीलिए कहते हैं कि बस वो एक रिश्ते को, वो एक जज्बात को जिंदा रखिए. कई बार ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ इतनी बड़ी बन जाती हैं कि हम अपनों को भूल जाते हैं, अपनों से दूर चले जाते हैं और फिर जाकर हमें एहसास होता है कि इस दुनिया में हम जिंदगी में आए तो सही पर लेकर क्या गए. कुछ भी कह लो, मातृ दिवस के अवसर पर हम ज़रूर बचपन की उन यादों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत दिल से याद करते हैं, क्योंकि वो एक समय था जब हम घर के आंगन में खेला करते थे और हमेशा माँ की वो बातें, कई बार माँ का वो डांटना, वो फटकारना, वो हमेशा याद आता है. और आज भी जब हम अपने माँ के घर जाते हैं, भले माँ ना हो पर उस घर को देखकर वो बचपन की यादें ज़रूर ताज़ा होती है. तो बस अच्छी मेमोरीज बनाइए, अच्छी बातों को हम जीते हैं और अच्छी बातों को ही याद लेकर चलते हैं. बस यही है ज़िंदगी. और इसी के साथ चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो सोना मोहापात्रा ने गाया है, ये आपके नाम हम ज़रूर करना चाहेंगे.

घर याद आता है मुझे, और सच में आज बहुत लोगों की आंखें नम हैं। यहाँ पर हमारे साथ सरिता जी भी काटोपोन से जुड़ी है, कहती है हर साल बस यही एक वो दिन है जब भी आता है बहुत रुला के जाता है, और क्या कहें, बस ये एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा मौका है जहाँ पर हर बच्चा अपनी माँ की गोद में अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा याद करता है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम इस मोमेंट को कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना कि जब हम अपनी माँ की उंगली पकड़ के चला करते थे, पर आज हम इतने बड़े हो गए हैं। कई घरों में ये भी देखा गया है कि माँ अगर कुछ कह दे तो बच्चे फट से माँ को ये भी कह देते हैं कि माँ आप नहीं समझेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, आप इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, आपको ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी नहीं आएंगी। पर बेटा ये भी तो सोच लो, ये भी तो समझ लो कि वो इतनी समझदार नहीं थी तब भी उन्होंने आपको इस लायक बनाया, इस कदर आपको बड़ा किया कि आप इन सारी चीज़ों से, इन सारी तकनीकों से आप रूबरू हो सकें। वो खुद नहीं सीख पाई, पर उन्होंने आपको कभी इन सारी चीज़ों से सीखने के लिए कभी आपको नहीं नकारा। और आज जब मौका है उन्हें सिखाने का, उनके साथ थोड़ा पेशेंस रखने का, आप खुद सोचिए, आप जब माँ आपके मुंह में निवाले डाला करती थी तो घंटों तक आपके साथ बैठकर आपको बहला फुसला कर आपका पेट भर जाए तब तक वे आपको खाना खिलाती थी, आपकी माँ ने आपको कभी नहीं धुतकारा। पर आज आप थोड़ा सा समय अगर माँ के लिए निकालना पड़े तो ये हमारे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको सारी बातें समझ नहीं आती, समझने में कुछ ज़्यादा वक्त लग रहा है, कुछ ज़्यादा देर लग रही है, कई बार हर बार आपको दो बार तीन बार चार बार पांच बार रिपीट करनी पड़ रही है। आप सोचिए जब आप छोटे थे तो माँ आपको एक ही बात कितनी बार रिपीट करके बोला करती थी, पर उन्होंने कभी इस बात को लेकर नाराज़गी नहीं जताई। हम कितनी जल्दी कितनी आसानी से हार मान जाते हैं, है ना, कितना मुश्किल हो जाता है। चलिए मातृ दिवस आ रहा है, और बस हम कहते हैं ना कि माँ को हमने एक छोटा सा तोहफा दे दिया, मम्मी के लिए अच्छी साड़ी खरीद ली, मम्मी को अच्छा खाना खिला दिया, और फिर मंडे को फिर लग जाएंगे काम पर, फिर कौन पलट के देखने वाला है कि मम्मी ने ठीक से खाना खाया या नहीं, मम्मी ने अच्छे कपड़े पहने या नहीं। बहुत कम लोग अपनी माँ के लिए समय निकाला करते हैं और एक दिन के लिए सिर्फ ये त्यौहार को मनाते हैं, बस फिर भूल जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि ये एक दिन का प्रोग्राम या एक दिन के लिए फेस्टिवल नहीं है, माँ है तभी तो ज़िंदगी है, माँ नहीं तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है।

दोस्तों आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर समाप्त करेंगे और आपको याद दिलाते चले 5 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम जारी रखा गया और इसी के साथ 5 बजे आप मिलेंगे रोशन हरनाम जी से जो लेकर आएंगे कलाकार के बाद और आज के कलाकार कौन होंगे बस उसके लिए करिए थोड़ा सा इंतज़ार और इसी के साथ यार रहमान और शशा त्रिपाठी की आवाज़ में रखा हुआ ये आखिरी गाना 2017 की मूवी मॉम और ये थी श्रीदेवी जी की आखिरी मूवी इस फिल्म का ये आखिरी गाना और इसी गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं फुल स्टॉप लगाते हैं आप सभी ने दिल से साथ दिया थैंक यू सो मच फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति नमस्कार शुभ संध्या आप सभी को

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: अभी अभी आप लोग सुन ले जा बहुत ही भावुक प्रोग्राम आपकी चिट्ठी मिली अपन सखी रत्ना जी के द्वारा और आज स्पेशल मदर्स डे पर आधारित ही प्रोग्राम के हम जानी ना बहुत कोई सरल हुआ जात चलो घड़ी मिलाते चलो 5:01 हो गल बातें
2: कलाकार की बात कार की बात
1: नमस्कार प्यारे श्रोतालोगन

हम है तुहर सेवक रोशन और यह तुहर मनपसंद और एम फ्री रेडियो मनोरंजन। और सभी माता लोगन के एमबीसी की ओर से शत शत वंदन।

0: साथी लोगन आज ता हमनी के जोन मेहमान हुवन कलाकार हुवन अनुपस्थित हुवन कोनो कारण से त चला जब कलाकार नै आवेलन त हमर पास प्लान बी त पहले से ही तैयार बाटे तो लोग जोन हमर साथ हर सप्ताह देवेला जा कब कामय बजा तो लोगे तो हमनी के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हुआ जा तो चला एगो छोटा सुन खेल खेलब जा और प्रश्न और उत्तर के खेल है तो चला पहल का गीतवा सुना जा माता के प्यार और स्नेह के ये गाना के द्वारा भावना जागृत करेला सुना जा एकर बाद में पहल का प्रश्न तोहर सेंगे हमनी अवश्य पूछब जा तो चल हमनी से जुड़ल हुआ जा रेडियो मनोरंजन
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: कलाकार के बाद

ऐसन मन छू देला के ई गीतवा का तोहरा हम बोलब शब्द ही तक कम पड़ गल बा त चला पहिलका सवाल जरा गौर से सुना जा

एगो वो सन माहुवन जो सबके जगह ले सकियन जा बकीर उनकर जगह कोई और नहीं ले सकी ता बाद बा एकदमे सत्य बाद बाई ता बतावा हमनी के कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जनरलन एगो बढ़िया अंग्रेजी कवि एवं नाटककार रलन जा उ एगो बहुत ही प्रभावशाली कठन बोले रलन और तोहरा आप लोगन के खाली एगो शब्द ढूंढे के बा उ कठन से ई कथन जो ना हम भोजपुरी में बोला प जरा सुना जा और हमनी के बताओ कि कौन शब्द मिसिंग बा दुनिया के सब जोन प्यार बातें उ होजे से शुरू होला और उ होजे से समाप्त हो जाला उ है कौन शब्द है जरा जल्दी जल्दी नंबर वहाँ मिला हुआ 4-0-2-8-0-7-0 जोन रॉबर्ट ड्राउनिंग जी बोले रलन कि दुनिया के जोन सब प्यार बातें उ हौजे से शुरू होला हौजे से समाप्त भी हो जाला उ कौन शब्द है जल्दी जल्दी नंबर वहाँ मिला हुआ 4-0-2-8-0-7-0 तब तक ई गाना तो हर खतीर तैयार हो गल बा जरा गौर से सुना जा और ई गाना क्या आनंद ला और जवाब भी ढूंढा जा

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. कलाकार की बात, कार की बात।
1: कलाकार के बात रोशन के साथ आज हमने के कलाकार नए आल हुआन परंतु इतना सारा कलाकार लोग फोन करत हुआन सही जवाब दे कतिर हम तो हर से पूछ ले रही कि दुनिया के सब जोन प्यार बातें उ होजा से शुरू होला होजेस पर समाप्त भी हो जाला ई रॉबर्ट ड्राउनिंग जोन रलन अंग्रेजी नाटककार लन ई बात बोले रलन और सही जवाब देलन महोदया से इंदिरा जी और साथ ही साथ प्रीति जी घोंदिया नोडवेस से और वो एगो ऐसन श्रोता बहमनी के साथ वो भी सही जवाब देलन और वो अभी ऑन एयर हुअन हेलो

0: हेलो रोशन भैया, नमस्ते।
1: नमस्ते वीना जी, कैसे हो आजा?
0: हाँ, हम एकदम ठीक हैं और यही आशा करते हैं कि आप भी परिवार सहित सकुशल होई बजा।
1: बहुत धन्यवाद वीना जी, तू ते खुश रहे लजा।
0: हाँ,
1: तो तुहार एकदम स्वागत बा है जा।
0: बहुत धन्यवाद।
1: तो हमने के बतावा कि वो कौन जवाब है जो हम तुहार से पूछत हैं अभी?
0: तो जवाब तो हमारे ख्याल से है ये बात जो उनकी माँ ही शब्द से शुरू होला, यानी कि माँ की ममता।
1: ममता, बिल्कुल सही जवाब दे रहा, ममता ही सही जवाब है वीना जी। और तोहरो सब के हम बोलत हैं बधाई। और इंग्लिश में ओकर जो कोट है वो ही प्रकार है, मदरहुड ऑल लव बिगिंस एंड एंड्स देयर। ममता ही जो न सब प्यार की जननी होवन, उनकर त्याग तपस्या और ही निस्वार्थ प्रेम ही माता के देवी के दर्जा देवल जला है ना।
0: तो बस यही यही कोटेशनवा में तो पूरा शब्द समागल बा रोशन भैया।
1: हाँ,
0: माँ के विषय में जितना भी बोलब जा वो कम ही बा।
1: बहुत अच्छा। तो मातृ दिवस के अवसर पर हमने के तनी बात बताओ, तनी कुछ बताओ हमने के संदेश द मातृ दिवस के अवसर पर।
0: हाँ, तो हवे हम बोला था नी कि माँ शब्द जुनबा, माँ जुनबा वो ओकर स्थान कोई दूसरा कोई नहीं सकी लेवे।
1: हाँ, बिल्कुल सही दिया।
0: अपन में अनुपम अद्वितीय बा वो।
1: बहुत अच्छी बात कर ला बीना जी।
0: बहुत भारी शक्ति है माँ में, सहन शक्ति है, धरती से उनका उपमा दिवल जाला। जिस प्रकार धरती सब कुछ सहन करेला उसी प्रकार से एगो माँ है। और बहुत त्याग तपस्या से अपन बच्चा लोगन के पूरे परिवार के देखभाल पालन पोषण, और जैसे बोल जाला अपन बच्चे के कभी भी दुख में नहीं सकेलन दिखे। चाहे बच्चा उनका चाही नहीं चाही, वो हमेशा अपन बच्चा लोग के वो बराबर प्यार देवेलन। वो कभी भी दूजा नहीं करेलन, चाहे उनका कितना भी बच्चा हो संतान हो सबके बराबर देखेला, सबके लिए बराबर उनका हृदय में से उसी तरह से ममता बहेला।
1: बहुत बहुत धन्यवाद वीना बहन, इस सब शुभ विचार के लिए। बहुत ही सही बात बोला, सत्य बाह सब बतवन में। ऐसे ही अपन विचार व्यक्त करते रहिए वीना जी, और बधाई हो तो हर जवाब के। और हम जानी ला है प्रोग्रामों के तू बेहद पसंद करेगा।
0: हाँ हाँ, बेहद। और जब हम सुननी कि आज एगो कलाकार नया तो अब हम आज तो हमने के दसो उंगरी घीमी में बा दिमागी कसरत करे के बा।
1: हाँ, जान के ले जा,
0: बहुत मजेदार का
1: जान के ले जा। जब कलाकार लोग नया वेलन तो हमर रोज से प्रश्न उत्तर होला,
0: मन प्रसन्न रहेला। लेकिन जब नया वेलन जा तब भी और भी, क्योंकि हमने के पूरा पूरा पार्टिसिपेट करे के मौका मिलेला।
1: धन्यवाद बीना जी, बहुत धन्यवाद तोहरा।
0: बहुत धन्यवाद आपके भी, और आपके भी परिवार सहित सबके शुभकामनाएं देवत हैं मातृ दिवस और पितृ दिवस के अवसर पर।
1: धन्यवाद और तोहरो मातृ दिवस अभिनंदन।
0: बहुत धन्यवाद और शुभ संध्या।
1: शुभ संध्या आपको भी। तहिरलन बीना जी तेहूर से, और बहुत बहुत धन्यवाद होकर शुभ विचार के लिए। तो चला दूसरा प्रश्न पूछे के बखत चलाल। और दूसरा प्रश्न जो है द्वापर युग की ओर हमनी के ले जाए। महाभारत काल में माता के बहुते मान्यता देवल जात रहल। इत मानवता के आरंभ से लेकर आज तक मान्यता बरकरार बाते। ये बात तो मन बजा। तो आप लोगन के जवाब दे के चाही कि छह पुत्र लोगन के माता और दूसरी तरफ 100 पुत्र लोगन के माता, दोनों के नाम का रहल महाभारत काल में। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न हो गल। तो जवाब दे हमनी के 4028070 पर की जोन 6 पुत्र के माता रहलन ओकर नाम का रहल, और जोन 100 पुत्र के माता जी रहलन ओकर नाम का रहल। जल्दी जल्दी नंबर वहाँ मिला हुआ 4028070। तब तक माता पर ई गाना सुना जा।

RM3 Radio. Radio. कलाकार के बाद

0: की बात।
1: बहुत ही सुंदर सा गाना भी सुन ले जा भोजपुरी में। भोजपुरी हमनी के मातृभाषा और जो न सवाल हमनी कर ले रली जा उ महाभारत पर आधारित रहल छे पुत्र वाला जो न माता रलन ओकर नाम और जो न सौ पुत्र वाला माता रहल ओकर नाम का है। इतना सारा लोग फोन कर लन जा सही सही जवाब देकर। संध्या जी पुआतो पिमो से होन, सरिता जी कटरबोन से, मीरा जी लालमाची से, कानुत समृता जी, शोभा जी वाकवा से और इंदिरा जी मौदालबिया से। देखबा तक खाली महिला लोग भाग लेवत होन, परंतु एगो पुरुष बा उ भी सही जवाब दिलन और उ अभी ऑन एयर होवन। चलो कर स्वागत करी ला जा। हेलो,
2: नमस्ते भाई रोशन।
1: नमस्ते इतरीबिया जुपोस के भाई
2: को जो जो सुन रहे हैं साथ रहे हैं अभी।
1: हाँ तो हर स्वागत बा भाई उदय जी।
2: अभिनंदन
1: मातृ दिवस अभिनंदन। तू रिबिया जुपोस से बात करत हुआ अब उदय भाई हुआ। हाँ तो कौन जवाब दे बा उदय भाई?
2: छह पुत्र वाला माता कुंती है।
1: छह पुत्र वाला माता कुंती है।
2: सौ पुत्र वाला माता गंधारी।
1: हाँ हमेशा हम नहीं बोली ले जा पांच पांडव की माता माता कुंती, परंतु अरे और पुत्र रलन जा है ना सूर्य पुत्र। हाँ दानवीर करण जी, सूर्य पुत्र करण दानवीर।
2: सीरियल
1: महाभारत। हाँ बिल्कुल अपन संस्कृति के खूब जाने ल तू। बहुत बढ़िया। रामायण महाभारत भगवत गीता
2: शिव शक्ति चलेगा ना।
1: बहुत अच्छा उदय भाई। और कौरव के जो माता रलन, दुर्योधन दुशासन वो सब के माता रलन माता गांधारी जी जो हमेशा देखबो के त आंख में पट्टी बंधले रहल ओकर पति खातिर का नेत्रहीन रलन धृतराष्ट्र जी, परंतु आंख में पट्टी बनब त दुर्योधन और दुशासन लेका लोग हो जाला। चाहेला गलती सुधारे के लैका लोग के अनदेखा नहीं छाला करे के, नहीं तब बहुत देर हो जाला ना। तो मातृ दिवस के अवसर पर भैया जी हमने के का संदेश दे बाज?
2: संदेश दे हमार दुन माता पिता दोनों गुजर बा अभी।
1: अच्छा।
2: दू बड़ी सोलह माता जी गुजरल तो हम छोटा से जानी ला हमार माता के। हम खुशी के बात से बोला थे दिल से कि हम याद बात है हम हमारे माँ के गोदी में बैठ के दूध पिया चली ऊपर हमके प्यास लगा रो चली। हमारे माता माता जी हमार रोटी पकाओ चले नीचे बैठ के बेलना चौकी से हम गोदी पर बैठ के तो हम मुगर तीन चार बरिश लगी हम उतना बरिश लगे बदल ला से हम माता जी के संगे रही जब ले गुजरलन
1: ओकर सेवा सत्कार करते लला।
2: हम ओकर संगे
1: बिल्कुल। हां
2: नौ नौ गो लेका से
1: हैं नौ लेका से, परंतु सब नौ लेका के एक एक गो आंख से देखे के तकरन।
2: हां और जब गेली लड़की देखे जब बोला देखो गिन बोला जब गेली लगरी के लड़की को देखे तो माता और पिता के सिर्फ वही लोकनी सब कैसे बोल जाला।
1: हाँ लोकनी। हाँ
2: माता और पिता माता जी और पिताजी के लिए लेके कर ली।
1: अच्छा अच्छा बहुत अच्छा।
2: हाँ बोली हम एक छोकरी को सुनाई
1: तो तोहर लव मारिज है तब। बहुत बढ़िया उदय भाई अपन माता के
2: हमार भाई माता पिता हमने के हम के लेमन में लग वो ही हमार भगवान है पहला।
1: बहुत अच्छा। सबसे जो पहला
2: अच्छा रोज के आरती कर लीला।
1: बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छा नेक विचार बा तुहर उदय भाई। अपन माता के पहला गुरु माने रह हर एगो इंसान के जो पहला गुरु हो तो उतर माता ही हो न।
2: अच्छा
1: बहुत धन्यवाद उदय भाई अपन विचार प्रकट कर ल। बहुत बहुत धन्यवाद तुहरा।
2: अच्छा
1: ओके धन्यवाद। तई रहलन जुपोस के उदय भाई। तो चलो हमने प्रश्न के जो सिलसिला है ओके आगे बढ़ाब जा। अगला सवाल एकदम ही आसान बाटे। हिंदी सिनेमा जगत में सबसे प्रसिद्ध माता के नाम बताओ जेकर भूमिका लाजवाब रहल बड़े बड़े अभिनेता लोगन के माता के रोल निभैलन जैसे मिलियनम स्टार अमिताभ बच्चन जी के माता के रोल निभैलन धर्मपा जी धर्मेंद्र जी ओकर बेटा जोन रहल सनी देओल के भी माता के रोल निभैलन सुनील दत्त और बेटा संजय दत्त के भी माता के रोल निभैलन राजेंद्र कुमार और बेटा कुमार गौरव के भी रोल निभाए और माता के

जल्दी घोड़े पे सवार होके बोला जा कौन महिला कलाकार होन जो न सबसे लोकप्रिय माता के रोल निभाले होन बॉलीवुड सिनेमा में 4028070 और 4028070 चला ई गाना बहुत ही प्यार से सुना जा।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. कलाकार के बाद
1: कलाकार के बाद तो हर सेवक रोशन के साथ माँ बाप के कब्बू ने रोवैया जा कृषि का खूब गाना गैलक तो हर खातिर जोन सवाल रहल ऊ रहल की एगो ऐसन प्रसिद्ध अभिनेत्री रलन जोन ज्यादातर माता के रोल निभैले होवन 80s में 70s में और थोड़ा बहुत लेट 80s में भी ऊ के रहलन और बहुत कोई सही सही जवाब देलन फुलवंती जी पाकुआ से जवाब देलन अनिता जी मोदालबिया से विजय भाई क्लावेत से वास्तु

0: पुल से हाईलैंड से देवी जी पीछे नहीं रलन संध्या जी एक बार फिर पुआ टोपी मौसे जवाब दिलन और एगो ऐसा श्रोता हमनी के साथ बा जेकर जवाब एकदम सही है हो सब जो दोस्त के नाम अभी ले ली तो चला श्रोता के हमनी स्वागत करत हैं जा कुछ हो बाव के व्यक्त करके हमनी के साथ हेलो
1: हेलो नमस्ते रोशन जी
0: नमस्ते कॉटेज की आशा जानू जी
1: हाँ जी
0: तो हर एकदम बढ़िया स्वागत बा रेडियो मनोरंजन में
1: बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे पहले तो आपके हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि आशी कलाकार में आप समस्त माताओं के नाम एगो क्विज करत प्रस्तुत करत जिससे सभी माता लोग जिन अभी किचन में भी हम जो बहुत बहुत हर्ष और खुशी हो गए हुए
0: बहुत धन्यवाद ऐसा ऐसा बात हमने के बतावत हुआ सचमुच आज रविवार के मातृदिवस जग मनाए परंतु हमने के तर रोज के रोज मातृ और पितृदिवस है
1: बिल्कुल और हम शुभ अवसर पर संसार के जितने भी माता हवन तो आप सभी माता लोग के और पिताजी लोग के मातृदिवस पितृदिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना अपन पूरा जानू परिवार की ओर से देवत और खास तौर पर हमर जननी हमर माता जी कुमारी के भी मातृदिवस की हार्दिक शुभकामना
0: बहुत धन्यवाद आशा जी जैते जैते हमनी के बतावा जवाब वा का
1: जन प्रसिद्ध माता के अभिनय कले हवन उनका नाम है श्री निरूपा रॉय
0: निरूपा रॉय जी बहुत धन्यवाद आशा जी हमेशा सही सही जवाब देवे रहा
1: और आप सब लड़का लोग से सब श्रोता लोग से हम अपन ओर से एगो विनती करते हैं इस संसार में सब दौलत से एगो बड़का अनमोल दौलत है वह माता पिता के आशीर्वाद आशीर्वाद पाए खातिर माता पिता के जितना सेवा करब तहर जीवन उतना धन्य हुई
0: बहुत बहुत धन्यवाद ई सब शुभ विचार खातिर आशा जी ऐसे ही बात करते रहिए और ऐसे ही हमनी के प्रोग्राम में भाग लेते रहिए धन्यवाद तहिरलन कॉटेज की आशा जानू जी जो अक्सर प्रोग्राम में भाग ले रंजा सही जवाब है निरूपा रॉय जी तो चला अगला प्रश्न बहुत ही तैयार हो गल बा चला हम तोहर से फटाफट पूछे हमनी त्रेता युग की ओर बढ़त हई जा और हम जानी हमर जो श्रोतागण होवन रामायण में बहुत ही रुचि रखेलन त एगो ऐसन माता के हमनी नाम ढूंढत हई जा जोन माता एगो छोटा सुन कुटिया में रहत रहलन जा एगो वन के नाम रहल चित्रकूट अब त तोहरा याद चलल चित्रकूट वन में एगो छोटा सुन कुटिया में माता विराजमान होरत रहलन रहत रहलन अपन पति परमेश्वर के साथ ऋषि अत्री जी के साथ और बनवास के बखत श्री राम जी और माता सीता जी ओकर से मिले रलन जा उ माता से उ सती माता से और उ माँ ऐसन एगो औषधि माता सीता के देलन जा जेकर से ओकर सुंदरता बरकरार रही तो चला हमनी के बतावा जल्दी जल्दी 402-8070 पर कि उ माता के नाम का है इतना आसान प्रश्न रोशन पूछ लेलक इता सोने पे सुहागा हो गल तो चला जल्दी जल्दी जवाब द और ये गाना जरा प्यार से सुना जा

0: Continuous music. RM3.
1: कलाकार की बात।
2: भाई बहन लोगन, संगतिया लोगन, कैसे हो अचा? हम तो जानिला कि रेडियो सत के एकदम करीब हुआ, काहे कि दिमागी कसरत करे में तू कोनो कसर ने छोड़त हुआ। कोनो कोनो मैसेज भेजत हुआ जा, व्हाट्सएप पर बोलत हुआ, इतना चौचक प्रोग्राम हमनी के संस्कृति के प्रति जागरूकता। बहुत बहुत धन्यवाद तुहर अनमोल संदेश के लिए। तो हमार एगो प्रश्न रहल, रामायण काल में चित्रकूट वन के आसपास एगो छोटा सुन कुटिया में के रहत रहलन ऋषि अत्रि के साथ। ओकर अर्धांगिनी के नाम का है माता अनसुया, जेके बोली ल जा सती अनसुया। और सही जवाब देलन सरिता जी कटरबोन से, अनीता जी मौदालबिया से, आशा जानू जी कॉटेज से, वीना जी त्यागूर से, और एगो ऐसा श्रोता बा जो ऑन एयर ओके हमनी सुनब जा भी, वो अपन जवाब सभी मॉरिशन वासी के सुनाए अपन मधुर आवाज में। हेलो नमस्ते
3: रोशन जी।
2: नमस्ते मोचिदा की राधा जी हो अंजा।
3: हाँ
2: कैसे हुआ राधा जी?
3: हम अच्छा है भैया, आप कैसे हो?
2: हम भी ठीक हैं जी। जब भाई जा हमने बैठ जाए ला जा तो हर मनोरंजन खातिर तो एकदम बढ़िया हो जाए ला जा हमने तो।
3: हाँ अवश्य।
2: राधा जी अपन जवाब द।
3: हाँ अनसुया के पद गही सीता। अनसुया माता।
2: अनसुया माता यानी सती अनसुया जी।
3: हाँ
2: बहुत ही सही जवाब
3: दिया। कान में सीता जी जब वनवास को जालन अनसुया माता सीता जी को दिव्य वस्त्र देवेलन। वस्त्र जो कभी भी पुराना नहीं हुई।
2: बहुत बहुत बढ़िया।
3: बहुत उपदेश देवेलन पतिव्रता धर्म पर, उनका बहुत ही उपदेश देवेलन।
2: बहुत अच्छा, तुहरा जवाब एकदम सही है राधा जी। ऐसे ही भाग लेते रहिए। और तुहरा मातृ
3: दिवस पर भी हम दो शब्द
2: बोला।
3: सभी को मातृ दिवस की बहुत शुभकामना देवत है, क्योंकि माता माँ जो है ना वो खुद

0: स्वयं में अपन आप में परिपति हम परिपूर्ण हम माँ
1: अच्छा।
0: के व्याख्या हम ही नहीं सकब से करे
1: बहुत ही
0: शब्द ही नहीं बा माँ के व्याख्या करे खातिर
1: सचमुच जितना व्याख्या करबो उतना शब्द कम पड़ जाए
0: कम पड़ जाए बहुत ही सबके बहुत बहुत शुभकामना आपको भी आपके पूरे परिवार को भी
1: धन्यवाद राधा जी ऐसे ही आप भाग लेते रहिए शुभ संध्या आपको भी
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।

कौन शब्द से हम तोहरा धन्यवाद करा पर बहुत है धन्यवाद। चला अगला प्रश्न तोहर खतीर एकदम सही एकदम तैयार हो गल बा। वात्सल्य भक्ति एगो ऐसन कथा है जेकर में अनेकों कहानी बाते जोन माता के संतान के प्रति स्नेह और प्रेम के वर्णन करल गल बाते। बतावो हमनी के कि वात्सल्य भक्ति में जोन दो पवित्र माता और पुत्र के नाम जिनका रिश्ता एकदम एकदम अनमोल है एकदम इटर्नल है जैसे बोली ला जा एकदम ज्यादातर बतावल गल बा उ माता और पुत्र के जो लीला रहल ओकर के लेके बहुत उदाहरण देवल गल बा। ओकर जो कथा है ई माता और पुत्र के बीच में बहुत लीला रचल गल रहल। कौन माता और कौन पुत्र के बारे में हम बात करत हैं 402-8070 पर बतावत 402-8070 पर जल्दी जल्दी जवाब द और तो हर खतीर ई गाना जरा गौर से सुना जा।

0: माता ही नैया माता ही खिवैया।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. कलाकार की बात, कार की बात।
0: मातृ दिवस के विशेष अवसर पर आज के हमनी के कलाकार के बात प्रोग्राम आधारित बातें। आज हमनी के कलाकार कोनो कारण से नहीं आए सकलन, तो चल हमनी के दूसर कन कलाकार तब बहुत ही धमाल मचावा थोन फोन पर और थोड़े से एगो सवाल कर रहे रह लीजा कि वात्सल्य भक्ति में एगो माता और पुत्र के बहुत ही वर्णन कर गरबा लोग के बीच में माखन चोर के लीला रहल और कितना कितना लीला अपरंपार जैसे बोली लजा। ओकर जवाब बहुत ही सही सही जवाब दिलन कानूत के अमृता जी, आशा जी कॉटेज से, शोभा जी बाकवा से और देवी जी हाईलैंड से और अमृता जी कानूत से हमनी से तनी बात करियन जा। चला ओकर आवाज में हमनी सुनी ल जाओ के। हेलो,
2: हाँ भैया जी नमस्कार।
0: नमस्कार बहना जी, अमृता जी।
2: हाँ

0: अमिता गामलोल कानत से
1: कानत से बात करत हो ई प्रोग्राम में अक्सर भाग ले वेला हां
0: सर प्रोग्राम बड़ी बढ़िया
1: हाँ बहुत कोई सुने ना
0: हमारे चाचा हाँ क्लाविस से जन बढ़ता ही वैसी
1: विजय बंधन तुम्हारे चाचा हो
0: हाँ हमेशा हाँ हमेशा भाग ले वेला भी
1: अच्छा बहुत बढ़िया
0: प्रणाम करते सबके
1: सबको के प्रणाम स्वीकार करत है सब रेडियो मनोरंजन की ओर से धन्यवाद
0: आपको भी
1: बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही तू भोजपुर में बात करते रहिए और लड़का लोग की बोलिए कि मातृभाषा के भुला के नहीं
0: सत्संग में है रामायण कर जा
1: अच्छा सत्संग में हो जा बहुत अच्छा लगा सुन के बहुत ही अच्छा ओके तो अमृता जी ऐसे ही भाग लेते रहिए मातृ दिवस अभिनंदन तोहरा ओके धन्यवाद
0: धन्यवाद भैया
1: ओके धन्यवाद चले गो अंतिम प्रश्न ई प्रोग्राम में आज तोहर खतीर और फिर से हमने रामायण की ओर कदम रखब स रामचरितमानस या रामायण और श्री राम जी के माता के नाम का है इत बढ़िया आसान बा ई प्रश्न नहीं है माता कौशल्या है श्री राम जी के माता के नाम और वो अपन दोनों जो और माता रलन माता सुमित्रा जी और माता कैकेयी जी के अपन माँ से भी बेहतर समझत रलन जा यह माता के प्रति पुत्र का जो मोह और स्नेह हमने के बताओ कि श्री राम के माता के नाम तो जाने ल जा परंतु ओकर जोन अर्धांगिनी रलन माता सीता जी ओकर माता के नाम का रहल जल्दी बोला हमने के 402-807-0-4028-070 पर जवाब दे

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. कलाकार के बाद
1: कलाकार के बाद रोशन के साथ अंतिम प्रश्न इस प्रकार रहल माता सीता के ओकर माता श्री के नाम का रहल वैसे तो ओके बोली ले जा हमनी भूमि पुत्री यानी ओकर माता के नाम भूमि देवी रहल भूमि से उत्पन्न हो रलन परंतु जो न राजा जनक जी ओकर पिताजी रलन ओकर पत्नी के नाम रहल सुनेना जी सही जवाब है माता सुनेना जी और सही जवाब दिलन मोचिदा के राधा जी आशा जी कोटे जिसे वीना जी त्यागूर से और मीरा जी लाल माटी से और मातृ दिवस के अवसर पर ये रह रहे को छोटा सुन खेल तो है संगे हमने खेल ली जा बहुत ही आनंद प्राप्त कर ली सर साथ ही साथ तोहर से बात होल तोहर जवाब हमने सुन ली सर और तू अपन दिलचस्पी ई प्रोग्राम के प्रति बढ़ेल एकर खतीर दिल से हम तोहरा धन्यवादी हैं तैसे ही भाग लेते रहिए हर शुक्रवार के सांझ 5 से लेकर 6 बजे तक कलाकार के बात हमनी के जो मुलाकात हुई वो कल हुई रेडियो मॉरिशस AM2 के लहर पर खेल खिलाड़ी जहां पर बहुत कुछ होई बहुत प्रश्नोत्तर भी होई और सब तरह के प्रश्न तोहर से हमने पूछब जा और दिमागी कसरत करे के तोहरा मौका मिली तब तक का तोहर से हमने अनुमति चाहत हैं जा और ठीक 6 बजे आप सुनब जा समाचार देश विदेश के और तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि आप लोगन के

0: RM3 Radio.
1: उनतीस मई शुक्रवार के इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सैपिया में आज सुबह 31 वर्षीय एक पुरुष और 24 वर्षीय एक युवती के शव एक गाड़ी में बरामद किए गए। सामूहिक की टीम ने युवती की मौत की पुष्टि की, जबकि क्लिनिक पहुंचाए जाने पर युवक ने दम तोड़ा। दोनों ए बैंक की कंपनी के कर्मचारी थे। बच्चों के आश्रय स्थलों के संचालन की निगरानी के लिए गठित अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी कुछ ही हफ्तों में मंत्रिमंडल के समक्ष एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बात की जानकारी उप प्रधानमंत्री आर्या नवोमागी ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में दी। बिजली की चोरी सीबी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस साल दर्ज किए गए धोखाधड़ी के मामलों की बढ़ती संख्या देखते हुए सीबी ने अपने नियंत्रण साधनों को और मजबूत किया है और बिजली नेटवर्क की बेहतर सुरक्षा के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है। अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत इबोला महामारी के तेजी से बढ़ने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक आपातकाल की घोषणा की है। इसको लेकर न तो कोई टीका और न ही ठोस इलाज पाया जाता है। इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। सैपिया में आज सुबह एक हादसा पेश आया। एक गाड़ी में कौचमीतिया रहने वाले 31 वर्षीय जॉन अम्बालेगी नौ

0: विक सालेस और नोवेल फ्रांस रहने वाली 24 वर्षीय मनीषा बधू के शव एक गाड़ी में पाए गए। गाड़ी एक नवनिर्मित मकान के पास आंगन में पार्क थी। ये दोनों लोग एबन स्थित ट्रिडन कंपनी के कर्मचारी थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक युवती की मौत की पुष्टि घटनास्थल पर पहुंची सामी की टीम द्वारा की गई, जबकि जॉन वालेरी नोविक सालेस के परिवार वालों ने उसे सी के अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हुई। इस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई है। अन्य खबरों में, बच्चों के आश्रय स्थलों के संचालन की निगरानी के लिए गठित अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी कुछ ही हफ्तों में मंत्रिमंडल के समक्ष एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बात की जानकारी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर्यन नवामारी ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के पीएनक्यू के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि गंभीर संबंधी समस्याओं वाले बच्चों को रखने के लिए एक विशेष ढांचा स्थापित करना और कानूनी मामले से जुड़े बच्चों के लिए एक अलग ढांचा स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। इस पर प्रस्तुत है ये रिपोर्ट।
1: The objective of the committee was to come up with concrete solutions in addressing the existing gaps concerning children with serious behavioral concern and those in conflict with the law. As at date, 4 meetings have been held. A first meeting was held on 4th February 2026, at which the stakeholders present were requested to submit proposals aimed at addressing loopholes in the current legislative framework, policies, and infrastructural arrangements. During that meeting, it was agreed that there was an urgent need for an infrastructural facility specifically designed to cater for CSBC, separate from children who are in conflict with law. Thus, consideration would be given to the requisite rehabilitation youth center infrastructure and trained staff being dedicated to an institution which would centralize service delivery for CSBC. Madam Speaker, a fourth meeting of the committee was held on 21st May 2026, and it was proposed that an interim report be drafted and government be apprised of the work conducted by the committee.
0: राज्यसभा में आज विपक्ष नेता की पीएनक्यू के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन पर बहसें जारी रखी गईं। सदन के दोनों पक्षों के सांसदों ने इस पर अपने विचार दिए। इनमें विपक्ष के वी पादरियां जीवाल शामिल रहे। उन्होंने मांग की कि कमीशन की फाइनल रिपोर्ट देश साल में आम की जाए। सांसद राम इतवड़िया ने सार्वजनिक कर्ज के लिए एक सीमा निर्धारित करने का एक क्लोज शामिल किया। और अन्य खबरों में, अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत इबोला महामारी के तेजी से बढ़ने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक आपातकाल की घोषणा की है। इसको लेकर न तो कोई टीका और न ही ठोस इलाज पाया जाता है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ इन पड़ोसी देशों में भी इसके मामले सामने आने लगे हैं।
2: अफ्रीका में एक बार फिर तेजी से फैल रही जानलेवा इबोला महामारी से दुनिया के समक्ष एक नई स्वास्थ्य चेतावनी आ खड़ी हुई है। इससे कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 150 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं और अब युगांडा सहित अन्य पड़ोसी देशों तक ये वायरस तेजी से फैल रहा है। WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसुस का कहना है कि औपचारिक मामले कहीं ज्यादा हो सकते हैं और कम समय में ही इसकी संख्या दुगुनी होने का खतरा है। इसको ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 मई को ही एबोला को वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित कर दिया था। पिछले कुछ दशकों में कोंगो में कई बार ये महामारी फैली है और 17वीं बार इसका फैलाव वहाँ हुआ है। पहली बार 1976 में एबोला का पहला मामला दर्ज किया गया था। मात्र 5 महीने पहले ही कोंगो में पिछली एबोला महामारी समाप्त हुई थी और इसके नए मामलों को देखते हुए वैश्विक स्तर पर चिंताएं

0: बढ़ गई है। इसके वायरस के नए म्यूटेशंस को लेकर अभी तक दुनिया में कोई टीका पाया नहीं जाता। इसके नए आउटब्रेक को इसलिए ज़्यादा खतरनाक समझा जा रहा है क्योंकि अधिकारियों के कदम उठाने से पहले ही ये वायरस पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैल गया है। इस बार का पहला मामला 24 अप्रैल को सामने आया था जब एक स्वास्थ्य कर्मचारी को बुखार और हेमरेज हुआ था जिससे जल्द ही उसकी मौत हो गई। शुरुआती स्तर पर इसे एक सामान्य बुखार समझा जा रहा था और लैबोरेटरी टेस्ट के नतीजे सामने आते आते एक हफ्ते में 50 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए थे। वैज्ञानिकों के अनुसार एबोला आमतौर पर चमगादड़ जैसे जीवों में पैदा होता है और एक इंसान से दूसरे तक फैलता है। इसके प्रथम संकेत संक्रमण से 2 से 21 दिनों के बीच दिखाई दे सकते हैं। इनमें बुखार, थकान, सर दर्द आदि शामिल हैं। गंभीरता बढ़ने पर उल्टी, डायरिया और ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। एबोला के मामलों में इलाज के बावजूद मृत्यु की दर 30% की बताई जाती है। विशेषज्ञ इसके खिलाफ एक टीका विकसित करने के लिए खोज कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस हासिल नहीं हुआ है। WHO के अनुसार एक वैक्सीन तैयार होने में कम से कम 9 महीने लग सकते हैं।
1: स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय एक कम्युनिके के जरिए इस बात की पुष्टि करता है कि देश में एबोला का कोई भी मामला नहीं पाया जाता है। मंत्रालय के अनुसार सावधानी के तौर पर एक प्रिपेयरनेस प्लान स्थापित किया जा चुका है और कांगो तथा युगांडा में पाई जा रही स्थिति पर करीबी से निगरानी रखी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है और हवाई अड्डे तथा बंदरगाह पर स्क्रीनिंग तेज की जा रही है। मंत्रालय जनता को याद दिलाता है कि एबोला सामान्य बुखार के वायरस की तरह नहीं फैलता बल्कि संक्रमित व्यक्ति के खून या बॉडी फ्लूइड के साथ सीधे संपर्क से फैलता है। मंत्रालय आश्वासन देता है कि स्थिति पर करीबी से नजर रखी जा रही है। तटीय क्षेत्रों के विकास और प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इस दिशा में हिंद महासागरीय आयोग के तत्वावधान में शनिवार 30 मई को फ्रीकॉन्फ्लैक में और शनिवार 6 जून को लिमोन गांव में सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस सिलसिले में एजेंस फ्रांसेज दू डेवलपमेंट तथा फ्रांसीसी वैश्विक पर्यावरण सुविधा का अनुदान प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना की तैयारी पर विचार विमर्श चला। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल देश में गांजे को लेकर सुधार नीति पर एक सार्वजनिक परामर्श मंच शुरू कर रही है। समस्त जनता इस पर अपने विचार, सुझाव और प्रस्ताव दे सकती हैं। इसके लिए या तो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है या QR कोड स्कैन करके। इसके लिए अगले 21 जून तक का समय है। टेक्निकल टीम प्राप्त सुझावों और सिफारिशों को सरकार की सपोर्ट करेगी। जैसे कि हम आपको बता रहे थे सुर्खियों में कि बिजली की चोरी सीबी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस साल दर्ज किए गए धोखाधड़ी के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीबी अपने नियंत्रण साधनों को और मजबूत कर रहा है और बिजली नेटवर्क की बेहतर सुरक्षा के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है। इस पर उर्वशी भिखारी बंजन की रिपोर्ट पर विधिमा सिबुरन का विवरण।
2: ये कमरा बिजली कनेक्शन में किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता लगाने वाले एक कंट्रोल रूम से कहीं बढ़कर है। यहाँ स्थापित की गई तकनीक ये जानने में मदद करती है कि नेटवर्क पर एक या एक से अधिक धोखाधड़ी हुई है या नहीं। सीबी के इंजीनियर विमल रामजीत ने कहा, हमारी मीटर लैब टीम ने हमारे नेटवर्क में काफी प्रगति की है जहां दूर से संचार मिलता है। अगर कोई मीटर रीडर से छेड़छाड़ करता है तो हमें पता चल जाता है, चाहे वो देश के किसी भी जगह में हो, तब हमारी टीम जांच के लिए हस्तक्षेप करने जाती है। इस प्रकार आम लोगों और कंपनियों द्वारा बिजली चोरी से जुड़े कई बिलियन रुपयों के नुकसान का पता चला है। इसके समानांतर बिजली चोरी के किसी भी मामले की शिकायत करना भी संभव है। सीबी के पास एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो मीटरों की जांच के लिए मॉरिशस और रोड्रिग्स का दौरा करती है। ग्राहक 86130 हॉटलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। ईमेल भी भेज सकते हैं, खुद सीबी दफ्तर जा सकते हैं या फिर डाक द्वारा शिकायत कर सकते हैं। गुप्त

0: तरीके से इन मामलों की जांच की जाती है। पिछले साल सीबी ने बिजली चोरी के 300 से अधिक मामले दर्ज किए थे। ये कृत्य कड़े दंड और भारी जुर्माने के अधीन है। अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया गया तो उसे 1,00,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है तथा 5 साल तक कैद की सजा हो सकती है। आने वाले दिनों में इस अवैध गतिविधि पर लगाम लगाने और बिजली नेटवर्क की सुरक्षा करने के लिए सीबी अपनी जांच और निगरानी को और तेज करने की योजना बना रहा है।
1: और जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि हिंद महासागरीय आयोग के तत्वावधान में शनिवार 30 मई कोफ्री कॉन्फ्लाक में और शनिवार 6 मई को लिमोन गांव में सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस सिलसिले में आज रॉसफॉन्सेड डेवलपमेंट तथा फ्रांसीसी वैश्विक पर्यावरण सुविधा का अनुदान प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना की तैयारी पर विचार विमर्श चला। इस पर ज्यादा जानकारी कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर वीरवासी बुरन का विवरण।
0: देश का पश्चिम ब्लैक रिवर इलाका उन पहले इलाकों में से एक है जिसे हिंद महासागर आयोग द्वारा विचार में लिया गया है। काजनोयाल जो जलवायु परिवर्तनों के प्रति एक संवेदनशील इलाका है, यहाँ के निवासी भारी बारिश के दौरान पानी की निकासी के लिए उचित नालों के निर्माण की मांग कर रहे हैं। मारी जैकलिन कहती है, जब बाढ़ आती है तो पानी मेरे आंगन में आ जाता है। कोस्टल रेजिलियंस प्रोग्राम विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है जहां उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है। फ्लिकॉन्फ्लाक में एक स्नैक कॉर्नर चलाने वाली मारीलिन क्लॉक इस कार्यक्रम से लाभ उठाने की पूरी उम्मीद रखती हैं। वो बताती हैं, कभी कभी बिजली नहीं मिलती, रोज मुझे बर्फ की जरूरत पड़ती है, जरूरी है कि पानी मिले। इस परियोजना के अन्य मुख्य तत्व हैं मैंग्रोव जैसे इकोसिस्टम का संरक्षण, तटीय कटाव के खिलाफ समुद्र तटों को मजबूत करना और तटीय क्षेत्रों के निवासियों को सतत मत्स्य पालन के प्रति सशक्त बनाना। मादेव ताचा ने कहा, हम मछुआरों पर निर्भर करते हैं, मछुआरे काम नहीं करेंगे तो हमें काम नहीं मिलेगा। ये डेटा एक ऐसी कार्य योजना तैयार करने में मदद करेगा जिससे एजेंस फ्रांसेज दे डेवलपमेंट और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के फंड तक पहुंच बनाई जा सके। हिंद महासागर के द्वीपों के लिए कुल 10 मिलियन यूरो का बजट दिया गया है। IUCC Adèle de Thomas कहती हैं,
2: l'idée c'est que ce plan d'action en fait va proposer,
0: उद्देश्य ये है कि ये कार्य योजना समाधानों का प्रस्ताव पेश करेगी ताकि सामने आई समस्याओं को सुलझाया जा सके। कोस्टल रेजिलियंस प्रोजेक्ट जो हिंद महासागर आयोग के सदस्य देशों के निवासियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एक सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाती है, उसकी अवधि को जून 2027 तक बढ़ा दिया गया है।
1: लिसे लाबोडोने और लिसे डी मास्कारेन के छात्रों ने एक डॉक्यूमेंटरी तैयार की है जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष के महत्व पर बल दिया गया है। 20 मिनट की इस लघु फिल्म में भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व और जागरूकता का संदेश दिया गया है। अंजू रामगुलाम की रिपोर्ट पर विधि मासीबुरन का विवरण।
3: Every year, thousands of tons of plastic waste end up in rivers, beaches, lagoons, and the ocean.
0: युवाओं द्वारा निर्मित एक डॉक्यूमेंट्री युवाओं की अंतरात्मा से निकली एक दिल की पुकार की तरह जागरूकता फैलाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, प्लास्टिक प्रदूषण को ना कहने के लिए। परियोजना का नाम नो प्लास्टिक मोशस है। हमारी डॉक्यूमेंट्री के जरिए हम बदलाव लाना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और सरकार को नुकसानों के प्रति आगाह करना चाहते हैं। हमारा देश पर्यटन पर निर्भर करता है और कदम उठाने की कमी पाई जाती है। 20 मिनट की एक छोटी सी फिल्म शायद समुद्र में एक बूंद की तरह, लेकिन ये कहीं और जागरूकता की बड़ी लहरें पैदा करने की उम्मीद रखती है। एक ऐसी परियोजना जिसमें लिसे लाबोडोने और लिसे डी मास्कारेन के छात्रों ने अपनी पूरी ताकत, अपने विचार और अपने दृढ़ विश्वास को लगाया है।
4: Pour moi, ça aura un vrai impact, car la population mauricienne n'est pas vraiment sensibilisée sur.
0: Mauritius की जनता सही मायने में प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति जागरूक नहीं है और इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए वे जागरूक हो सकती हैं। ये परियोजना उनके शिक्षकों के सहयोग से पूरी तरह की गई है जो खुद भी इस बात पर दृढ़ विश्वास रखते हैं कि आज के छोटे छोटे कदम ही कल की दुनिया का निर्माण करते हैं।
5: On s'est posé la question, pourquoi pas effectivement faire en sorte que

0: ça soit quelque chose donc de collectif, de quelque chose de mauricien. Et malheureusement, on n'a pas eu de réponse.
1: इस परियोजना के निर्माण के दौरान l'Institut français de Maurice ने मॉरिशस के स्कूलों से इस परियोजना पर काम करने की मांग की, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई जवाब नहीं मिला। उस दिन l'Institut français de Maurice के एम्फीथिएटर में जैकी चान दे ला रिक्यूप का एक वाद्य यंत्र भी गूंज रहा था, जो नंगे पैर चलना पसंद करते हैं।
2: Si ça m'en donne ça qui feature nous la planète, feature de Maurice, mais lui dans eux de la main. Nous devons grandir moins, nous pouvons pas la terre, mais c'est eux qui pour acter.
1: ये नौजवान ही हमारे देश का भविष्य हैं, उनके साथ अच्छा मूल्य साझा करना चाहिए। ये भविष्य की पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से एक संदेश है, लेकिन सबसे बढ़कर आज की पीढ़ी के लिए एक संदेश है, वो पीढ़ी जिसके पास अभी भी कुछ करने की ताकत है, ताकि हमारा द्वीप, हमारा ये स्वर्ग प्रदूषण के नरक में न डूब जाए।
3: और यूरोप में यूरोप के कई देश पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का कहर झेल रहे हैं। कई देशों में मई का ये महीना उनके इतिहास का सबसे गर्म मई महीना रहा। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी की है कि 2026 से 2030 के बीच रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ अब हम बढ़ते हैं मौसम संबंधी जानकारियों की ओर, विधिमान से बुरन के साथ।
1: हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। पूर्व सिपाही जा रहे बादल कल सुबह से स्थानीय मौसम को प्रभावित करेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज रात आसमान साफ रहेगा, लेकिन ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल बादल घिरे रहेंगे और पूर्व तथा ऊंचाइयों पर बारिश होगी। दोपहर बाद को धीरे धीरे आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, तटवर्ती इलाकों पर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:37 पर सूरज उगेगा और शाम 5:37 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरी समाचार डेस्क का सहयोग मिला है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी शिव है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर।
1: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

शोक समाचार सुनिए. मौसलमा रोई बिले रिव्य सेश में, मौसलमा रोई बिले रिव्य सेश में 75 साल की, 75 years old की श्री देवानादेन सिनिवासन, श्री देवानादेन सिनिवासन जिन्हें संदेश के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती विनोदा सिनिवासन के घर बेलेयर विय सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशोंग शमशान भूमि ले जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM. ला क्लेमेंस रिवियर डू रोंपोर में, ला क्लेमेंस रिवियर डू रोंपोर में 91 साल की श्रीमती पायदामा अपादू पैदाश्रम रामानाव जिन्हें अनंती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके बेटे आत्मा अपादू के घर रिवियर डू रोंपोर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों के शमशान भूमि ले जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट नून. नेहरू रोड लालमाटी में 22 साल

के 22 ईयर्स ओल्ड के श्री भविष्य खुदी, श्री भविष्य खुदी जिन्हें भविष्य के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 11 बजे उनके पिता उत्तम कुमार खुदी के घर लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। रॉबिन्सन नंबर एक फिनिक्स में ये शोक समाचार आप एक बार फिर सुन लीजिए। मार्केट रोड लॉन्ग माउंटेन में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शांता कुमारी बिसुंदयाल, श्रीमती शांता कुमारी बिसुंदयाल जिन्हें तारा के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके बेटे कुनल बिसुंदयाल के घर लॉन्ग माउंटेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामौशों की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। कॉलिव्यू स्ट्रीट ओकुले में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राधा सिबोरत जिन्हें पैदाश नाम बुना और जिन्हें सोनमति के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे राजेश सिबोरत के घर ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीबुयोंग शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: नमस्कार, इस समय शाम के 6:24 हुए हैं। ये है रेडियो मनोरंजन, आप लोगों का चैनल, और रेडियो मनोरंजन पर आपका हम स्वागत करते हैं।
1: RM3 रेडियो
0: आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम आज का नई सोच कार्यक्रम, और नए नए इरादे, नए नए विचार, नई नई उमंगें और नए नए रास्ते, यही हमारे नई सोच कार्यक्रम की का उद्देश्य होता है। जहाँ भी आप फंसते हुए महसूस करते हैं अपने आप को, वहाँ से अपनी सोच को बदलिए और नए रास्तों की ओर बढ़िए। नई सोच आपके नाम,
2: नई सोच।
0: आइए अपनी सोच को बदलें। जहाँ पर सोच हमें अटका देती है, वहाँ पर नए रास्ते हमें आगे बढ़ा देते हैं। चलिए नए रास्तों की ओर बढ़ते चलते हैं, और किशोर कुमार की आवाज़ में भी अपनी आवाज़ मिलाते हैं। ज़मीर मूवी का ये गाना है, साथ साथ चलने की ये गुजारिश है, इस गुजारिश पे ज़रूर गौर कीजिएगा।

की लेके जाएगी हमें एक अच्छी मंजिल की ओर। यह है संघर्ष जीवन का, और जीवन को संघर्ष बना, जीवन जो संघर्ष बन जाता है तो हमें उस संघर्ष के साथ होड़ कर लेना होगा, उस संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा और जीत हासिल करनी होगी।

जीवन के संघर्षों को जिस तरह भी हो सके आप उनके साथ होड़ ले लीजिएगा, क्योंकि ये जीवन हमेशा के लिए रहता नहीं है, कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो ही जाता है। और ऐसे में अगर आपने हर संघर्ष का सामना किया तो आप इस ज़िंदगी से बहुत ही संतुष्ट रहेंगे, और संतुष्टि ज़िंदगी में बहुत आवश्यक होता है।

जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए इंसान बनना बहुत ज़रूरी है और इंसान बनके इंसानियत बिखेरना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला धर्म, सबसे पहला कर्तव्य इंसानियत का होता है। चलिए हम इस धर्म को, इस कर्तव्य को भली प्रकार से निभाएं।

चलिए जिंदगी में बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए हाथों का तो प्रयोग करना ही होता है, मेहनत तो करनी ही होती है। और इस तरह मेहनत करके हमारे जीवन में जो खुशहाली आती है उस खुशहाली का आभास करना होता है। तो चलिए आप लोगों के जीवन में मेहनत रंग लाए, यही हमारी उम्मीद है।

चले बढ़ाते चले, हाथों को भी आगे बढ़ाते चले, मेहनत का ये सिलसिला हम पूरा करते चले। मेहनत की बात जहाँ करते हैं हम, वहाँ पर ज़िंदगी की बात आ जाती है और ज़िंदगी को गले लगा लेना ही बहुत ही अकलमंदी की बात होती है। मुश्किलों का क्या, मुश्किलें तो आती ही रहेंगी, मुश्किलों का आना हमारी ज़िंदगी को और भी ताज़ा कर जाना है, उनसे उनके लिए लड़ना, उनके लिए थोड़ा आगे बढ़ते रहना, यही तो ज़िंदगी कहलाती है।

लगाते हुए ज़िंदगी को गले चलिए हम चले चलते हैं एक ऐसे जहाँ में जहाँ न गम मिले आपको ना आंसू मिले बस खुशी खुशी नज़र आए आपको और मिले बस मुस्कुराहट ही आपको। चलिए किशोर कुमार की आवाज़ के साथ चलते हैं और चले चलते हैं उस जहाँ में। दूर गगन की छाओं में पूंवी का ये गाना है और इसी गाने के साथ नई सोच कार्यक्रम समाप्त होगा 7 बजे के लगभग और उसके बाद हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए दिलों की आवाज़ कार्यक्रम आप तक पहुंचाएंगे आपके दिल तक पहुंचाएंगे।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: माँ
2: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार
1: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
3: माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा।
2: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
1: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी MBC रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
2: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: सुनो, किन के ख्यालों में डूबे हुए हो? लगता है गहरा ख्याल है। हेलो,
1: कुछ कह रही थी क्या?
0: हाँ, तुम ही से बात कर रही थी। कहाँ खोए हुए हो?
1: ओह सॉरी, म्यूजिक सुन रहा था।
0: ऐसा क्या सुन रहे थे?
1: रेडियो मनोरंजन पर दो दिलों की आवाज सुन रहा था। रात 7 से 9 बजे तक कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। मन पसंद गीतों का सिलेक्शन है, वाह क्या कहीं।
0: ऐसा क्या?
1: हाँ, जलने की कोई जरूरत नहीं। तुम भी अपना मन पसंद गाना सुन सकती हो। बस आसान तरीका है, बस नंबर मिलाओ 402-8070 पर और अपनी पसंद जाहिर करो।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: दिलों की आवाज लेकर आए हैं हम दिलों की आवाज हम इस रेडियो पर गुंजाएंगे ये है रेडियो मनोरंजन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो प्रोग्राम जिसमें आपके दिल की आवाज आती है और हम उस दिल की आवाज को सुनकर गाना पेश करते हैं उस दिल की पसंद का दिलों की आवाज कार्यक्रम में हम सुरेखा आपका स्वागत करते हैं जहां भी होंगे आप खुश मिजाज होंगे यही हमारी उम्मीद रहती है और वैसे भी हर पल आपका बहुत मजे में गुजर रहा होगा ये उम्मीद तो हम हर पल हर घड़ी किया करते हैं आपके लिए अभी हम संडे को मदर्स डे मनाने वाले हैं और मदर्स डे होता बड़ा स्पेशल है पूरे परिवार के लिए मम्मा के लिए सब के लिए पूरे परिवार के लिए अब चलिए हम ज़रा इस मदर्स डे के अवसर पर आज हमारे कार्यक्रम में थोड़ा एक नया ढांचा डाल देते हैं एक नए ढांचे में हमारे कार्यक्रम को ढालने की कोशिश करते हैं चलिए हम ऐसे गाने पेश करें जिनमें माताओं के नाम आए मतलब लेडीज के नाम आए चलिए अगर आपके मन में कोई फरमाइश हो ऐसे गाने सुनने की जिसमें लेडीज का नाम आता हो तो आप ज़रूर हमें बताइएगा आप ज़रूर उसकी फरमाइश कीजिएगा बात ये नहीं कि हम आपकी फरमाइश अलग मिजाज वाले गानों की नहीं पूरी करेंगे बेशक पूरी करेंगे बस चलिए एक टच लगा देते हैं हम मम्माओं के नाम इस प्रोग्राम में ताकि हमारे देश में हमारे सुनने वालों में जिनका नाम आ जाए गाने में उन मम्माओं का चेहरा खिल उठे उन मेहमान उन मम्माओं के दिल में खुशियां जाग उठे चलिए ज़रा पहला गाना हम खुद ही पेश करते हैं सभी मम्माओं के नाम और ख़ास तौर पर उनके नाम जिनका नाम लीना है

0: Continuous music. RM3.
1: तो चलिए 7:10 हुए हैं और दिलों की आवाज़ में हम आपकी आवाज़ें सुन रहे हैं। आपकी आवाज़ें हम मैसेजेस के ज़रिए भी पढ़ रहे हैं 5250-6200 पर, और कॉल करना चाहते हैं तो 4028070 नंबर है हमारा। वैसे हमने तो गुजारिश की थी आपसे कि आप अगर कोई गाना मांगना चाहते हैं लेडीज़ नेम का तो ज़रूर मांगिएगा, क्योंकि अभी मदर्स डे है तो मदर्स के नामों का गाना अगर हम चलाएं तो मदर्स को बड़ा अच्छा लगेगा, मम्माओं को बड़ा अच्छा लगेगा। तो हमसे अनिकेत जी ने मांगा बुआशिकी से गाना जिसमें राधा जी का नाम है। जी हाँ, संगम मूवी का ये गाना और राधा जी के नाम, यानी कि अनिकेत जी की तरफ से सभी राधाओं के नाम।

0: Music.
1: चलिए जरा लावा मूवी का ये गाना पेश करते हैं आप लोगों के लिए। समय 7:15 हुए हैं और हमारा आपका साथ दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में है और ये गाना जो हम पेश कर रहे हैं सूरज शर्मा सजादा जी के दिल की आवाज़ है। इनफैक्ट उन्होंने ये गाना मांगा है अपने बेटे निशाल के लिए और पूरे बिसेसर परिवार के लिए।

संगीत भी बनेगा जहां भी जाएंगे आप आपके दिल की धड़कनों का संगीत चहों और सुनाई देगा बस अपने मन में प्यार भरे रखिएगा अपने दिल को प्यार से ओतप्रोत रखिएगा 7:22 चलिए जरा हम पेश करते हैं एक ऐसा गाना जिसमें माता पिता के प्रति बहुत प्रेम बहुत प्यार बहुत श्रद्धा है और ये गाना है फिल्म हम साथ साथ है से लिया गया इसकी फरमाइश किरण जी ने की है सोही नाम से उन्होंने ये गाना अपनी स्वीट मामा के नाम किया है और यही गीत हम ललिता जी की तरफ से पेश कर रहे हैं उनकी समधन विद्या जी के लिए जो अपना जन्मदिन मना रही हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू विद्या जी आपको आपके बच्चों की तरफ से बहुत सारा प्यार मिला है बहुत सारी खुशियों की दुआएं मिली है इसलिए ये गाना आपके नाम आपके बच्चे कर रहे हैं और आपके पति भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं आपकी बेटी अरुण आपकी बहू निधि दामाद अजय बेटी आशा और गुड़िया गुड़िया से आपकी नातिन आयुषी आलिया और आलिना आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं दे रहे हैं

सब मिलकर। और ललिता जी ने इसी गाने की फरमाइश की है बहन सुदेवी के लिए, बहन देविना के लिए, बहन ज्ञानी के लिए, छोटी जी, प्रभावती जी, हरीश जी और आत्माराम जी के लिए, सुखलाल मौसी, उषा लुकाना के लिए। तो चलिए साथ मिलके हम साथ साथ है मूवी का ये गाना सुनते हैं।

चलिए जरा हमारे फॉर्मूले को रफीक मोहित जी ने तायक से अपनी फरमाइश में खरा उतारा है। तायक से रफीक मोहित जी हमारे मदर्स डे फॉर्मूले को अपना कर सुनना सुनवाना चाह रहे हैं अपना देश मूवी का ये गाना जिसमें नाम आया है चंपा का और तारा का। उन्होंने गाना हमारी पूरी टीम के लिए मांगा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रफीक मोहित जी। और हमारे सभी सुनने वालों के लिए ख़ास तौर पर जितने भी चंपा हैं और जितनी भी तारा हैं उन सब के नाम हमारी पूरी टीम की तरफ से हम पेश करते हैं ये गाना। तो चलिए आप लोग भी हमारे इस फॉर्मूले को थोड़ा अपनाइए और अपनी पसंद से नाम वाले गानों की का चुनाव करके हमारे इस प्रोग्राम की की शान बढ़ाइएगा और देखते हैं जितने नाम आते हैं उन नाम की ममाएं कितनी खुश होती हैं।

7:36 हुए हैं। चलिए ज़रा माताओं के बीच कितने बच्चों के बीच माताओं के बीच कितने लोग हैं जो अपने किसी अपने को मिस करते होंगे, और ऐसे में श्वेनल जी भी हैं, अपनी मम्मा को मिस कर रही हैं जो आज तो स्वर्गवास हो गई हैं, लेकिन उनके दिल में हमेशा उनकी जगह बनी रहेगी। तो श्वेनल जी ने मांगा है फिल्म जानवर का गाना, और जानवर मूवी का ये गीत उन्होंने अपनी मम्मा के नाम किया है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही स्नेह के साथ। और उनकी मम्मा मालिनी है, और साथ में उन्होंने गाना अपने भैया श्रवण के नाम, भाभी कृति, अभिनव, कियान, नाविया और पूरे तिलक परिवार के नाम किया है।

और खुशियों के दिन हर आंखों को मिले, यही हमारी उम्मीद, हमारी दुआ है। चलिए जरा इन्हीं दुआओं के साथ हम गाना पेश करते हैं, फिल्म बेटा से लिया गया, जिसकी फरमाइश पुरुषोत्तम चांदनी जी ने की है। और चांदनी जी ने ब्रितानिया से इस गाने की फरमाइश की है मदर्स डे के अवसर पर सभी माताओं के लिए। चलिए हम आप लोगों के नाम ये गाना तो ज़रूर करेंगे जिसकी फरमाइश चांदनी जी ने की है। बस ये भी हम आपको बताएं कि इस गाने की फरमाइश अनिकेत ने की है। प्यारे से अनिकेत ने अपनी मामा के नाम ये गाना किया है अपनी गुड़िया से बहन स्वीटी के साथ मिलकर।

रवि जी ने गाने की फरमाइश की है और रवि जी ने अपनी मम्मा के साथ मिलकर ये गाना मांगा है क्योंकि रवि जी की बहन का नाम है अदिति और मम्मा इस बार अदिति के नाम का गाना पेश करना चाह रही है। तो चलिए ज़रा हम रवि और अदिति के नाम, रवि अदिति और उनके मम्मा के नाम करते हैं ये गाना। और ये गाना तो आपको पता है किस मूवी का है, जी हाँ, जाने तू या जाने ना।

मुस्कुराते हैं, इतनी गुजारिश की गई है तो मुस्कुराना हंसना क्यों भूलें हम भला। चलिए हंसना मुस्कुराना आपके जीवन में हमेशा शामिल रहे, ये हमारी दुआ आपके लिए है। और इस बार जो गाना हम पेश करेंगे वो होगा सुर मूवी से लिया गया, महालक्ष्मी की आवाज़ का ये गाना है और इस गाने की फरमाइश प्रकाशवती जी ने की है और प्रकाशवती जी के नाम ये गाना जाता है। चलिए ज़रा हम आपको याद दिला दें, ये है रेडियो मनोरंजन और रेडियो मनोरंजन पर हम आपके लिए पेश कर रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम और हम हैं सुरेखा आपका साथ दे रहे हैं।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जरा चलते चले हम आगे बढ़ते चले और पेश करें इस बार हम हमारी अगले श्रोता की फरमाइश और ये अगले हमारे श्रोता हैं हमारे भाई महेंद्र जी। महेंद्र जी ने आप सबों को मातृ दिवस की मंगल कामनाएं दी हैं, आप सभी परिवारों को इस परिवार दिवस की मंगल कामनाएं दी हैं और उन्होंने मांगा है स्नेहा पंत की आवाज़ का ये गाना हर माँ के लिए, हर माँ को प्रणाम करते हुए।

हमारा आपका साथ है आप लोगों के दिलों की आवाज़ तक पहुंचने के लिए और आपके दिलों की आवाज़ जो हम तक पहुंच ही रही है चलिए इस दिल की आवाज़ को एक दूसरे तक पहुंचाएं और बड़े प्यार से इस प्रोग्राम में भाग लें। चलिए हम इस बार पॉम्प्रीमुस की ओर चलते हैं। पॉम्प्रीमुस की ओर सचिन जी हैं जिनकी फरमाइश पर हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए मेरे बाद मूवी का ये गाना। चलिए ज़रा हम सचिन जी की तरफ से ये गाना पेश करते हैं सभी माताओं के नाम और मातृ दिवस के अवसर पर इस गाने से थोड़ा और भी प्यार बरसा देते हैं, थोड़ी और भी मुस्कुराहट बरसा देते हैं।

0: दिलों की आवाज़ों
1: में आज माँ का नाम है और माँ के नाम ये गाना अगला वाला क्रोध मूवी से लिया गया साधना सरगम की आवाज़ में हम पेश कर रहे हैं। इस गाने की फरमाइश की है गुलशन जी ने और उन्होंने ये गाना मांगा है अपनी मामा प्रभा के लिए, बहन दीक्षिता के लिए, आयशा के लिए, भोला परिवार के लिए और हमारी सखी हंसिनी के लिए।

और चलिए जरा हम आप लोगों की तरफ जो इशारा करेंगे वो इशारा होगा फलक के जरिए। वैसे चलिए हम साथ मिलके फलक की तरफ इशारा करें, क्योंकि आसमां की तरफ से जो सितारे हम पेश करने वाले हैं वो जन्मदिन के अवसर पर पेश करने वाले हैं। और बाहुज गुडलैंड से हमसे संध्या जी ने ये सितारे पेश करने की फरमाइश की है। उन्होंने कहा है कि उनकी प्यारी सी गुड़िया सी बेटी नेहा का है बर्थडे आज, और शुभकामना उनके पति आकाश की तरफ से, सेजल रैना निर्वय की तरफ से, पापा विनोद और चांदनी की तरफ से। और उन्होंने ये गाना प्यारे से गाने को नजर किया है नेहा जी को, पूरे परिवार की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू नेहा जी।

चलते जा रहे हैं हम जहां पर वहां पर हमें नजर आ रहा है मतलब महमूद का वो चेहरा जिसमें ये प्यारी सी आवाज समाई हुई है रेहाना जी ने फिनिक्स से इस गाने की फरमाइश की है और ये गाना है पतिता

और बढ़ते चलें हम अगली फरमाइश की ओर. मन्नाडे की आवाज़ का ये गाना है और ललिता जी ने कालबास से हमें फ़ोन किया, हमें मैसेज भेजा है. बल्कि कालबास से ललिता जी बता रही है हमें कि उनके ग्रैंडसन का है जन्मदिन, ग्रैंडसन पवन का जन्मदिन और पूरे परिवार में खुशियों का सिलसिला. चलिए ज़रा हमें ये गाना मन्नाडे की आवाज़ में पेश करते हैं पवन जी के पिताजी की तरफ से, उनके भाइयों की तरफ से, बहनों की तरफ से, फिर उनकी फूफू फूफा की तरफ से, चाची चाचा और उनकी दादी जी की तरफ से, उनकी दादी जी ललिता की तरफ से. तो चलिए ज़रा हम ये गाना पेश करते हैं हम पवन जी के नाम हमारी पूरी टीम की तरफ से. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हुए.

0: Continuous music.
1: और इस बार हमारी वर्षोता जो हमेशा हमारा साथ देती हैं, कभी नहीं चूकती हैं, ये है अनीता जी फ्रिक ऑफ फ्लैग से। अनीता जी ने मांगा है प्यारा सा ममा वाला गाना, लाडला मूवी से लिया गया। और ये गाना अनीता जी ने मांगा है सब हमारी पूरी टीम के लिए, सभी सुनने वालों के लिए, सभी माताओं के लिए। मातृ दिवस की मंगल कामनाएं देते हुए उन्होंने ये गीत मांगा है, और उन्होंने अपने सभी दोस्तों के लिए, पूरे परिवार के लिए भी ये गाना मांगा है। साथ ही साथ यही गाना हम पेश कर रहे हैं सूरज शर्मा सजादा जी के लिए, क्योंकि उन्होंने भी इस गाने की फरमाइश की है। और यही गीत शतमिनाज की ज्योति जी की तरफ से रेखा सुरेखा मंद परिवार के लिए और आशिनी के लिए। अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू एवरी मदर।

चलिए भाई चलिए, हमने जो फॉर्मूला रखा था उस पर हमारे बहुत से श्रोताओं ने अपने मैसेजेस भेजे हैं। चलिए हम उन नामों वाले गाने अब पेश करते हैं, और अभी हम पेश करेंगे रानी वाला गाना। जी हाँ, सोना जी ने हमसे मांगा है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और ये वो गाना है जिसे उन्होंने अपनी पत्नी रानी जी के नाम किया है। वाकवा के सोना जी की तरफ से रानी जी के नाम ये गाना। चलिए बड़े प्यार से सुनिएगा रानी जी, बड़े प्यार से फरमाइश की गई है आपके लिए इस गाने की।

चले भी आइए जी जनाब, आपको इतने प्यार से बुलाया जा रहा है, आप जरूर आ जाएंगे। दौड़े दौड़े चले आएंगे, नंगे पांव भागे चले जाएंगे। 9:45 बज रहे हैं और हमारे लेडीज नेम वाले गाने के इस फॉर्मूले में इस बार कविता जी का नाम शामिल है। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। चले, कविता मम्मा के नाम किया गया है ये गाना। कविता मम्मा को राकेश जी ने मौदालबे से अपनी बहन अविशा के साथ मिलकर ये गाना नजर किया है। चलिए जरा सुनते हैं हम मोहम्मद रफी की आवाज़, प्यार ही प्यार मूवी का ये गाना।

इस बार मैसेज आया है सूर्यदेव जी का, कुंगुमा के सूर्यदेव जी को सुनना है चांदनी वाला गाना। चांदनी मूवी का ये गाना, चांदनी पर आधारित ये गाना। चलिए ज़रा हम ये गाना करते हैं सभी चांदनियों जी के नाम, और सूर्यदेव जी का भी यही कहना है, सभी चांदनी के नाम करते हैं ये गाना, और ख़ास तौर पर कोई मम्मा हो चांदनी नाम से तो उनके नाम।

Yeah.

वो गाना होगा रवि जी, जी हाँ रवि जी की पसंद पर रवि जी ने अपनी पत्नी के नाम ये गाना किया है, उनकी पत्नी निवेदिता, और अपने बच्चों के नाम उन्होंने ये गाना किया है और उन्होंने मांगा है फिल्म कभी हाँ कभी ना का गाना। इसमें आना का नाम आया है, रवि जी का कहना है आना का नाम आया है और ये गाना हम पेश करते हैं उनकी तरफ से, रवि जी की तरफ से, उनके पूरे परिवार के नाम। यही गीत हम पेश करेंगे ताया के बडवाग विदेशी जी की तरफ से, मौता बाग की उनकी स्वीट हार्ट अनुषा खेदन जी के लिए।

तो बस इस गाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा हमारा ये प्रोग्राम जिसमें आप लोगों के दिलों की आवाज़ छुपी हुई थी। दिलों की आवाज़ प्रोग्राम 9:02 के लगभग समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम पेश करेंगे आज का भोजपुरी तड़का प्रोग्राम। भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में भी आप भाग लीजिएगा और ये प्रोग्राम हम रेडियो मॉरिशस से पेश करेंगे और इसमें भाग लेने के लिए आपको नंबर डायल करना होगा 4028085 और मैसेजेस भेजने होंगे 5251700 5 पर। तो बस मिलते हैं थोड़ी ही देर में हम भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के साथ।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तुहार स्वागत करते हैं जान। नमस्कार, जहां हो बजा खुश खुश रहिए जा, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते रहिए जा। हम सुरेखा तुहार खातिर लेके आए हैं आज के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। एक और में जरूर अपन पसंद के गाना के फरमाइश करिए जा। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तुहार खातिर हमने वही गाना प्रस्तुत करब जा जो तो लोग मंग बजा। चला सबसे पहला हमने जन्मदिन वाला गाना प्रस्तुत करीला जा। ललिता जी के समधिन के जन्मदिन बा। उनका समधिन हवन विद्या, उनका बेटा, उनका पति, उनका बेटा बहु बगल से उनका जन्मदिन के मंगल कामना। उनका बेटा अरुण, उनका बहु निधि, उनका दामाद अजय, बेटी आशा और नातिन आयुषी और आलिया तथा आलीना बगल से जन्मदिन के मंगल कामनाएं समधिन जी यानी कि विद्या जी। और ललिता जी यही गीत मंगले हवन अपन समधिन विद्या के साथ साथ बहन सुदेवी, बहन देवीना और ज्ञानी खातिर, छोटी जी, प्रभावती जी, हरीश जी, आत्माराम जी खातिर और सुखलाल मौसी खातिर और उषा लोकाना जी खातिर। तो चला जन्मदिन के ई गाना सुनी जा हमने बसंत सुपौल जी की आवाज़ में।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: चला तड़का तो हमने लगे भी करब जाए तो हर फरमाइश के संगे और जन्मदिन के अभी बधाई देते देते चला और जन्मदिन के बधाई दे ला जा हमने पोविदांस कचमृत्या के राजेश जी के पत्नी धीमा जी के जन्मदिन बा और राजेश जी अपन पत्नी धीमा जी के जन्मदिन के अवसर पर उनका ढेर शुभकामना दिले हवन पूरा बिहारी परिवार के बगल से। तो चला धीमा जी हमने के पूरा टीम तो हला रहता जन्मदिन अभिनंदन हैप्पी बर्थडे टू यू संजय गोविंद।

लीलो माथुर जी की आवाज में चले सुनी जा हम दी ओ गाना जन के फरमाइश विजय बेनी पौसाद जी कर ले वन विजय बेनी पौसाद जी रहे लन्ना शामुनी और बेनी पौसाद परिवार खातिर और दूली परिवार खातिर फिर मोताबा के शास्त्री बनो माली जी खातिर मंगल हवनी

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का में तोहर खातिर अमृता जी के अनीता जी के तरफ से को गाना प्रस्तुत कर अब जाम और दरबे के अनीता जी मंगले हवन करुणा अमृता और इतू परिवार खातिर गोगा परिवार खातिर मेवानंद ठाकुर यानी कि किशोर ठाकुर जी के गावल माँ होलाई गाना और मातृ दिवस के अवसर पर सब माँ के नाम कर ले हवन ई गीत माता जी के नाम ई गाना हमने के पूरा टीम बगल से भी करत हैं जा माता जी के चरण में स्वर्ग जैसे बोलन लीलो माथुर जी और

0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का तड़का अभी कुछ सुनी जा हमने माँ बाप के ही नाम के और माँ बाप के नाम के कहीं नहीं चलिए अभी मातृ दिवस के इतना तैयारी हुआ था और इतना तैयारी में हमने गीत भी तो के माता पिता के नाम के ही चला सुन माँ बाप जा हमने के श्रोता लोग के फरमाइश पर अभी चंद्रदेव जुबोधन जी की गाना सुन माँ बाप जाता लोग के और त्यौहार से शांति जी गाना मंगले हवन सब अपन मराठी परिवार खातिर दागोचे के फिर अपा दागोचे के अपन भगिना ओम के नाम कर ले हवन ये गाना

लीलो माथुर जी के गावल ई बहुत ही सांस्कृतिक गाना चला सुनी जा हमने और ई गाना हमने बजावत है जा अमृता जी खातिर पीतों के सोनिया और परी खातिर मंगलवन अमृता जी गीत विशान और मीनाक्षी खातिर भी और गणेश परिवार खातिर भी

जिन गाना सुनब जा माँ बाप के मूल गाना सुनब जा फुलवंती जी वाकवास से अपन पूरा परिवार कहते हैं मंगले वनी गाना विश्वानी दुमन जी मंगले हवनी गाना और ये गीत गीता गजाधर जी की आवाज़ में विश्वानी दुमन जी मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर और फिर अपन बहन इंदिरा और शारदा खातिर अपन सहेली नीला और प्रतिभा खातिर फिर गीता गजाधर जी खातिर और सब माता लोग खातिर हैप्पी मदर्स डे बोला था सब माता जी के और यही गाना हमने फ्रीकॉन फ्लैग के अनीता जी खातिर बजावा थे जा अनीता जी भी गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर सब संगतिया लोग खातिर और सब माता लोग खातिर

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का
1: तड़का तड़का लगाई ले चली जा, तड़का लगाई ले चली जा, फरमाइश कर ले चली जा, फरमाइश। अभी कुछ हमने विनोद सिरदर्त जी के गीत के चलाओ अब जाओ, और ये गाना मंगले हमारे रोज दिल से साजी जी कनाडा के अपन संगतिया सरोवर जी खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: चल अभी कुछ हमने पजवाइला जा जन गाना उ आत्माराम जी के नाम कर अब जा नीलेश रापू जी और मेधारी सोल जी के गावली गाना माता पर आधारित चला सुनी जा हमने आत्माराम जी के पसंद पर उनकर बहन प्रभावती बहन सुदेवी और बहन ललिता खातिर बेलिया के इसनु परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का।
1: चला हमने ये भोजपुरी तड़का में अभी कुछ सुनी जहाँ श्रीमती जी के पास इनके गाना सुयक से श्रीमती जी मंगले हवन गीत दादा दादी की कहानी हमने के पूर्वज लोग के कहानी गासिन सिंगारों जी के गावल गाना चला सुनी जा हमने श्रीमती जी के पसीन पर उनका तीन गो बेटा तीन गो पत्तो खातिर दो गो बेटी दमाद खातिर उनका ना पोता पोती लोग खातिर और चंद्रमुनि परिवार और महेश परिवार खातिर

0: भोजपुरी तड़का।
1: अब चला हमें जन्मदिन के शुभकामना दे ला जा कनिष्ठ दसोई के जन्मदिन अभिनंदन कनिष्ठ दसोई जी तोहरा बहुत बहुत शुभकामना तो हर मामा पूनम बगल से और पापा रोशन बगल से तोहर बहन परी भी तोहरा जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना देवत हवन तोहर नानी पूर्णिमा बहुत प्यार बहुत आशीर्वाद देवत हवन मौसी मालिनी प्रवीणी और पिंकी पूजा सब मौसी जी सब कोई मिल के तोहरा जन्मदिन के मंगल कामना देवत हवन जा फुकीरा परिवार कालिया चेची परिवार और दीप दयाल परिवार बगर से अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू पूर्णिमा फुकीरा जी के गावल ई गाना गंगा मैया होला गंगा मैया सब कोई पर कृपा करिए मातृ दिवस के अवसर

और चला व्यास बरसेनो जी के गा वाली गाना सुनी जा और फटफटवा में घूमे के तरी सोची जा फटफटवा वाला गाना हमने मोताई लोग के गीता जी खातिर बजवाओ थे जा।

चला माता जी के नाम करी जाएगा नाम मां बनल बा औरत औरत कर ले बा सब काम और ऐसे में सब करीते के हिम्मत दिखाई ले बा मां एक दुनिया में वो खूबसूरत और अनमोल रिश्ता हमालेगा के ओकर स्वास्थ्य उनकर निस्वार्थ उनकर निस्वार्थ प्यार और ममता उनकर त्याग सब उलकर में झलकेला चला सब माता जी के नाम करी जाएगा

अब दोस्ती के नाम करी जाए गाना विवेक जी अपन दोस्त देव भरत जी के नाम करत वनी गाना विजेश गणपत जी के गावाली गीत और चला दोस्ती होलाई गाना हमने डट के दोस्त लोग के नाम करी जाए

0: माँ।
1: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
0: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
2: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ।
1: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
0: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
1: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का। अभी हमने के महेन भाई टेलीफोन कर लेना बोला थवान सुने खोजा थवान गीत गवाई होला गाना उनका मन बात गीत गवाई में चले के तो चला संगे संगे चली जा गीत गवाई में महेन जी गाना मंगले हवन बिजमावती संपत जी के गावल होला और ये मंगले हवन अपन पूरा जगमोहन परिवार खातिर और विशेष कर दीदी मान खातिर।

सुदेश बोचे जी के गावल गाना है और ये हमने के पिदी पिदी छोकरी और ये शहर के छोकरी दोनों गाना के संगम जला सुनी जाए गाना हमने आशीष जी के पसंद पर आशीष जी गाना मंगला हुआ अपन माँ वृंदा खातिर

धुने और कुछ गीत वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं। आज की इस हसीन रात में सुनहरे पल लेकर आया है पुराने बॉलीवुड के एवरग्रीन मेलोडीज जो हर जनरेशन के दिल को छू जाते हैं। दोस्त जहां भी हो, घर पर हो, सफर में हो या तन्हा रात के साथ, रेडियो मॉरिशस पर बनिए रहे अपना म्यूजिकल कंपेनियन। बिल्कुल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार और गिनीशा का प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का इस खूबसूरत सी सफर में जहाँ पे आपकी यादों को फिर से हम चीरने वाले हैं आज इन योर सुनहरे पल।

रात की खामोशी में जब पुराने गीत बजते हैं तो यादें खुद ब खुद मुस्कुराने लगते हैं दोस्त। सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं ओल्ड बॉलीवुड का वो जादू जहां म्यूजिक में था सिंप्लिसिटी, इमोशंस और सच्चा प्यार। तो जुड़िए रहे हमारे साथ और महसूस कीजिए उन सुनहरे लम्हों को जो आज आज भी दिल के बहुत ही करीब है।

रात के सुकून भरे मौसम में दिल को दीजिए पुराने बॉलीवुड मेलोडीज का प्यारा सा एहसास। सुनहरे पल में बजेंगे वही गीत जो कभी पुराने नहीं होते हैं, जो सिर्फ और ज्यादा खास बन जाते हैं टाइम के साथ। तो चलिए जी, ये अगला नगमा खासकर हमारे म्यूजिक लवर्स के नाम।

कुछ गीत सिर्फ म्यूजिक नहीं होते हैं दोस्त, वो हमारी यादें, हमारे जज्बात और हमारी कहानियां बन जाते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ जुड़िए रहे सुनहरे पल में, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। गिनिशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये प्यारा सा नगमा हमारे दिल से आपके दिल तक।

0: बदकम्मा, बदकम्मा,
1: यंकन्ना, यंकन्ना,
2: बदकम्मा।

0: बदकम्मा, बदकम्मा।
1: यंग कन्ना, यंग कन्ना।
2: बदकम्मा।

चांद सितारों से भरी इस रात को और भी हसीन बनाइए ओल्ड बॉलीवुड के एवरग्रीन सॉन्ग्स के साथ। सुनहरे पल लेकर आया है दिल को छू लेने वाले म्यूजिकल यादें जो आपके दिल के कोने में आपने छुपा के रखा है। तो चलिए यादों को ताजा करते करते आप मुस्कुराना ही भूल गए, मुस्कुराइए और गुनगुनाइए हमारे साथ, क्योंकि ये अगला नगमा वाकई में काफी स्पेशल है।

कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन जो हम पेश कर रहे हैं इन योर सुनहरे पल, पुराने गाने पुराने यादें, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। आई एम सॉरी अगर आपकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई, क्या करें, यादें ही कुछ ऐसे हैं दोस्त। और गाने जब ऐसे बजते हैं ना ऑन सुनहरे पल, तो अपने आप आँख जो है ना, हमारे आँखें जो है नम हो जाते हैं। लेकिन

अरे जी, अभी तो शुरू किया था आपका ये खूबसूरत सफर आपके और हमारे बीच में सुनहरे पल। सुनहरे पल एक ऐसा सफर है जो रात को रोज 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हम आपको लेके जाते हैं डाउन मेमोरी लेन। लेकिन फिलहाल के लिए गिनिशा को आप इजाजत दीजिए। बिल्कुल जी, हम वादा करते हैं टू कम बैक एक और खूबसूरत शो के साथ। अभी के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

রসগোল্লা কেন করিস হল্লা তোকে দেখে দিল মাঙে মোর।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई